वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उसके हुक्म से कश्तियां उसमें चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और शुक्रगुजार हो। उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते उनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें ताकि अल्लाह खुद एक ग्रोह को उसकी कमाई का बदला दे। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा और जो बुराई करेगा वो आप ही उसका खमियाजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की तरफ है। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबुव्वत अता की थी, उनको हमने उम्दा सामाने जीस से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें फजीलत अता की और दीन के मामले में उन्हें वाज हिदायत दे दी। फिर जो इख्तिलाफ उनके दरमियान रोनमा हुआ वो नावाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह कयामत के रोज उन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं। इसके बाद अब ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शाहराह यानी शरीयत पर कायम किया है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तेबा न करो जो इल्म नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन लाएं।

वो हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की तख्लीक व तदबीर में उनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया इन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर है कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी इबादत के मुनकिर होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक इनके सामने आ जाता है तो ये काफिर लोग उसके मुतालिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना ये है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो मुझे खुदा की पकड़ से कुछ भी न बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है और वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है।

من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: जॉन और जेम्स बचपन के बेहतरीन दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकते थे। एक गांव में रहते हुए इन दोनों ने एक साथ खेलना, पढ़ना और हर खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देना सीखा था। अक्सर ये दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करते और एक साथ मिलकर मसाइल का हल ढूंढते। लेकिन कभी कभार दोस्ती में भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। जॉन और जेम्स के दरमियान भी अक्सर मामूली बातों पर बहस हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। दोनों का ख्याल था कि दोस्ती का रिश्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो कुछ पैसा कमाने के लिए शहर की गलियों में जाकर नौकरी तलाश करेंगे, ताकि कुछ पैसे कमाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। दोनों ने इस सफर के लिए तैयारी शुरू कर दी और भाई होना क्या था, निकल पड़े ये अपने सफर पर। इनके सफर की इब्तिदा एक खूबसूरत गांव से हुई। गांव की हरियाली और खुशबू ने इनके सफर को मजीद दिलचस्प बना दिया। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर रुकते और हर जगह की खूबसूरती को अपने दिल में महफूज करते। लेकिन जब वो शहर पहुंचे तो हालात इतने अच्छे नहीं थे। शहर में बहुत से लोग नौकरी की तलाश में आए हुए थे और कम ही लोग ऐसे थे जो कहीं काम हासिल कर पाते थे। जेम्स और जॉन भी मुख्तलिफ जगहों पर गए, मगर वहाँ काम नहीं मिल सका। कुछ दिनों तक उन्होंने एक दूसरे की हौसला अफजाई की, मगर आखिरकार वो दोनों थक हार कर अपने अगले सफर के लिए तैयारी पकड़ने लगे। अब मामला ये था कि इनके पास ज्यादा पैसे या वसाइल नहीं थे, लेकिन दोनों की हिम्मत अभी भी टूटी नहीं थी। इन दोनों का सफर अब एक नया मोड़ ले रहा था। वो एक दिन एक सहराई इलाके में पहुंचे, जहां रेत के बड़े बड़े टीले नजर आ रहे थे। इस सहरा में कोई साया या पानी नहीं था। जॉन ने कहा, हमें पानी और खाना बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी बहुत दूर जाना है। लेकिन जेम्स बहुत प्यासा था, उसकी जबान खुश्क हो गई थी और उसके जिस्म में पानी की कमी महसूस हो रही थी। जेम्स ने कहा, जॉन मैं बहुत प्यासा हूँ, हमें अभी पानी पी लेना चाहिए। जॉन ने कहा, नहीं जेम्स, अगर हम अभी पानी पी लेंगे तो आगे हमें मुश्किलात पेश आएंगी। हमें ये पानी बचा कर रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर ये हमारे काम आ सके। ये बात जेम्स को पसंद नहीं आई और उसने कहा, मगर मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। दोनों के दरमियान बहस बढ़ती चली गई और आखिरकार जॉन ने गुस्से में आकर जेम्स को थप्पड़ मार दिया। जेम्स खामोश हो गया और रेत पर एक पैगाम लिख दिया, मेरे बेहतरीन दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर थोड़ी देर बाद जॉन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और वो चुप होकर आगे चलने लगा। जेम्स भी कुछ ना बोला, मगर वो रेत पर जो लिख चुका था उसे दिल में महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में दुख था, मगर वो जानता था कि ये सब वक्ती बातें हैं। आखिरकार दोनों को नखलिस्तान की एक जगह मिली जहाँ पानी की भरपूर मौजूदगी थी। दोनों खुश हो गए और जैसे ही पानी देखने को मिला तो दोनों ने फौरन पानी पिया और ताजा दम हो गए। फिर दोनों ने नखलिस्तान में नहाया और पानी की ठंडक का लुत्फ उठाया। जेम्स थोड़ी देर के लिए बेख्याल हो गया और पानी में गोता लगाते हुए कुछ ज्यादा आगे चला गया। उसकी नजर कमजोरी की वजह से थोड़ी धुंधला गई, जिसकी वजह से वो आगे तक चला गया और अचानक डूबने लगा। जॉन ने फौरन जेम्स को देखा और उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया। जॉन ने अपने दोस्त को बचाया और पानी से बाहर निकाल लिया। जेम्स अभी तक पानी में घुटते हुए सांस ले रहा था और जॉन के गले लगकर उसका शुक्र अदा किया। जॉन, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, तुम वाकई अच्छे दोस्त हो, मैं हमेशा तुम्हारे

तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जॉन ने उसे गले लगाकर कहा, मेरा शुक्रिया क्यों, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं ना। इसके बाद दोनों थोड़ी देर आराम करते हुए नखलिस्तान की खूबसूरती का लुत्फ उठाने लगे। फिर उन्होंने वहां से रवाना होने का फैसला किया। जब वो नखलिस्तान छोड़ने के लिए रवाना होने लगे, जेम्स ने एक पत्थर पर कुछ लिखा, मेरे बेहतरीन दोस्त ने मेरी जिंदगी बचाई। जेम्स ने कहा, जॉन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने रेत पर लिखा था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बचाकर जो काम किया उसे मैं पत्थर पर लिख रहा हूँ, क्योंकि पत्थर पर लिखा कभी नहीं मिटता और इसकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है। जॉन ने जेम्स की बात सुनी और कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा, हमें बुरे वक्त को रेत पर लिखना चाहिए ताकि वो मिट जाए और अच्छे वक्तों को पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वो हमेशा हमारे दिलों में रहें। तो साथियों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें अपने दोस्तों या किसी भी दूसरे शख्स से हुई तकलीफ या बुरे वक्तों को जल्दी भूल जाना चाहिए। हमें इनकी अच्छाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त जल्दी गुजर जाते हैं लेकिन अच्छे वक्त हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। जैसे रेत पर लिखी बातें हवा में उड़ जाती हैं, वैसे ही बुरे वक्त भी हमें तर्क कर देने चाहिए और हमें हमेशा अच्छाई को अपने दिल में महफूज रखना चाहिए। जिंदगी में अगर हम दूसरों की मदद करें और मोहब्बत भरी बातें करें तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, जैसे पत्थर पे लिखी बात हमेशा कायम रहती है। हमें हमेशा बुरे वक्तों को भूलकर अच्छे वक्तों को याद रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी जिंदगी के असल खजाने हैं।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: सामीने किराम, अरब बदू जब शिकार के लिए चील या किसी शिकारी जानवर को साथ ले जाते हैं तो एक उसूल हमेशा याद रखते हैं, الطير اللي بغيته يصيد لا تعشيه. जिस परिंदे से शिकार कराना हो उसे रात भर सैर मत करना, क्योंकि अगर शिकारी परिंदा सैर हो जाए तो अगले दिन शिकार के पीछे दौड़ने की हिम्मत, भूख और जज्बा खो बैठता है. दोस्तों, ये कहावत सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इस कहावत में गहरी तरबियती नसीहत भी है. अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मेहनती बने, एतमाद पैदा करे, हिम्मत और जिम्मेदारी सीखे तो उसे बचपन से ही कामों का आदि बनाए, न कि हर चीज उसके मुंह में डाल दें और नहीं उसे आदत डालें कि बगैर मेहनत हर चीज मिल जाए. हमारे यहाँ भी कहते हैं, गोद में बैठा बच्चा चलना नहीं सीखता, यानी बच्चा मेहनत से ही सीखता है. आसानी इंसान को सुस्त कर देती है. इसी तरह ज्यादा नरमी और ज्यादा सहूलत सलाहियतों को कमजोर कर देती है. दोस्तों, की कहावत हमें ये सिखाती है, समझाती है कि मोहब्बत का मतलब हद से ज्यादा आसानी देना नहीं बल्कि बच्चे को हिम्मत, जिम्मेदारी और मेहनत का खोगर बनाना है. बिल्कुल जैसे शिकारी परिंदा भूखा रहता है तो उसकी नजर तेज होती है, हिम्मत बढ़ती है और वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है. इसी वजह से अरब बदू हिकमत भरा मशवरा देते हैं, الطير اللي بغيته يصيد لا تعشيه. जिससे शिकार कराना हो उसे सैर न करो और जिस बच्चे को कामयाब बनाना हो उसे मेहनत का आदि बना दो.

0: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। शो का नाम है कतर ग्रीन बीट। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? वेल, हमारे कतर ग्रीन बीट का ये दूसरा सीजन, अब यूँ कहें तो, अपने फाइनल मुकाम पर है और ये फाइनल एपिसोड है इस सीजन का। और उसके बाद जब दोबारा हम कतर ग्रीन बीट लेकर आएंगे तो और भी खास बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। वेल, पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक लंबी जर्नी तय की थी। हम अल थकीरा के उन गहराइयों में गए जहां मैनग्रूव सांस लेते हैं, और वहां से निकलकर हमने हमारे स्टेडियम्स के हाईटेक कूलिंग सिस्टम्स को भी देखा। हमने इंजीनियरिंग के बड़े बड़े अजूबे देखे और रेगिस्तान के उस पुराने, वो कहते हैं ना, हिकमत यानी विजडम को भी समझा जो इस मिट्टी को सदियों से जिंदा रखती है। मगर आज इस ऊंचाई से जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ है, सस्टेनेबिलिटी कोई आखिरी मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक होराइजन है और एक ऐसा खूबसूरत इत्तफाक है जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, है कि नहीं? आज हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं जिसे पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है, द कतर नेशनल विजन 2030। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये विजन जो है सिर्फ उन ऊंची इमारतें या चमकते स्काईस्क्रेपर्स या सोलर पैनल्स के बारे में है। अब ये सब हम जानते हैं कि ये किस चीज के बारे में है, पर सच तो ये है कि इस विजन की असली जो रूह है, इसका सबसे मजबूत पिलर जो है, वो है हमारा ह्यूमन पिलर। ये उन बच्चों के बारे में है जो आज एस्पायर पार्क में खेल रहे हैं। ये उस विरासत यानी लेगेसी के बारे में है जो हम उनके लिए छोड़ कर जाएंगे। तो बस आज कुछ ऐसी ही कमाल की बातें हम अपने शो कतर ग्रीन बीट पर करने वाले हैं। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ ऑन FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: कतर ग्रीन बीट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। और चलिए, अब वक्त है हमारे सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं द ग्रीन वायर। आज हम स्कोरबोर्ड पर एक गहरी नज़र डालेंगे क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे इस प्यारे से कतर ने जो करिश्मे कर दिखाए हैं ना, वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। अक्सर हम हेडलाइंस पर पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन एनर्जी, पर ये क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये लफ्ज़ हमारी ज़मीन पर कैसे उतर रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं? आज हम सिर्फ डेटा की बात नहीं करेंगे, आज हम उस जज्बे की बात करेंगे जो कतर को एक ग्लोबल लीडर बना रहा है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? इफ़ यू रेडी देन आगे हमारी

0: फैले हुए लाखों सोलर पैनल्स। ये सिर्फ कांच और सिलिकॉन के टुकड़े नहीं हैं, ये कतर की एनर्जी का नया चेहरा है। ये रीजन का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो तकरीबन 800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हम हर साल 26 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने से रोक रहे हैं। जब हम सूरज की गर्मी से परेशान होते हैं, वही सूरज हमारे घरों को रोशन करने की ताकत बनते जा रहा है। ये है टेक्नोलॉजी और कुदरत का सही बैलेंस या सही मेल। और जनाब, वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब पूरी दुनिया हमारे स्टेडियम्स में बैठी थी। यस, ये तो एक हिस्ट्री की तारीख में एक बहुत इम्पोर्टेंट तारीख हो चुकी है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसने सिर्फ फुटबॉल के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि रीसाइक्लिंग का एक ऐसा नया, वो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि दुनिया देखती रह गई। कतर ने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था कि एक कार्बन न्यूट्रल इवेंट का एक बड़े पैमाने में इसे होस्ट किया जाएगा, बस वो हमने कर दिखाया। स्टेडियम से निकलने वाला कचरा लैंडफिल में नहीं गया, बल्कि उसे रीसाइकल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या एनर्जी में बदला गया। हर स्टेडियम की अपनी एक कहानी थी, जैसे स्टेडियम 974, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो नए मकसद के लिए रीसाइकल हो रहा है। ये हमारा कमिटमेंट था पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन सफर यही नहीं खत्म हुआ। अगर आप आज कतर की सड़कों पर निकलें, तो आपको एक बदलाव भी दिखेगा। हमारा ग्रीन बेल्ट हर दिन फैल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की प्लांट मिलियन ट्रीज इनिशिएटिव के तहत रेगिस्तान की रेत अब हरियाली में बदल रही है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये पेड़ हमारी मिट्टी में जान फूंक रहे हैं, हवा को ठंडा कर रहे हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को बना दे रहे हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपनी एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी 2021-2026 लॉन्च की है। टारगेट बड़ा है, 2030 तक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को 25% तक कम करना। ये कोई आम बात नहीं है। ये रोड मैप हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे हम हर सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को एक लाजमी हिस्सा बना सकते हैं। तो जनाब, इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच सबसे प्यारी बात पता है क्या है? वो ये है कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसे जी भी रहे हैं। हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम प्लेयर्स भी हैं। जब आप सुबह अपनी कार के बजाय दोहा मेट्रो पर सफ़र करते हैं, या दोहा मेट्रो को चुनते हैं, या जब आप मुशर्रफ के किसी कैफ़े में वो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ मिलता है ना, उसको ना कह देते हैं, या जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पानी की एक बूंद कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो आप बन जाते हैं वो ग्रीन वायर जो हमारे नेशनल विजन 2030 को हमारी हकीकत से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। अक्सर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी मशीन्स, फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स या ग्लास से बनी बिल्डिंगें, ये इन सब की ना तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। हम सोचते हैं कि शायद कोई जादुई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारी धरती को बिल्कुल बचा लेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट में छुपा है? इस सीजन का हमारा आखिरी और सबसे खास प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट जाता है एक ऐसी संस्था को जो कतर की मिट्टी से उपजी है, अर्थना। यस, कतर फाउंडेशन ने जब अर्थना को लॉन्च किया, तो मकसद सिर्फ एक नया ऑफिस बनाना नहीं था, मकसद था एक ब्रिज बनाना, एक ऐसा पुल जो ग्लोबल साइंस और हमारी लोकल लेगेसी को आपस में जोड़ सके। अर्थना हमारा वो मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बातें नहीं है, ये हमारी रूह को हमारी ज़मीन से दोबारा जोड़ने का काम करता है। अर्थना की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है, वो है उनका नज़रिया। वो कहते हैं, लेट्स लुक बैक टू मूव फॉरवर्ड। सोचिए, सदियों पहले जब ना बिजली थी, ना एसी था और ना ही मॉडर्न इंजीनियरिंग थी, तब हमारे जो पुरखे थे या एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस तपते रेगिस्तान में कैसे गुजारा किया होगा? वो विजडम क्या थी? हमारी बेदुविन एंसेस्टर्स कुदरत

0: कब हवा का रुख बदलेगा, कब बारिश होगी और कैसे पानी की एक एक बूंद को यानी इस अमानत को हम समझ सकते हैं और इसे बचा सकते हैं। अर्थ ना इसी पुरानी समझ को आज की मॉडर्न साइंस के साथ मिला रहा है। वो स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पुराने आर्किटेक्चर को कैसे बर्जील यानी विंड टावर्स गर्मी में ठंडक दे सकते हैं। वो देख रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स कैसे कम पानी में भी जिंदा रहते हैं। अर्थना हमें बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारे खून में है। हमने हमेशा से रेगिस्तान के साथ दोस्ती की है, उसका मुकाबला नहीं किया। अब बात करते हैं एक ऐसे लव्स की जो अर्थना की फिलॉसफी की जान है और वो है बैलेंस। तो जनाब, कुदरत ने इस दुनिया को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर बनाया है। जितना हम लेते हैं उतना ही हमें लौटाना भी पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में अगर हम देखें तो इंसान ने इस बैलेंस को ना बिगाड़ दिया है। हमने धरती से बस लिया ही है, लौटाया कुछ भी नहीं। अर्थना हमें वापस देना, ये बैलेंस सही तरीके से करना सिखाता है। वो हमें सिखाते हैं कि तरक्की या प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि कुदरत को पीछे छोड़ दें। असली तरक्की वो है जहाँ स्काई स्क्रेपर्स और मैनग्रोव्स के एक साथ सांस लेने में हम मदद कर सकें। अर्थना के प्रोग्राम्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कंजम्पशन को कम करें और अपने रिसोर्सेज का बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है ना तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाती है। अर्थना सिर्फ रिसर्च पेपर्स और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस तक लिमिटेड नहीं है, इनका असली रंग दिखता है अर्थना प्राइज में। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि अर्थना हमारे शहर के उन अनसंग हीरोज को पहचान रहा है जो खामोशी से बदलाव ला रहे हैं। वो स्कूल के टीचर्स जो बच्चों को स्कूल के गार्डन में कंपोस्टिंग सिखाते हैं, वो छोटा SME या स्टार्टअप जो दोहा की धूप से बिजली बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है, या वो स्टूडेंट जो प्लास्टिक वेस्ट से आर्ट बना रहे हैं। अर्थना प्राइज ये साबित करता है कि सस्टेनेबिलिटी किसी एक मिनिस्ट्री का नाम नहीं है, ये हमारी शेयर्ड लेगेसी है। मैंने देखा है कि कैसे मुशायरे में या एजुकेशन सिटी में छोटे बच्चे अर्थना के वर्कशॉप्स में मिट्टी से जुड़ते हैं। जब एक बच्चा अपने हाथ से एक पौधा लगाता है और उसे बड़ा होते हुए देखता है तो वो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहा, वो अपने अंदर हिफाजत का एक एहसास जगा रहा है। अर्थना इस कम्युनिटी स्पिरिट को जिंदा कर रहा है।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट।
0: अब आते हैं हमारे नेशनल विजन 2030 पर। यस, विजन 2030 के चार पिलर्स हैं, उनमें सबसे अहम है ह्यूमन पिलर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता 2030 में कतर कैसा दिखेगा। मेरा जवाब होता है 2030 सिर्फ टेक्नोलॉजी का साल नहीं है, वो हमारी अमाना का इम्तिहान है। यस, अमाना यानी ट्रस्ट। हमें ये ज़मीन, ये समुंदर, ये रेगिस्तान हमारे बुजुर्गों से तोहफे में नहीं मिले, बल्कि हमारे बच्चों से उधार मिला है। इट इज़ अ ट्रस्ट वी मस्ट सेफ गार्ड। अर्थना हमें बताता है कि 2030 का ह्यूमन पिलर वो इंसान है जो कॉन्शियस है, वो जो जानता है कि उसके हर एक्शन का असर इस मिट्टी पर पड़ता है। अर्थना इज बिल्डिंग अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटल गार्जियंस। हम सिर्फ एक शहर नहीं बना रहे जो 2030 में चमकेगा, हम एक ऐसी लेगेसी तैयार कर रहे हैं जो सदियों तक चलेंगी। अर्थना का हर प्रोजेक्ट, हर वर्कशॉप और हर रिसर्च इसी ह्यूमन पिलर को मजबूत करने के लिए है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां ये सीज़न ख़त्म हो रहा है। अक्सर शो के आखिर में मैं आपको एक ग्रीन टिप देती हूँ, कभी पानी बचाने की, कभी प्लास्टिक कम करने की, लेकिन आज क्योंकि ये हमारा फिनाले है, आज हमारा आखिरी शो है इस सीज़न का, मैं सिर्फ एक एडवाइस आपको देना चाहूँगी। आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारा ग्रीन बीट मैनिफेस्टो, हाँ वो क्या है? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि एक ऐसा ऐलान, एक ऐसा वादा जो हम अपने आप से करते हैं। ये तीन ऐसी बातें, ये कुछ ऐसी बातें जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल और दिमाग में महफूज कर लें, ताकि जब तक हम अगले सीज़न में ना मिलें, आप कदर ग्रीन बीट के इस बीट को ज़िंदा रखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बस ज़िंदगी जीने का एक नया और बेहतर तरीका है।

0: हमारा पहला उसूल क्या है? पहला उसूल है द वन लेस रूल. हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये क्या है, तो हमारे कतर में लाखों लोग हैं, अगर मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा. यही वो सोच है जिसे हमें बदलना है. सोचिए, अगर कतर का हर रेजिडेंट सिर्फ एक चीज कम करने का फैसला कर ले तो उसका असर कितना बड़ा होगा. अगले एक महीने के लिए अपने आप से एक वादा कीजिए, सिर्फ एक चीज कम. शायद वो एक प्लास्टिक बैग हो सकता है जो आप सुपरमार्केट में मना कर देंगे. शायद वो एक मिनट हो जो आप अपने शहर में कम बिताएंगे. शायद वो एक अननेसेसरी कार ट्रिप हो जिसके बजाय आप वॉक करेंगे या मेट्रो लेंगे. एक मिनट पानी बचाने का मतलब है तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी. अगर 30 लाख लोग एक मिनट बचाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा समंदर हम बचा रहे हैं. याद रखिए, समुंदर में उठने वाली हर बड़ी लहर एक छोटी सी हलचल से शुरू होती है. स्मॉल रिपल्स क्रिएट बिग वेव्स. ये वन लेस रूल आपकी लाइफ को आसान बनाएगा और हमारी मिट्टी को सुकून देगा, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए. उसके बाद आता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कि बिकम अ सिटीजन साइंटिस्ट. आपको साइंटिस्ट बनने के लिए किसी बड़ी लैब या व्हाइट कोट की जरूरत नहीं है. आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक टूल बन सकता है. कैसे? हम कतर में रहते हैं, ठीक है, जहां लोग सोचते हैं कि सिर्फ रेत है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी बायोडायवर्सिटी लाजवाब है. एक आई नेचुरलिस्ट या इसके जैसे कई सारे एप्स हैं जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं. तो जब आप वीकेंड पर जकरीत जाते हैं या फुवारित के बीच पर होते हैं या अपने गार्डन में बैठे होते हैं, तो जरा रुकिए. वहाँ कोई अनजान सा परिंदा दिखे या रेगिस्तान का कोई छोटा सा फूल, उसकी एक फोटो लीजिए और ऐप पर अपलोड कीजिए. आपको शायद लगेगा कि ये सिर्फ एक फोटो है, लेकिन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है. आपकी एक फोटो से उन्हें पता चलता है कि हमारी वाइल्ड लाइफ कहाँ पनप रही है, कौन से पौधे खत्म हो रहे हैं और किन्हें हमें हिफाजत देनी है. समझ रहे हैं आप? आप कतर के डिजिटल गार्जियन बन सकते हैं. हमारी मिट्टी की कहानी लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं. साइंस को लैब से निकाल कर अपने फोन में जगा दे सकते हैं. हमारा तीसरा और सबसे अहम उसूल, कीप द कॉन्वर्सेशन अलाइव. सस्टेनेबिलिटी खामोशी में दम तोड़ देती है. आप समझते हैं, अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना, तो ये सिर्फ एक किताबी लफ्ज बनकर रह जाएगी. इसे अपनी मजलिस का हिस्सा बनाइए. अपने दस्तखान पर इसका जिक्र कीजिए. सबसे ज़रूरी है हमारे बच्चे, उन्हें बताइए कि ये रेगिस्तान सिर्फ धूल और रेत नहीं है, ये एक नायाब खजाना है. उन्हें सिखाइए कि अट्रैक्शन सिर्फ मॉल की लाइट्स में नहीं, बल्कि एक खिलते हुए सिद्रा के पेड़ में भी है. जब हम बात करते हैं तो हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, और जब अवेयरनेस पैदा होती है तो हिफाजत, प्रोटेक्शन अपने आप शुरू हो जाती है. तो जनाब, हमने आज क्या बचाया? अपने पड़ोसी को बताएं कि रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है. जब हम एक साथ बोलेंगे ना, तो हमारी आवाज़ 2030 के विजन को हकीकत में बदल देगी. तो बिल्कुल ना झिझके, अपनी ज़मीन पर अपना हक जमाएं और सही बात सब तक पहुंचाएं. इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज का हमारा ग्रैंड फिनाले, आज हमारा कतर ग्रीन बीट ये आखिरी एपिसोड था, जिससे अब मैं रुखसती लेना चाहूंगी. अब दुआ करते हैं कि अगले एपिसोड में आपकी मेरी फिर मुलाकात हो नए नवेले टॉपिक्स के साथ. आपको हमारा कतर ग्रीन बीट कैसा लगा, आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने मैसेजेस के साथ, और हमारे FM 107 की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं. और अभी इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त. अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और अपने कतर को हरा भरा बनाने में, सस्टेनेबल बनाने में जो भी आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके वो ज़रूर दीजिएगा. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट.
2: number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
1: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Sameen kehte hai na ki bandar ko saath mein rakhoge to wo zarur tumhare kandhe par sawar hoga. Kahawat ka matlab ye hai ki agar kisi khaas mizaj wale shakhsiyat ke saath taluq rakhte hain hum ya inke saath ulajhte hain to aapko inse hone wale nuksan ya takleef ko zarur bardasht karne ke liye taiyar rehna padega. क्योंकि आपने खुद ही इस किस्म की सूरत हाल का इंतखाब किया है. अरबी जबान की कहावत है, اللي يلعب مع القط يصبر على خرابيشه, यानी जो बिल्ली पालता है, बिल्ली के साथ खेलता है, उसे जरूर उसके नाखूनों को बर्दाश्त करना होगा. اللي يلعب مع القط يصبر على خرابيشه.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। लिसनर्स, हमारी जो हेयरिंग हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, और वो किस तरह से मुतासिर होती है, जो नॉइस पॉल्यूशन है वो भी उसे मुतासिर करती है। तो सामिन, शोर सिर्फ परेशानी नहीं है बल्कि सेहत के लिए भी ख़तरा है। हेडफोन्स पर ज़्यादा आवाज़, ट्रैफिक का शोर, तामीराती काम जहाँ हो रहे होते हैं उससे भी हमारे कान मुतासिर होते हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कान अंदर से बहुत ही नाजुक हैं और ज़्यादा शोर सुनने की सलाहियत कम हो सकती है। कान के जो अंदर मौजूद हेयर सेल्स हैं वो ज़्यादा शोर से मुतासिर होते हैं। थोड़ा थोड़ा नुकसान जमा होकर फिर मुस्तकिल मसला बन सकता है, बच्चों में ज़्यादा ख़तरा होता है। इसी तरह जो हेयरिंग लॉस है वो उनकी इब्तदाई अलामत हो सकती हैं, जो बिल्कुल हमें ऐसे महसूस होता है कि कान में सीटी की आवाज़ आ रही है, बात समझने में मुश्किल होती है, टीवी की आवाज़ जो है वो ज़्यादा करना पड़ती है, और इसी तरह बार बार बात को दोहराना पड़ता है किसी भी बात को समझने के लिए। इस तरह से जो एयर प्लग्स हैं या नॉइस रिडक्शन हेडफोन्स हैं वो हमें इस्तेमाल करना है कि हम किसी तरह से अपने कानों को बचा सकें। इसी तरह जो मोबाइल हैं उनके जो हेडफोन हैं उनकी आवाज़ आप 60% से ज़्यादा ना कीजिए। इसी तरह जो हियरिंग टेस्ट हैं वो बाकायदगी से करवाना ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है और उनके कान जो हैं वो ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो उनके लिए हियरिंग टेस्ट भी बाकायदगी से करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को शोर वाले माहौल से ज़रूर बचाइए। तो लिसनर्स, कानों की हिफाजत जिंदगी भर की नेमत है और इसे नुकसान से बचाइए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

आइए, वेलकम वेलकम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन, वेलकम टू द वर्ल्ड जो बदलता ही रहता है हर सेकंड, वेलकम टू टेक इनोवेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं दूहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड टेक इनोवेशन में आज भी बहुत कुछ बर-बर की ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके काम आएंगी, कोई भी ऐसी बात नहीं जो घुमा फिरा के करनी पड़े, पॉइंट ब्लैंक एक एक चीज आपके काम की। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर आपको चीज ना समझ में आए, आपको लगे कि दोबारा सुननी है या जानना है, तो आप बाकी शोज में मुझसे पूछ सकते हैं जब मैं लाइव रहूंगा आपके साथ। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों से टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के बारे में भी। आई लव इट, आई लव गैजेट्स, आई लव टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं बहुत ही चाव से आपके लिए सब लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्स की, फिर गैजेट्स की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तो मेनली जो चीज मेन है, सोशल मीडिया हैंडल्स, वहां पे जरूर जरूर जुड़े रहें, परिवार हमारा बढ़ता रहना चाहिए सोशल मीडिया का। सो FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। सो प्लीज गेट इन टच विद अस, ठीक है? शुरू करते हैं सबसे पहले AI tools apps this week से trending apps। तो सबसे पहले ऑन द लिस्ट, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रैंडमली आपको बता रहा हूं। तो नंबर वन पे मैं सबसे पहले बात करूंगा sushi.ai की, SWISHY sushi.ai। ये जो AI है, एक कमाल की वेबसाइट है इसकी, जब आप गूगल पर डालेंगे तो वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। ये हर किसी सोशल मीडिया पे काम करने वाले बंदे के लिए है। अगर आप अपना करियर सोच रहे हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप वीडियो एडिट करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। ये AI ये वेबसाइट आपको देती है मोशन ग्राफिक्स, जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से, इंट्रोज देख सकते हैं आप, कट्स लगा सकते हैं। और आपको कोई भी अगर टेम्पलेट पूरी वेबसाइट पे समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी इतने सारे सिलेक्शन में से मेरे पसंद का कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर कि यू नो व्हाट, मुझे ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा चाहिए, ये कलर चाहिए, ऐसी स्टाइलिंग चाहिए, एंड इट विल गिव यू। मोस्टली फीचर्स इसके फ्री हैं, जो प्रो वर्जन है इसका वो कुछ चीजों के लिए है, तो आपका काम हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो स्विशी, ये जब आप नाम टाइप करेंगे गूगल पे, सबसे पहली वेबसाइट आएगी, वहां जरूर जाइएगा। सो SWISHY, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे जो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे काम करते हैं या बनाना चाहते हैं कुछ, ये आपके लिए बहुत मददगार है ये, ट्राई दिस वन, आपको सच में अच्छे लगेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई मेरा फेवरेट, इसका नाम है Pixabay, PIXABAY, दोबारा बोल देता हूं, PIXABAY। अभी क्या करता है ये वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, Pixabay, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, पहले ही वो है वेबसाइट होगी। तो अमूमन जब आप ढूंढने निकलते हैं, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, आपको कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, बहुत मसले आते हैं, फिर आप उन साइट्स पे जाते हैं जो आपको पेड वर्जन लेने पे मजबूर कर देते हैं, बिकॉज दे विल नॉट गिव यू फ्री वर्जन ऑफ इट। उन सब का तोड़ यही है, आप Pixabay जाइए, आपको साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, आपको बैकग्राउंड स्कोर मिलेगा, आपको म्यूजिक मिलेगा फॉर योर वीडियोस, आपको अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस मिल जाएंगे, और ये ट्रेंडी ट्रांजिशंस हैं इस वेबसाइट्स पे। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेंडिंग चल रही हैं, जो आपने कहीं साउंड सुना है बहुत ज्यादा फेमस है, एंड यू वॉन्ट टू यूज इट समवेयर इन द वीडियो, और आप ढूंढ रहे हो उसको, यूट्यूब पे लगे हुए ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, वो आपको यहां मिलेगा। ये फ्री है और इसका एक एक चीज आपके काम आ सकती है। तो अगर आप काम करते हैं वीडियोस पे, आप काम करते हैं ऑडियो के चीजें बनाते हैं, और या आपको जनरली प्रोफाइल के लिए कुछ चाहिए अपने बनाना है, तो ये डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इट इज ऑल फ्री एंड यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड आपका काम हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। Pixabay, P I X

0: ट्रांजिशनल हुक्स HOOKS.com. ट्रांजिशनल हुक्स की जो वेबसाइट है ये आपको सारे ट्रेंडी ट्रांजिशन देगी, आपको उन्हें अलग से एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काम आएगा आपके वीडियोस में. समटाइम्स आपको ट्रांजिशन देखते हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो में एंड यू आर लाइक यार ये कैसे किया इसने, यार ये तो ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे, और फिर आप अपने तिगड़म लड़ाते हैं, आप फिर एआई के पास जाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं. मगर यहाँ पे आपको हाथों हाथ एक टेम्पलेट मिल जाएगा और उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं. लिटरली स्काई इज द लिमिट. आप इसमें देखेंगे तो वही ट्रांजिशन है जो आपको अक्सर रील्स में मिलते हैं, आपको टिकटॉक पे नजर आते हैं, या आपने देखा होगा कि बड़े फैंसी तरीके से ट्रांजिशन होता है एक चीज से दूसरी चीज की तरफ यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स इसे यूज करते हैं, तो ये आपके काम भी आ सकता है. सो ये मैंने जो आज आपको तीनों चीजें बताई हैं, ये तीनों चीजें आपके करियर को एज एन इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे बूस्ट करेंगी, डेफिनेटली हेल्पफुल, एंड आप करते करते सीखते चले जाएंगे. समझ रहे हैं इन वेबसाइट्स के साथ क्या है कि करते करते चीजें समझ में आती हैं और जब आ जाती हैं तो एक एक फन वे में आप बहुत कुछ सीख भी जाते हैं और यू नेवर नो कि आपका करियर किक ऑफ हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट पे वही चीज चलती है जो थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको फिनिश्ड नजर आती है, फिनेस होती है उसमें, लगता है कि हाँ यार इस पे काम किया गया है. तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम स्मूथ और एकदम ऐसा लगे कि हाँ एक्सपर्टीज आपकी नजर आए तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो, और ये वाली तो बहुत जरूरी है, transitionalhooks.com transitionalhooks.com. ठीक है, ट्राई दिस वन आउट. अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स की तरफ. इन गैजेट्स दिस वीक
1: cool gadgets.
0: तो गैजेट नंबर वन, मैंने सोचा था इस बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बजट में आपको मिल सकता है और बहुत शानदार मिल सकता है. तो बजट फ्रेंडली एक हेडफोन है, बेसिकली एयरबर्ड्स हैं जो आपके बहुत काम के हैं. ये है बाय नथिंग CMF बर्ड्स 4A. तो CMF जो बर्ड्स हैं ये इतने सही हैं कि आपको लगेगा यार ये महंगे होने चाहिए थे. समटाइम्स यू फील अरे ये इतने सस्ते कैसे हैं यार, ये तो बढ़िया काम करते हैं. एंड CMF के जो बर्ड्स हैं मैंने यूज भी करके देख लिए और मैं पक्के यकीन से कह सकता हूं कि आपको अगर एक बजट में बहुत बढ़िया साउंड चाहिए तो ये आपके काम का है. सो CMF नथिंग के जो एयरबड्स हैं वो आप चेक कीजिए, आपको मिलेंगे. बहुत सारे वर्जन हैं मगर जो 4A है और जो उसके प्रो वर्जन हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफी बजट फ्रेंडली हैं. ऐसा नहीं है सीधा लाओ जी 1200 रियाल निकालो 800 रियाल निकालो, ऐसा नहीं है. और अगर आप का कोई दोस्त है जो इंडिया से आपको लाके दे सकता है क्योंकि इंडिया में अमेजोन से डिलीवरी होगी या फिर लोकल स्टोर से मिलेगा तो और भी सस्ता मिलेगा. कितना सस्ता बताऊं आपको, दिल में याद रखो महज 120 रियाल में, इस साधन मैक्सिमम नहीं तो 150, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा. तो ये बहुत बहुत इफेक्टिव एयरबड्स हैं, बजट फ्रेंडली भी हैं, दिखते महंगे, ऊपर से कलर्स अलग आ जाते हैं इसमें. तो ये आप देखिएगा एंड ऑर्डर कर सकते हैं. अब कतर में लोकली कहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, वरना आपको दिखे तो आप बता दीजिएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर बजट फ्रेंडली गैजेट. अब जो गैजेट के बारे में बात कर रहा हूँ ये भी बड़ा कमाल का है. अमूमन जब हम स्मार्ट वॉच की तरफ जाते हैं तो बहुत वाइड रेंज है, बड़े बड़ी कंपनी इसमें कूदी हुई हैं, राइट फ्रॉम सैमसंग टू एप्पल टू Huawei एंड डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं जो फिटबिट, ये सब कुछ एक साथ इनमें जंग हो रही है. और जो स्मार्ट वॉचेस का जो रेंज है वो भी बढ़ती चली जा रही है. आपने देखा होगा रिसेंटली टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी हो गई है, जो वॉचेज हैं वो भी 1500 को क्रॉस कर रही हैं. आई रिमेंबर व्हेन एप्पल लॉन्च्ड वन वॉच और मैंने खुद जाके वो देखी थी तो 2100 रियाल की थी. तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी में स्पेशली स्मार्ट वॉचेस की जो जो जो सेक्शन है वो 1000 के नीचे बात नहीं करता, करता भी है तो बहुत कम. बट देन ऐसे में एक बजट फ्रेंडली वॉच हो तो कितनी कमाल की है. और मैं बैटरी लाइफ को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सस्ती है तो भाई इसकी तो बैटरी खराब होगी, ना बैटरी बाकियों से बहुत बढ़िया और घड़ी तो और भी बढ़िया और ऊपर से बजट फ्रेंडली. तो ये है CMF अगेन नथिंग की है वॉच प्रो टू CMF वॉच प्रो टू. अगर लोकली अगेन मुझे दिखती है तो मैं आपको बताऊंगा, आप कहीं लोकली कतरे में मिले तो आंख बंद करके आपका मन कर रहा है स्मार्ट वॉच लेने का तो ये ले लेना, बजट फ्रेंडली है. एंड इस वॉच का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, इंडियन रुपीज में बात करूं तो 3999 था, 4000 को मिला के, तो अगेन इट इज अराउंड दैट रेंज. तो यहाँ पे हो सकता है कि 250 रियाल के आसपास हो, मगर 250 रियाल और 300 रियाल फॉर अ स्मार्ट वॉच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब बहुत बढ़िया ऑप्शन.

0: ये घड़ी आपकी कलाई पे सस्ती भी नहीं दिखती, सबसे अच्छी बात ये इट लुक्स फैंसी, इसका जो यूआई है वो भी बहुत बढ़िया है, एंड आई हैव बीन यूजिंग वन ऑफ दोस वॉचेस, मैं उसका नाम भूल गया मगर वो सीएमएफ की वॉच ही है और मेरा पर्सनल यूज है, इसलिए आपको बता रहा हूँ बैटरी लाइफ इसकी बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है। और आपके जो बेसिक काम है, आपको स्लीप ट्रैकिंग करनी है, हार्ट बीट है, ये सब है, आप जिमिंग करते हैं, आप वॉक कर रहे हैं, यू नो स्टेप्स गिने, एवरीथिंग एनीथिंग जो जो बेसिक चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिसाइसली आपको जरूर बताएगी ये वॉच। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली वॉच देख रहे हैं, दिस इज फॉर यू, और आपको लगे कि शेयर करना है, अगर लोकली कहीं मिलती है लेट मी नो एज वेल। सी एम एफ वॉच प्रो, गो फॉर इट, बड़े आगे चलो भाई। लास्ट गैजेट ऑन द लिस्ट, बहुत प्यारा, मुझे इस गैजेट से भाई हो गया प्यार, मोहब्बत हो गई सच्ची वाली। मैंने इतने सारे कीबोर्ड्स आपको आज तक बताए, कितने सारे कीबोर्ड बताए, कोई कीबोर्ड फोल्ड होकर जिम में आ जा रहा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, मगर यार इस कीबोर्ड से मेरे को हो गया प्यार भाई। ये कीबोर्ड है ओला, इसका नाम है AULA F75। ये एक कीबोर्ड है, आरजीबी लाइट है, बोलिंग आरजीबी लाइट तो कीबोर्ड में मिल ही जाती है, क्या बड़ी बात है, मगर ये ट्राई मोड गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसमें एक नॉब भी दी हुई है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी नॉब है राइट हैंड कॉर्नर में, और बड़ा अच्छा उसका फंक्शन है, ब्राइटनेस पे उसे लगा दो, वॉल्यूम के लिए यूज कर लो, एंड ये एनिमे स्टाइल में है। जो लोग गेमिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं शायद वो समझेंगे, एनिमे स्टाइल अगर आप एनिमे देखते तो भी समझेंगे, तो एक अलग सा लुक है इसका। ये कीबोर्ड इतना प्यारा लगा ना मुझे कि मैं अगर पीसी पे गेमिंग कर रहा होता तो मैं पहली फुर्सत में से लेके आता, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे यूएसबी के सेक्शन दिया हुआ है, ऑन ऑफ है ब्लूटूथ का, एंड आई रियली लव द फैक्ट कि उन्होंने तो इस कीबोर्ड को फन बनाया, मतलब लग रहा है यार फन है कीबोर्ड। गैजेट तो ऑलमोस्ट कीबोर्ड के मामले में तो सारे कीबोर्ड आपको सेम ही लगेंगे, बट उसमें भी फन डाल देना जस्ट शोज की मेहनत की गई है, तो ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई कीबोर्ड के शौकीन है तो आप इसे देख सकते हैं, अगेन ये इंडिया में तो बहुत इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अमेजोन की डिलीवरी आपके यहाँ आती है तो आप जानते हैं तो मंगा लीजिएगा भाई। मैं नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, AULA ओला क्यों बोल रहा हूँ, ओला आई प्रोबेबली थिंक यही इसके प्रोनाउंसिएशन होगी, AULA F75, एफ लाइक इन फ्रूट 75, नंबर 75, ओके। तो ये थे गैजेट्स दिस वीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, खबरों में बहुत कुछ है भाई, आ जाओ इन टेक न्यूज। सबसे पहली खबर है, लोगों की नजर बनी हुई है आईफोन की तरफ, एप्पल लॉन्च करने वाला है सितंबर में, क्या होने वाला है, ये आईफोन 18 क्या लेके आएगा। देखो रूमर्स जो आ रहे हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं उसके बारे में बता देता हूँ, कहा जा रहा है कि नए नए कलर्स में लॉन्च होने वाला है। इस बार जो कलर यूज कर रहे हैं वो डार्क चेरी और बर्गंडी शेड है, डार्क चेरी में पता नहीं कैसा लगेगा, आई डोंट नो, ऑरेंज तक ठीक था भाई, पर डार्क चेरी और बर्गंडी शेड में इस बार आईफोन आ सकता है, जो प्रो कलर्स होंगे एप्पल के, एंड वो नए नए कलर्स को भी टेस्ट करें, तो जब तक लॉन्च होगा उनका फ्लैगशिप फोन तो पता नहीं कहां कहां चला जाएगा, और कॉस्मिक ऑरेंज भी है, कॉस्मिक ऑरेंज भी होगा इस बार अगेन। मगर जो मेन चीजें हैं वो है डायनेमिक आइलैंड आईफोन का, वो और छोटा कर दिया गया है, ये कह रहे हैं कि वो जो फेस आईडी है ना वो इस बार डिस्प्ले के अंदर है, यू नो जो मैं बताता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि जबकि Xiaomi जैसे फोन बहुत पहले कर चुके हैं, Samsung भी कर चुका है, तो उन्होंने फेस आईडी को इस बारी फेस आईडी कंपोनेंट्स को अंडर द डिस्प्ले कर दिया है, तो जो डायनेमिक आइलैंड है उसे और छोटा कर दिया है और एक यूनिफाइड लुक देने की कोशिश करी है अलग अलग रंगों के साथ। तो आई डोंट नो ये कितना सच है, ये 95% सच है, 5% तो झोल हो गया तो मैं कह नहीं सकता, मगर ये मैं बहुत पुख्ता खबर लेके आया हूँ, तो जब आईफोन 18 आएगा तब देख लेंगे हम। कुछ लोग कह रहे थे इस बार तो फोल्ड आ जाएगा आईफोन का, भाई मुझे नहीं, मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आईफोन अभी फोल्ड की मार्केट में उतरेगा, आई डोंट थिंक सो, वो कुछ नया ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दे वो अलग बात है, बट आईफोन विल नॉट कम फॉर फोल्ड्स, आई डोंट थिंक सो।
1: एंड एंटरटेनमेंट,
0: एंड लास्ट खबर जो है वो है गेमिंग की दुनिया से, मॉर्टल शेल 2 रिलीज हुआ है, रिव्यू से पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, फिर गेम प्ले आया फिर लगा अरे बाप रे ये तो चाहिए, और फिर रिलीज हो गया तो अब ऐसा हो गया ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मॉर्टल शेल 2 गेमर्स जाग जाओ, ये बहुत बढ़िया है, 30 आवर का गेम प्ले है, कमाल का है, फॉर द फुल गेम कॉम्बैट से लेकर हर एक चीज बहुत मजेदार है, एंड सोल गेम्स की दुनिया में आंधी लेके आया है।

0: बहुत ही ग्रिटी इन्वायरमेंट्स हैं और वो ऐसा लगता है कि एल्डन रिंग को ग्राफिकली अपस्केल करके, पहले ही ग्राफिक्स उसके बहुत अच्छे हैं, उसे और अपस्केल करके उसे कॉम्बैट को और ज्यादा ग्रिटी बना के लॉन्च कर दिया है, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो ये था हमारा टेक इनोवेशन एंड इसी के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, मिलेंगे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत की जो कि ना सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है बल्कि जिस्म, दिमाग और दिल को भी सुकून पहुंचाती है, और वो है हंसी यानी लाफिंग। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, दबाव या मसरूफियत का शिकार है। ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी और हंसी के चंद लम्हे शामिल कर लें तो उसके हैरत अंगेज फवायद हासिल हो सकते हैं। जब हम दिल खोलकर हंसते हैं तो दिमाग ऐसे कुदरती कीमियाई मादे खारिज करता है जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये हमें खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। जब आप हंसते हैं तो जहनी दबाव कम हो जाता है, जिस्म के मसल्स का तनाव कम होता है, सांस गहरी होती है और जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है यानी बेहतर अंदाज में होती है, दिल कुछ देर के लिए मौसर तरीके से काम करता है। कई माहिरीन हंसी को कुदरती स्ट्रेस रिलीफ भी कहते हैं। हंसने से दिमाग का मुस्बत अंदाज फिक्र मजबूत होता है। जब इंसान खुश होता है तो मसाइल का बेहतर अंदाज में सामना कर सकता है, फैसले निस्बतन बेहतर करता है और दूसरों के साथ उनका रवैया भी खुशगवार रहता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि दिल खोलकर चंद मिनट हंसने के बाद इंसान ज्यादा पुरसकून महसूस करता है क्योंकि जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो लिसनर्स, मुस्कुराहट मुफ्त है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये ना सिर्फ आपको खुश रखती है बल्कि दूसरों के दिल भी जीत लेती है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है फ्रीलांसिंग का फ्यूचर। क्या फ्रीलांसिंग रोजगार का एक नया मुस्तकबिल होगा? हो भी सकता है। जी हाँ, ये टॉपिक आज की यंग जनरेशन, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। आजकल हम अक्सर ये वर्ड सुनते तो हैं ही। कोई ग्राफिक डिजाइनर फ्रीलांसर है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई प्रोग्रामर है, कोई ट्रांसलेटर है, कोई वीडियो एडिटर है या कोई डिजिटल मार्केटर है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या फ्रीलांसिंग सिर्फ एक ट्रेंड है? क्या ये फ्यूचर का एक रोजगार का तरीका? क्या आने वाले सालों में ट्रेडिशनल जॉब्स की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी? चलिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी एक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि आप अपने स्किल्स को डिफरेंट क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं और प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर काम करते हैं। आप घर से, कॉफी शॉप से, दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। इसीलिए फ्रीलांसिंग को अक्सर वर्क फ्रॉम एनीवेयर लाइफस्टाइल भी कहा जाता है। देखिए, फ्रीलांसिंग आज के टाइम में पॉपुलर हो रहा है। आज इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। कतर में बैठे हुए फ्रीलांसर अमेरिका, यूरोप या एशिया के किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। कंपनीज भी अब टैलेंट को लोकेशन से ज्यादा स्किल्स की बुनियाद पर हायर कर रही हैं। और इसी वजह से फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क दोनों के ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं।

0: बहुत से लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे फुल टाइम करियर बना चुके हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्रीलांसिंग के फायदे नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा जो मुझे देखने को मिलता है, जो समझ में आता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने वर्किंग आवर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो सुबह काम करिए, इवनिंग पर्सन हैं तो इवनिंग में काम करिए, अगर रात में ज्यादा प्रोडक्टिव है तो रात में काम कीजिए। ये आपकी चॉइस है। और दूसरा बड़ा फायदा, इनकम पोटेंशियल। यहाँ ट्रेडिशनल जॉब में अक्सर सैलरी फिक्स्ड होती है, जबकि फ्रीलांसिंग में आप जितना ज्यादा स्किल्स आपका है उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप हासिल कर सकते हैं और उतना ज्यादा अर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एक और तीसरा बड़ा फायदा, वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप किस क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं, किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, ये फैसला आप खुद करते हैं, कोई आप पर थोपता नहीं है। वहीं पर फ्रीलांसिंग के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। हर चीज अपने साथ कुछ ना कुछ चैलेंज तो लेकर आती है, और इसका सबसे बड़ा चैलेंज है इनकम स्टेबिलिटी। हर महीने प्रोजेक्ट्स मिले ये जरूरी तो नहीं, मतलब आपकी इनकम स्टेबल नहीं हो सकती। कभी आपने बहुत ज्यादा कमा लिया, कभी बहुत कम। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो समझ में आता है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब बॉस या ऑफिस ना हो तो आप अपने आप को मोटिवेट रख नहीं पाते, डेडलाइंस मीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और तीसरा बड़ा ड्रॉबैक है कंपटीशन। जी हाँ, दुनिया भर के फ्रीलांसर्स एक ही प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसीलिए लर्निंग और स्किल इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं पर देखिए, फ्यूचर में फ्रीलांसिंग कहाँ जाएगी, कैसे बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में डिजिटल स्किल्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी हो, प्रोग्रामिंग हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, इन सारी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एआई कुछ जॉब्स को ऑटोमेट करेगी, लेकिन क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जैसे स्किल्स की इम्पोर्टेंस फिर भी रहेगी। यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाना काफी तो नहीं रहेगा, अडॉप्ट करना और नए स्किल्स सीखना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वहीं पर प्रोफेशनल लाइफ में फ्रीलांसिंग, ये भी सोचिए, एक ग्राफिक डिजाइनर ऑफिस जॉब भी कर रहा है और वीकेंड पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी लेता है। इस तरह वो अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकता है। इसी तरह एक टीचर ऑनलाइन ट्यूशंस कर सकता है, एक जर्नलिस्ट कंटेंट राइटिंग कर सकता है, और एक प्रेजेंटर वॉइस ओवर प्रोजेक्ट कर सकता है। यानी फ्रीलांसिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। क्या हर किसी को फ्रीलांस करना चाहिए? अब ये एक बड़ा सवाल सामने आ जाता है धड़ाम के साथ। देखिए, जरूरी नहीं है। कुछ लोग स्ट्रक्चर्ड ऑफिस एनवायरनमेंट में बेहतर परफॉर्म करते हैं, कुछ लोगों को टीम के साथ काम करना पसंद होता है, जबकि कुछ लोग फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी को ही प्रेफरेंस देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपने करियर ग्रोथ के हिसाब से फैसला लीजिए। आप क्या पसंद करते हैं ये जानना जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि फ्यूचर जो है वो फ्रीलांसिंग का नहीं है या नहीं होना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग का ही होगा। नहीं, दोनों चीजें होंगी, ट्रेडिशनल जॉब्स भी होंगी, फ्रीलांसर्स ज्यादा होंगे। फ्यूचर एक्चुअल में उन लोगों का है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप एम्प्लॉई हो या फ्रीलांसर हो। सबसे कीमती एसेट आपकी स्किल्स है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन लर्निंग और अडैप्टेबिलिटी हमेशा से सक्सेस की की रही है, रहेगी और आज भी है। चलिए, अब यहाँ इस टॉपिक को एंड करते हैं और नए टॉपिक पर कल वापस आएंगे तो बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: Anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आज की फास्ट लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। मुझे भी अच्छी लगती है ये चीज, बस मोबाइल उठाया, ऑर्डर प्लेस किया और कुछ देर में चीज हमारे सामने दरवाजे पर पहुंच जाती है। अच्छा, ये कन्वीनियंस जरूर बहुत यूजफुल है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर फास्ट डिलीवरी के पीछे कितनी प्लानिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन होती है? मैं जरूर सोचती हूँ ये बात। तो भाई, हर छोटी डिलीवरी के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा पैकेजिंग होती है और कभी कभी सिर्फ जल्दी पहुंचाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज यूज की जाती हैं। तो क्या हम कन्वीनियंस को मेंटेन रखते हुए डिलीवरी हैबिट्स को थोड़ा सा ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं? भाई बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्यों ना आज बात कर ली जाए इको स्विच में रिड्यूसिंग फास्ट डिलीवरी डिमांड की, यानी के डिलीवरी को स्मार्ट तरीके से यूज करना और अननेसेसरी एनवायरमेंट इम्पैक्ट को कम करना। लेकिन प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। फास्ट डिलीवरी सर्विसेज ने शॉपिंग और फूड ऑर्डरिंग को बहुत कन्वीनियंट बना दिया है, बहुत ज्यादा। लेकिन हर अर्जेंट डिलीवरी के साथ कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा डिलीवरी व्हीकल्स रोड पर आते हैं, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, हर ऑर्डर के साथ पैकेजिंग वेस्ट क्रिएट होता है और छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग डिलीवरीज होती हैं। अच्छा, कभी कभी हम सिर्फ जल्दी में चीज हासिल करने के लिए मल्टीपल ऑर्डर्स कर देते हैं, जबकि अगर हम थोड़ा सा प्लान कर लें तो एक ही डिलीवरी में काम हो सकता है। अच्छा, मकसद डिलीवरी सर्विसेज को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि उन्हें ज्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है। अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं फास्ट डिलीवरी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, तो कुछ सिंपल आइडियाज हैं, मैं शेयर कर लेती हूं। पहली चीज तो ये कि अगर हमें पहले से पता हो कि चीजें चाहिए तो हम लास्ट मिनट अर्जेंट ऑर्डर से बच सकते हैं। शॉपिंग को प्लान करें ना, एक शॉपिंग लिस्ट बनाकर मल्टीपल आइटम्स एक साथ ऑर्डर करना बेहतर होता है। सेम डे की बजाय स्केड्यूल्ड डिलीवरी चूज करें, जहां जल्दी की जरूरत ना हो वहां फ्लेक्सिबल या स्केड्यूल्ड डिलीवरी ऑप्शंस चूज करें। इसी से डिलीवरी सिस्टम को ऑर्डर मैनेज करने में आसानी होती है। तीसरी चीज ये कि भाई मल्टीपल स्मॉल ऑर्डर से बचने की कोशिश करें। अगर आपको आप कह लें कि अगर आपको घर के लिए कई चीजें चाहिए तो उन्हें आप एक साथ ऑर्डर करने का प्लान करें ना, इससे पैकेजिंग और डिलीवरी ट्रिप्स भी दोनों भी कम हो जाती हैं। लोकल शॉपिंग को सपोर्ट करें, कभी कभी करीबी शॉप्स या मार्केट से शॉपिंग करना अच्छा ऑप्शन होता है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी की जरूरत ही नहीं पड़ती और चीज आप तक जल्दी भी पहुंच जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकेजिंग वेस्ट कम करें। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त जहां ऑप्शन अवेलेबल हो, मिनिमम पैकेजिंग या रीयूजेबल पैकेजिंग चॉइसेस प्रेफर करें। साथियों, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो आपको बता दूं कि अगर कोई फैमिली हर हफ्ते अलग अलग दिन छोटी छोटी ग्रोसरीज डिलीवरीज मंगवाती है ना, तो वो अपनी शॉपिंग रूटीन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके एक प्लान ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह किसी चीज की जरूरत फौरन नहीं है तो नेक्स्ट डे या स्केड्यूल डिलीवरी का इंतजार किया जा सकता है। ये छोटी सी प्लानिंग ना सिर्फ डिलीवरी ट्रिप्स को कम कर सकती है, बल्कि टाइम और रिसोर्सेज को भी बेहतर मैनेज करने में मदद देती है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस छोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसका स्मार्ट यूज करें ना। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि अगले हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग या डिलीवरी करते वक्त एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या मुझे ये चीज अभी के अभी चाहिए या मैं इसे प्लान करके कुछ देर बाद मंगवा सकता हूँ? और हमें जरूर बताएं कि आप ज्यादा किस चीज की डिलीवरी मंगवाते हैं, खाने की, ग्रोसरीज की या ऑनलाइन शॉपिंग आइटम्स की। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, जल्दी हर बार बेहतर नहीं होती, कभी कभी थोड़ी सी प्लानिंग एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट रखती है। तो भाई, छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा सा फर्क क्रिएट करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक, और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
4: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
5: गेम चेंजर Season 2। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: Anytime, anywhere.
7: Yes, anytime, anywhere.
6: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
3: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: हार्ट का जैसे आपने कहा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और उसमें जो प्लेक्स वो बन जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो क्या इसमें भी इसी तरह से होता है?
1: क्योंकि देखें जब आपकी जो आंख की सप्लाई बेसिकली आ रही है वो कैरोटिड के ऊपर से होते हुए यानी आपके नाक का गर्दन से होते हुए आंख की तरफ आती है, सो बेसिकली वो आती हार्ट से ही। जैसे सारी चीज शरियाने आपके इफेक्ट होती है, जैसे आपके पाँव की भी, आपके किडनीज की भी, इसी तरह आंखों की भी उसी वजह से अफेक्टेड होती है। वो जो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है वो जैसे सारी बॉडी को अफेक्ट करता है इसी तरह आंख को भी अफेक्ट करता है। तो ये सारी सिस्टेमिक डिजीज़ें यानी वो डिजीज़ें जो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियां, कोई कोलेस्ट्रॉल जैसे आपने कहा
0: जी।
1: ये सारी चीज़ें आपकी पूरी बॉडी के अंदर अफेक्ट करती हैं। तो क्योंकि शरियाने आंख की बड़ी छोटी होती है तो उसमें थोड़ा सा भी अफेक्ट वो आपके पूरे पार्ट को अफेक्ट कर सकता है और नज़र को अफेक्ट कर सकता है।
0: ठीक है, बिल्कुल। इस तरह जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है तो उसमें आँख की जो वेन्स हैं
1: वो भी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शुगर की वजह से भी ऐसी होता है, वो एकदम से नहीं होता। जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका सडन राइज हुआ तो वो एक सडन लॉस होता है। शुगर की वजह से क्या होता है, आपकी शरियाने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जाती है, जिसको वीकनेस आ जाती है, जिस वजह से वीक होते होते वो ये क्लॉट हो जाती है। वो जब क्लॉट आ गया या वो बंद होगी किसी वजह से तो वो जो है उसकी वजह से वो जो पार्ट है आपका आंख का वो बेसिकली अफेक्टेड हो जाता है और उसके अंदर लीकेज हो जाती है, जो आपका फ्लूइड है शरियानों से निकल के रेटिना के अंदर वीक हो जाता है और आपको वो जो पार्ट है उस तक खून की सप्लाई नहीं जा सकती, जिसकी वजह से वो पार्ट जो है डेड हो जाता है, जिसको हम इस्कीमिया मेडिकल टर्म में कहते हैं, यानी वो पार्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ना जा रहा है और ना वापस आ रहा है, तो इस वजह से वो जो पार्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो लीकेज की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और जो आपकी नज़र एकदम से अफेक्टेड हो जाती है।
0: ठीक ठीक, यानी डायबिटीज़ में आपने ब्लड प्रेशर का बता दिया कि अगर वो सडन राइज हो जाता है तब, और डायबिटिक्स जो है या क्रोनिक डिजीज
1: कोलेस्ट्रॉल, इवन प्रोटीन एस और प्रोटीन सी डिजीजेज, जैसे आपको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स हैं जिसके अंदर आपके क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। जो भी क्लॉटिंग फैक्टर से मतलब ये है कि जो आपके खून जम जाए जिसकी वजह से,
0: ठीक,
1: सो वो कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो आपके बॉडी के अंदर अफेक्ट कर सकती है, वो आँख के अंदर भी अफेक्ट कर सकती है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस तरह इस चीज़ों की वजह से। अगेन आपका प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, क्योंकि इसके अंदर आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है वो शरियाने जो है वो एकदम से क्लॉट होने यानी जमने का खतरा होता है।
0: जी ठीक, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसमें भी जैसे
1: अफेक्ट
0: कर सकता है,
1: बिल्कुल।
0: और इसमें जैसे आपने कहा कि प्रेशर है, जैसे ग्लूकोमा की हम बात करें
1: जी,
0: तो वो भी हो सकती
1: जी,
0: है
1: ये दोनों तरफ से, ये कह लें कि आपका जो रेटिनल वेन ओक्लूजन की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है और ग्लूकोमा की वजह से भी रेटिनल वेन ओक्लूजन हो सकता है।
0: अच्छा,
1: तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो होता क्या कि अगर आपकी आंख का प्रेशर हाई है तो फिर वही बात, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है, जैसे आंख का प्रेशर हाई होता है तो उसमें भी ये एकदम से क्लॉट होने का यानी उसका बंद होने का खतरा होता है, क्योंकि होता क्या आर्टरी और वेन्स एक दूसरे की क्रॉस कर रही होती है आंख के अंदर, तो अगर आपकी आर्टरी को भी कोई प्रॉब्लम हुई या आपकी वेन को प्रॉब्लम हुई है तो वो क्रॉसिंग की वजह से दूसरे को अफेक्ट कर सकती है, बंद कर सकती है बेसिकली। सो इस वजह से ग्लूकोमा जो है वो दोनों तरफ से, वो यानी रेटिनल वेन ओक्लूजन ग्लूकोमा कर सकते हैं, ग्लूकोमा रेटिनल वेन ओक्लूजन कर सकते
0: हैं, क्योंकि वो प्रेशर ही
1: ज्यादा मेन हो गया वो, क्योंकि इतनी छोटी होती हैं शरियाने कि वो एकदम से जो है उस पर कोई भी कह लें कि अबनॉर्मेलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, स्पेशली जो हमारी एंड यानी आर्टिक जो सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे किडनी का हो गया, आंखों का हो गया, स्पेसिफिकली ये सारी सिस्टेमिक डिजीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, इसलिए किडनी और आंखों की डिजीज़ नॉर्मली कोरिलेट करती हैं काफ़ी ज़्यादा।
0: अच्छा ठीक ठीक, किडनीज जो है वो भी इफेक्ट होते हैं, और
1: ब्लड प्रेशर से, जैसे आपको पता किडनीज काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर हाई है, रेगुलर शुगर हाई है, आपको पता डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, सो ये दोनों चीज़ें
0: बहुत बात करते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है कि वो आँखों का जो है, और उसमें ये एक बड़ी वजह हो सकती है उनकी ब्लॉकेज की भी। जी डॉक्टर साहब, उसमें अगर किसी को पहले कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कभी कोई स्ट्रोक हुआ है तो उसके चांसेस होते हैं, रिस्क होता है कि जो आईज हैं वो भी इफेक्ट हों?
1: बिल्कुल, उसके अंदर स्पेशली जो है ना आंख के अंदर, अगर आप कहेंगे हार्ट की वजह से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, क्योंकि वेन आपकी जब बंद होती है ना आपके पास फिर चांस होता है रिकवर होने का,

0: जब अगर आपकी आर्टरी सेंट्रल आर्टरी ओक्लूजन जिसे हम कह रहे हैं सीआरए वो कहते हैं, अगर एक दफा आपकी आर्टरी बंद होगी तो वो नॉन रिकवरेबल है, वो आप कह लें कि आपका जो आंख जो है वो खत्म होगी, खत्म होने से मुराद ये कि आपका जो विजन है वो लॉस है, क्योंकि एक दफा वो क्लॉट बन गया और वो ब्लॉक हो गया और इस्कीमिया हो गया तो वो आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए हार्ट के अंदर अगर आपको कोई स्ट्रोक होता है कुछ होता है आप स्टेंट डाल सकते हैं, आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी होती है सारा कुछ, लेकिन आंखों के अंदर वो शरीयान इतनी छोटी आप उसके अंदर ऐसे कोई चीज नहीं कर सकते।
1: अच्छा।
0: तरीके हैं कि आप वो जो थ्रोम्बस है जो कि वो आ गया है क्लॉट आ गया है उसको किस तरह डिसलॉज कर सके, बट उसके चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप पहले 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर इमरजेंसी में पहुंच गए तो फिर बड़ा रेयर चांस होता है, नॉर्मली पेशेंट इतनी जल्दी नहीं पहुंचता इमरजेंसी के अंदर, इसलिए हार्ट के स्ट्रोक की वजह से यानी जिसको हम कह रहे क्लॉटिंग की वजह से आर्टरी ओक्लूजन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हार्ट की आर्टरी की रिलेटेड, और अगर आपको सेंट्रल आर्टरी ओक्लूजन हो गई यानी थ्रोम्बस आ गया आर्टरी के अंदर
1: बंद हो गई है
0: सो आपके लिए दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जान बचाना, जान बचाने से मुराद ये है क्योंकि थ्रोम्बस आंख में आ गया तो थ्रोम्बस आपके हार्ट में भी जा सकता है, आपके लंग्स में भी जा सकता है, आपके किडनी में भी जा सकता है, तो इसलिए जो हम पहला काम करते हैं जब हमारे पास कोई पेशेंट सी आर ए ओ का आता है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं कि उसका कार्डियोलॉजी वर्कअप और ये वर्कअप मेडिकल वर्कअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हम सिर्फ आंख नहीं बचा रहे उस पेशेंट की जान बचा रहे, क्योंकि आंख का तो जो हो गया लेकिन जब वो अगर वो थ्रोम्बस कहीं और चला गया तो इंसान की जो है वो जान भी जा सकती है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके जैसे कैरोटिड डॉपलर उसका हार्ट का सारा कुछ एक्को कार्डियोलॉजी के ओपिनियन लेना और मेडिकल वर्कअप करना सारा वर्कअप वो सबसे मोर अटेंशन जो सीकिंग है वो कार्डियक वर्कअप है उस टाइम तक, क्योंकि आंख के अंदर वो इररिवर्सिबल होता है लॉस, उसको नहीं से कटते सी आर ए ओ के अंदर यानी आर्टरी ओक्लूजन के अंदर।
1: अच्छा।
0: वेन ओक्लूजन के अंदर फिर भी चांस होता है रिकवरी होने का डिपेंडिंग और डिफरेंट टाइप के होते हैं वो जिस पे हम बात करेंगे अभी यानी सी आर वी ओ और बी आर वी ओ, क्योंकि एक ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन होता है एक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होता है। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब कि आपकी जो आर्टरी जो मेन वेन है वो ब्लॉक हो गई और ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब है कि आपके जो साइड वाली वेन है वो ब्लॉक जो स्मॉल ब्रांचेज हैं उसकी वो,
1: और उसमें ये है कि वो जो वही पार्ट जो है रेटिना का वो इफेक्ट होता होगा,
0: तो थोड़ा पार्ट ब्रांच के अंदर थोड़ा पार्ट इफेक्ट होता है जो सेंट्रल रेटिनल मेन ब्रांच जो है अफेक्टेड होती है, लेकिन दोनों केसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो मैकुला है वो फिर भी अफेक्टेड होता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी लीकिंग की वजह से जो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है जिसको हम मैकुलर एडीमा कहते हैं। सो मैकुलर एडीमा जो है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि लीकिंग आ जाती है क्योंकि आपकी वेन ब्लॉक हो जाती है, सो आप कह लें एक तरह का कि पाइप ब्लॉक हो गया तो सारा पानी जो है वो बाहर निकल आया, क्योंकि मैकुला जो आपका सेंट्रल पार्ट होता है तो वो सारा उसके अंदर आके जमा
1: हो जाता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, इसमें ये एज रिलेटेड होता है कि या जो मुख्तलिफ जो वजूहत आपने बताई हैं सिर्फ वही होती हैं कि एज के साथ साथ भी ऐसी होता है?
0: नॉर्मली कहते हैं 50 इयर्स ओल्ड के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है।
1: अच्छा।
0: 50 इयर्स ओल्ड के अंदर देखें सारी क्रॉनिक डिजीजेस का ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन जो कि पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं अगेन वो यंग पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा आता है, अगेन डिफरेंट फैक्टर की वजह से हो सकता है जैसे हमने बात की स्मोकिंग हाइपरटेंशन, लेकिन ज़्यादा जो क्रॉनिक रिस्क है वो 50 प्लस ईयर ओल्ड्स के अंदर आता है जिनके अंदर क्रॉनिक डिजीजेज की हिस्ट्री है। सो अगेन एज ऑफकोर्स द मोर द एज मोर चांसेस होते हैं उसके कि सी आर वी ओ बी आर वी ओ हो सकता है, लेकिन ये कि ये नहीं कह सकते कि यंग पेशेंट में नहीं होता, इवन पेशेंट जिसको कोई कॉमोर्बिडिटी नहीं है, एक्चुअली आपके पास पेशेंट आता है जिसको कोई बीमारी नहीं, एक्चुअली आपको जब सी आर वी ओ हो गया यानी रेटिनल वेन ओक्लूजन हो गई बी आर वी ओ सी आर वी ओ तब आपको पता लगता है कि आपको हाइपरटेंशन थी, क्योंकि ऑलरेडी यानी ब्लड प्रेशर का अफेक्ट आंख पे आ गया होता है,
1: क्योंकि जो है इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे
1: प्रेशर है कि कोई भी सामने जो है वो नहीं पता चलता हमें कि क्या है, पेशेंट अपने आप को नॉर्मल ही समझता है मगर सडन कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो है सामने आए तो वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जहाँ पे पेशेंट्स में यंग पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पास होते हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि उनमें क्या खास कोई वजह है?
0: नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉर्मली होता है उनके साथ स्ट्रेस फैक्टर, कैलिंग काम की स्ट्रेस हो गई, किसी इस तरह की चीज़ हो गई, दूसरी इमोशनल स्ट्रेस हो गई, तो उसके अंदर होता क्या कि आपका ब्लड प्रेशर सडन राइज होता है. सो जब वो ब्लड प्रेशर सडन राइज होता है तो उसकी वजह से आपकी जो है ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर सिस्टोलिक 200 प्लस चला गया और डायस्टोलिक 100 प्लस चला गया. सो उसके अंदर होता क्या, वो ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि आपकी जो रगें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती वो प्रेशर को और फट जाती है एक तरह की, जैसे आपकी स्ट्रोक ब्रेन के अंदर होता है सेम उसी तरह. सो ऐसी आंखों के अंदर भी वैसी होता है कि वो आपकी जो वेन है वो फट गई कह लें आप एक तरह. सो ब्लड प्रेशर सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑफकोर्स यंगस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो मिलेगा. फिर दूसरी चीज प्रोटीन सी प्रोटीन एस जैसे हमने बात की, कोई सिस्टेमिक डिजीज इवन होमोसिस्टिन यूरिया के पेशेंट्स होते हैं कभी कभार उसके अंदर इस तरह की. सो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आप कह लें कि आपको पहले से नहीं पता लगता यंगस्टर्स के अंदर, स्पेशली डायग्नोज नहीं होता पहले.
1: ठीक ठीक.
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: जेनिसन से आज हम बात कर रहे हैं कि जो आई स्ट्रोक है वो भी होता है और आम स्ट्रोक की तो हम बात करते ही हैं, मगर उसमें क्या क्या उसकी वजूहत हो सकती हैं डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया, पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसकी अलामत क्या होती हैं, पेशेंट क्या महसूस करता है।
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विजन लॉस, इसको कहेंगे हम पेनलेस डिक्रीज ऑफ विजन। जैसे हम कह लेंगे रेटिनल अटैचमेंट में भी हमने कभी बात की कि पर्दा जो आपका फट जाता है, ये रेटिना की जो भी डिजीजेज होती है नॉर्मली पेनलेस होती हैं। तो आपके जो मेन वजह होती है उसे हम कहते हैं पेनलेस डिक्रीज ऑफ विजन। सो आपका नज़र कमज़ोर होगी, आपको दर्द वगैरह ऐसे सच नहीं होती अनटिल के ग्लूकोमा के साथ रिलेटेड हो। ग्लूकोमा के केसेस में क्योंकि आपके आंख का प्रेशर हाई हो जाता है सो आपको पेन आती है साथ, पर नॉर्मली सी रेटिनल वेन ओक्लूजन्स के अंदर पेन नहीं होती। सो आपको एकदम से आपका विजन डिस्टॉर्टेड यानी आपको धुंधलापन आ गया, आप बैठे बैठे एकदम से आपको लगा कि आपके आंख के आगे जो है धुंधलापन आ गया, हो सकता है वो धुंधलापन पूरा हो सकता है कोई एक पार्ट के अंदर हो, साइड पे हो, यानी आपको हो सकता है आपका सेंटर ठीक हो लेकिन आपको एक साइड पे साफ नजर नहीं आ रहा,
0: ये भी हो सकता है साइड से साफ हो या सामने
1: से नजर नहीं आ रहा, डिपेंडिंग कि किस पार्ट पे हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैकुला नॉर्मली अफेक्टेड होता है तो सेंट्रल आपका विजन नॉर्मली डिस्टॉर्टेड होता है यानी ब्लर्ड होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो अलामत इसके अंदर यही आती है कि आपको जो है धुंधलापन काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, कभी कभार आँख लाल भी हो जाती है अगर आपका ब्लड प्रेशर या ग्लूकोमा है तो आँख के अंदर लाल जो हो गई यानी रेडनेस भी आ गई, इंजेक्टेड हो गई आपकी आँख, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसकी वजह से भी कभी कभार आँख लाल हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट को महसूस होती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखिए, कभी भी आपको एकदम से धुंधलापन आ गया तो आप ये सोचते हैं कि एकदम से हुआ क्या, रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, डायबिटिक मैकुलर एडिमास हो गए, रेटिनल वेन ओक्लूजन हो गई, इवन रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन हो गई, उसके अंदर भी आपकी जो नज़र है एकदम से अफेक्टेड होती है। ये नहीं होता कि आपको पहले से स्लोली स्लोली कुछ हो रहा है, ये एकदम से आपको महसूस होता है कि मेरी नज़र जो है लॉस ऑफ विजन हो गया, पेनलेस लॉस ऑफ विजन,
0: पेनलेस। ठीक ठीक, इसमें और इसमें और क्या अपने सारे ये विजन से ही रिलेटेड है, पेन नहीं है, मतलब पेन ये बहुत
1: बेसिकली मेन जो पेशेंट आता है आपके पास वो इसी वजह से आता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा उसके अंदर आंख के अंदर।
0: डॉक्टर साहब वो जो बार दफा वो फ्लोटर्स नजर आते हैं या डार्क स्पॉट्स हैं वो ये नहीं होते कुछ और चीज़?
1: देखिए नॉर्मली वो विट्रियस चेंजेस ज्यादा होती हैं फ्लोटर्स के अंदर।
0: अच्छा,
1: फ्लोटर्स के अंदर क्या होता है कि आपके आंख के अंदर एक जेल होती है, वो जब वो जेल
0: आमतौर पर कहते हैं वो मक्खी
1: सी आती है जिसको हम पीवीडी कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो जेल है उसके अंदर चेंजेस आ रही। नॉर्मली आपकी वो जेल पानी की तरह शफाफ होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके उस जेल के अंदर चेंजेस आती हैं तो आपको एक कोई छोटा सा मक्खी सा नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, वो आपकी जेल के अंदर चेंजेस ज्यादा होती है फ्लोटर्स के अंदर। फ्लैशेस फ्लोटर्स ये नॉर्मली रेटिनल डिटैचमेंट की से की अलामत हो सकती है या आपके रेटिनल होल की अलामत हो सकती है। होता क्या कि आपके आंख के अंदर जो जेल है वो अटैच है रेटिना के साथ, सो जब वो जेल के अंदर चेंजेस आती हैं जैसे आपने कहा मक्खी आ गई या कोई चीज आ गई, सो आपके पर्दे के ऊपर खिंचाव आ जाता है। वो खिंचाव की वजह से या तो पर्दे के अंदर होल बन जाता है, अगर उस होल का इलाज ना किया जाए या आप लेट हो गए तो डिटैचमेंट के तौर पर यानी आपका पर्दा फट जाता है जिसको हम कह लें। सो अगर उस होल को बंद कर लिया जाए तो पर्दा फटने तक की नौबत नहीं आती।
0: अच्छा।
1: अगर हमने उस होल को सील नहीं किया तो फिर जो पर्दा फट जाता है, इसलिए फ्लोटर्स फ्लैशेस ऑफ लाइट

0: नॉर्मली पेशेंट जिन मायोपिक होते हैं इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ज्यादा अलामतें होती हैं, सो इसलिए हम उन पेशेंट्स को भी जिसको फ्लोटर्स फ्लैशेस ऑफ लाइट है स्पेशली कहते हैं कि आप वेट ना करें, आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, हो सकता कुछ ना हो बट बेटर टू चेक. लेकिन एज रिलेटेड भी फ्लोटर्स आते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो जेल है उसके अंदर एज के साथ चेंजेस आ गए, सो आपको मक्खी नजर आ रही है, आप कहते हैं मैं ऊपर देखता हूँ, या कभी बार कोई कहता है मैं यानी रकू में जा रहा, फॉर एग्जांपल मुझे धूप में ज्यादा नजर आ रहे हैं,
1: ब्लैक स्पॉट्स
0: नजर आते हैं, कभी बार ड्राइनेस के साथ भी आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं. लेकिन आपको जो है सीरियस डिजीज को रूल आउट करने के लिए बेहतर है कि उस टाइम आप दिखाएं जरूर, ताकि आपको ये पता लगे कि कोई सीरियस डिजीज नहीं, क्योंकि आप उसको जितना जल्दी कैच करेंगे उतना बरवक्त इलाज होगा. हो सकता है कुछ ना हो सकता है सिर्फ ड्राइनेस हो, या हो सकता है सिर्फ जेल के अंदर चेंजेस हो लेकिन कोई ब्रेक वगैरह या होल्स वगैरह ना हो रेटिना के अंदर, बट इट्स बेटर कि वो आप उसको एक दफा चेक करा लें और रूल आउट कर लें कि कोई सीरियस डिजीज नहीं.
1: ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप लॉस ऑफ वीएन जो है वो, मगर डॉक्टर के पास जाना उस वक्त भी जरूरी है जैसे कि आपको कुछ ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं या फ्लोटर्स
0: फ्लैशेस ऑफ लाइट. जी फ्लोटर्स फ्लैशेस ऑफ लाइट, आपको एक साइड से धुंधलापन नजर आ रहा है, कोई भी चीज आपके विजन में नॉर्मल नहीं है
1: जी,
0: आपको जाके एक दफा चेक जरूर कराना चाहिए कि हुआ क्या. अगेन एमरजेंसी हो भी सकती है और एमरजेंसी नहीं भी हो सकती, बट आपको इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि वो कोई सीरियस चीज की तरफ चला जाए. आपको कोई ट्रॉमा हुआ है फॉर एग्जांपल, आपको चोट लगी है, आपको साफ नजर नहीं आ रहा, आपकी आंख के अंदर धुंधलापन आ गया, काफी बार लोग होते हैं समझते हैं कि धुंधलापन है मैं एक दिन वेट करूंगा ठीक हो जाएगा, आंख साफ करने की कोशिश करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर ऐनक वगैरह लगाते हैं वो साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लगता है आपको वो मेरी ऐनक खराब है इस तरह की चीज हो गई, या आप वेट करते हो अभी ठीक हो जाएगा इस तरह की. लेकिन कभी कभार वो डिजीज जितना जल्दी आप चेक कराएंगे उतनी जल्दी उसकी तशखीस होगी और उतनी जल्दी उसका इलाज बर वक्त हो सकता है.
1: ठीक है लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि आई में भी जिसके वेसल जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक हो जाता है तो आई में भी इसी तरह हैं, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, उसकी अलामतें क्या हैं और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ये भी डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया. अब हम बात करेंगे कि इसकी तशखीस, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अगर जल्दी डायग्नोज होगा तो उसके मैनेजमेंट उसका इलाज भी जल्दी होगा और उसके चांसेस भी बेहतर हैं इलाज के. डॉक्टर साहब कैसे डायग्नोज कैसे करते हैं कि यही स्पेसिफिक जो है इसकी वजह है या ये डिजीज है.
0: स्पेशली आजकल रेटिना की डिजीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी ज़्यादा आ गई
1: जी,
0: सो मैं कहूँगा कि इसकी तशखीस वगैरह के अंदर भी काफ़ी, अब एक तो बर वक्त बड़ी जल्दी हो जाती है तशखीस, आपको वेट नहीं करना पड़ता, और ये कि उसका इलाज भी बर वक्त होने के चांसेस. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेशेंट जब आपके पास आता है और बताता है कि मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा, धुंधलापन नज़र आ रहा है, सबसे पहली चीज़ विजन
1: जी.
0: आप उसके विजन चेक करते हैं, आप दोनों आंखों का विजन सेपरेटली चेक किया जाता है, यानी पहले एक आंख का फिर दूसरे आंख का. तो अगर आपकी कोई दोनों के अंदर फर्क है, यानी डिस्क्रिपेंसी, यानी आपने एक आंख को बंद किया वो 6/6 है, दूसरे आंख को किया वो तकरीबन 660 कह लें कि उसको सिर्फ एक या दो लाइनें नजर आ रही, सो ये आपकी सबसे पहली अलामत है कि कोई प्रॉब्लम है.
1: ठीक है,
0: फिर दूसरी चीज डायलेटेड फंडस एग्जाम, फिर आप उसका प्रेशर चेक करते हैं, ऑफ कोर्स जो हम आंख का प्रेशर होता है उसको स्पेसिफिकली चेक किया जाता है, दोनों आंखों के अंदर कोई फर्क तो नहीं, बराबर है. नॉर्मली आंख का प्रेशर आप कह लें 8 to 20 तक होता है. ठीक है, हम उसको एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसको टोनोमीटर कहते हैं, उसके थ्रू चेक करते हैं डाई डाल के, अगेन सिंपल प्रोसेस है, स्लिट लैम्प के ऊपर किया जाता है, यानी माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक किया जाता है, उस 8 to 20 के अंदर आपका प्रेशर है तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रेशर है.
1: ठीक है,
0: फिर ऑफकोर्स ये हिस्ट्री अगर आपकी कोई नहीं है, कोई आपको क्रॉनिक डिजीज नहीं है, वो सारी जरूरी है. तीसरी चीज डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन जरूरी है. डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको नॉर्मल आंख के अंदर पर्दा पूरा नजर नहीं आता, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायलेटेड, यानी आप कह लें कि पुतली को जो है बड़ा किया जाता है, प्यूपिल को बड़ा किया जाता है इस वजह से, ताकि आप पूरे रेटिना के पार्ट को देख सके. उसके लिए एक स्पेशल लेंस होता है जिसके थ्रू हम रेटिना को चेक करते हैं,
1: उसमें वो इंजेक्शन वो भी लगाते हैं कुछ या डाई चेक
0: नहीं, उसके अंदर जो चेकअप के लिए उसके अंदर आजकल डाई की जरूरत, ऑफ कोर्स डायलेटेशन के लिए ड्रॉप्स
1: डालते हैं,
0: डायलेटेशन के लिए लगते हैं 20 to 30 minutes कह लें, आधा घंटा लगता है, उसके बाद आप पेशेंट को वेट करा के डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करते हैं.
1: ठीक है,
0: उसके बाद रेटिना को आप चेक किया जाता है, रेटिना के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी ऑप्टिक डिस्क जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व है, यानी आंख की जो नर्व है वो, दूसरी इंपॉर्टेंट

0: चीज आपका मैकुला उसको एग्जामिन किया जाता है कि उसके अंदर कोई पानी तो नहीं, कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं। तीसरी चीज आंख का वेस्कुलेचर यानी शरियाने, उसके अंदर, क्योंकि आपको जो है उसके अंदर खून नजर आएगा। नॉर्मली आंख के अंदर खून नहीं होता, जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जैसे आंख आपको जो वेसल है आपको नजर आएगा कि वो क्लॉट हो गई, ठीक है, यानी वो अबनॉर्मल हो गई। सो उसकी वजह से अगर आपके पास, जैसे हमने बात की, दो टाइप के रेटिनल वेन ऑक्लूजंस हैं, सेंट्रल और ब्रांच। अगर ब्रांच है तो उसमें एक ब्रांच जो है वो अफेक्टेड होती है। सेंट्रल के अंदर आपकी सारी ब्रांचेस जो हैं आपके पूरे रेटिना के अंदर खून के धब्बे बन जाते
1: हैं।
0: ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन के अंदर थोड़ी जगह पे धब्बे बन जाते हैं खून के। सो उसकी वजह से आप उसको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा यानी टाइप का है। फिर तीसरी चीज यानी डायग्नोसिस के बाद कि आपके पास आ गया कि आपके आंख के अंदर रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, उसके बाद जो दूसरी चीज की जाती है जो कि कभी काफी फास्ट है, वो ओसीटी है। ओसीटी आंख का अल्ट्रासाउंड होता है, एक तरह का स्पेशल मशीन होती है उसकी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर आजकल क्लिनिक के अंदर, ऑप्थाल्मोलॉजी क्लिनिक के अंदर काफी ज्यादा अवेलेबल है। उसके अंदर आप स्कैन करते हैं आंख का, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं जो कि जिसपे सिर्फ एक से दो मिनट लगते हैं, वो स्कैन करके आप, वो एक्चुअली स्कैन होता है सिर्फ आपके मैकुला के पार्ट का,
1: यानी
0: जो सेंट्रल पार्ट,
1: उसमें क्या स्वेलिंग है जैसे आप बता रहे हैं,
0: उसके अंदर ये देखी जा सकती है। क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कभी कभार, क्योंकि आंख इतना छोटा पार्ट है, मैकुला उससे भी छोटा पार्ट है, सो आपको पता नहीं लगता कि वो उसके अंदर सोजन है कि नहीं है। सो आपको वो जो मशीन है अल्ट्रासाउंड वाली, वो आपको दिखा देगी कि उसके अंदर कोई पानी है, जैसे हमने बात की स्वेलिंग है वो है। सो नॉर्मली रेटिनल वेन ऑक्लूजन के अंदर, उसके अंदर पानी जैसे हमने बात की जमा हो जाता, जिसको मैकुलर एडिमा कहा जाता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुअल लॉस के लिए। आपका विजन क्यों लॉस यानी कम होता है, क्योंकि आपका मैकुला अफेक्टेड हो जाता
1: है, ठीक है,
0: क्योंकि आपके यहाँ मैकुला के अंदर पानी चला जाता है। आप एक स्पॉन्ज की तरह इसको अलामत लें, स्पॉन्ज नॉर्मली जो उसके अंदर नहीं, स्पॉन्ज के अंदर पानी चला जाता है तो बड़ा हो जाता है,
1: ठीक है,
0: जिसके वजह से मैकुलर के जो नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल जो टिश्यू है, वो काम नहीं कर सकते और आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, कह लें कि उसके जो पावर है वो कम हो जाती है।
1: डॉक्टर जी, थोड़ा सा अपने डिस्टेंस को जाहिर उन्हें पता है, मगर फिर मैकुला मैं पूछना चाहूंगी कि क्या है ये?
0: मैकुला आंख का सेंट्रल पार्ट होता है
1: जो हमें नजर आ रहा है, जैसे
0: प्यूपल, और जो इसकी वजह से हमारी नजर जो है वो, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आंख का वो मैकुला होता है। आप ये कह लें कि जो आंख की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी मैकुलास के थ्रू आ रही
1: है,
0: आपकी जो नजर है वो जो सेंट्रल नजर है वो मैकुला के, ऑफ कोर्स पेरिफेरल विजन भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट विजन सेंट्रल विजन यानी सामने वाला विजन, वो आपका मैकुला की वजह से, और मैकुला आपका सबसे पावरफुल पार्ट होता है यानी रेटिना का। सो जो आपका पर्दे का पावरफुल पार्ट है कि जो थोड़ा सा भी उसमें कोई फर्क पड़ जाए तो आपकी नजर अफेक्टेड हो जाती है। इस वजह से मैकुला, जो भी हम रेटिनल डिजीजेस हैं, वो एट द एंड मैकुला के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका मैकुला अफेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको पेरिफेरल डिजीज जैसे वन डायबिटिक रेटिनोपैथी में, और कभी कभार रेटिनल वेन ऑक्लूजंस में भी आपका मैकुला बच जाता है कभी कभार, तो अगर वो बच गया तो इसका मतलब है आपका प्रोग्नोसिस बेटर है, यानी आपके सही होने के चांसेस
1: ज्यादा है,
0: आपके नजर बेहतर होने के चांसेस और ज्यादा है। जितना आपका मैकुला बचेगा, जितना आपका मैकुला कम अफेक्ट होगा, उतने आपके नजर अच्छे होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे।
1: ठीक ठीक।
0: ओसीटी ओसीटी करने के बाद फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैकुलर एडिमा है तो उसका इलाज किया जाता है।
1: ठीक है।
0: जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, जैसे हमने सीआरवी और बीआरवीओ की बात की, सीआरवीओ के अंदर दो टाइप होती हैं, उसको हम इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक कहते हैं। इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक का मतलब ये होता है कि आपका कितना टिश्यू डेड हो गया और कितना टिश्यू बच गया, इसको सिंपल टर्म के अंदर।
1: ठीक है।
0: उसको चेक करने के लिए हम एक डाई होती है, उसको कहते हैं फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी।
1: ठीक है। एंजियोग्राफी
0: जैसे आप कह लें कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, सारी चीज इस तरह एक फ्लोरोसिन डाई होती है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं और स्पेशल कैमरे के थ्रू पिक्चर ली जाती है। उसके अंदर पिक्चर लेने का मकसद क्या होता है, वो आपके आंखों की रगों से जाके आपको बताएगी कौन सी ब्लॉक है, कौन सा पार्ट डेड हो गया है, कौन सा पार्ट
1: जैसे ब्लॉकेज है,
0: जैसे ब्लॉकेज होती है। आप एक उसको इस तरह ले लें, वो डाई जाती है पूरी आंख में से होके आपको बता देगी कहाँ ब्लॉकेज है और कहाँ है, उसके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन वो हम नॉर्मली फर्स्ट स्टेप के तौर पर नहीं किया जाता, वो सेकेंड स्टेप के तौर पर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओसीटी है। अगर आपके ओसीटी के अंदर मैकुलर एडीमा आ गया तो आपको जल्द अज जल्द उसका इलाज कराना जरूरी है। फ्लोरेसिन के इलाज बाद में कराया जाता है, जैसे आपका टिश्यू के अंदर कोई न्यू वेसल्स तो नहीं बन गई। न्यू वेसल्स का मतलब होता है कि वो शरियाने जो कि नॉर्मल नहीं है।
1: जी।

0: आपके आंख के अंदर जो नॉर्मल वेसल्स हैं वो कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती ऑफ कोर्स, लेकिन जो न्यू वेसल्स जो कि नॉट नॉर्मल होती हैं वो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंख के अंदर खून आ सकता है, फिर उसके बाद आपकी आंख के अंदर ट्रैक्शन हो सकती है, आंख पर्दा भी फट सकता है, ये कह लें कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजंस की। अब कभी कभार इलाज कराएं भी तो ये हो जाता है, और अगर आप इलाज ना कराएं तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंख की जो पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है, और क्योंकि आपकी मेन वेन ब्लॉक हो जाती है सो आंख अपनी ये गैर जरूरी जो शरियाने उनको बनाना शुरू कर देती है। ये गैर जरूरी शरियाने जो है ये बेसिकली अच्छी नहीं होती हैं आंखें, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होती हैं, यानी बहुत नाजुक होती हैं, तो वो जब फट जाती हैं
1: चांसेस बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के,
0: ब्लीडिंग के बिल्कुल।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
5: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, दिल से देसी।
6: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
5: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
7: आप सुन रहे हैं Health Guide. डॉक्टर फौजिया शफी के साथ Only on FM 107. दिल से देसी.

0: जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि आई स्ट्रोक जो है वो क्या होता है. डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल में हमें बता रहे हैं कि उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, उसकी अलामत क्या हैं. इसके अलावा उसकी जो डायग्नोसिस है वो बहुत अहम है, और जैसे कि जल्द अगर तशखीस कर दी जाए या डायग्नोस कर दिया जाए तो किस तरह से किया जाए वो सारे डॉक्टर ने बताए. तो अब हम चलेंगे कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है, और उसकी जो एम जो है वो यही कि क्या है कि उसको इलाज कर दीजिए, ठीक हो या कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस किया जाए. जी डॉक्टर साहब.
1: ठीक, जैसे हमने बात की पहले भी कि हम इसकी ट्रीटमेंट को दो चीज़ों में डिवाइड कर लें. एक ट्रीटमेंट होगी के आँख की,
0: ठीक है.
1: एक ट्रीटमेंट होगी ओ डिजीज की जिसकी वजह से ये हुई.
0: जी
1: सही. हमें दोनों चीज़ों को करना चाहिए. तो एज पहले भी हमने बात की एक सिस्टेमिक डिजीज़ है. सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ग्लूकोमा या कोई भी डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल या कोई आपको दूसरी इश्यूज़ हैं, उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी.
0: जी,
1: क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे सो आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स और आपकी दूसरी आँख भी अफेक्टेड हो सकती है. पर्दा जब भी आंख का अफेक्टेड होता है वो कभी भी 100% अपनी वो नॉर्मल उस पर नहीं आता. तो इस वजह से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी दूसरी आंख को बचाया जाए. दूसरी चीज़ फिर आंख

0: का इलाज करने के लिए जैसे हमने बात की हम इलाज कर रहे हैं मैकुलर एडीमा का मैकुलर एडीमा के लिए स्पेशल ड्रग्स बने जिसे हम एंटी वीजीएफ ड्रग्स कहते हैं
1: अच्छा
0: एंटी वीजी देयर दो टाइप के इंजेक्शंस दिए जाते हैं आंख के अंदर
1: अच्छा ये
0: क्योंकि पर्दे की जो सबसे इंपॉर्टेंट और कह लें कि ड्रॉप्स जो है पर्दे तक नहीं पहुंच सकते सो इस वजह से ड्रॉप्स से इसको कोई फायदा नहीं होता हमें आंख के अंदर यानी रेटिना के अंदर विट्रियस जेल के अंदर दवाई डालनी पड़ती है
1: ठीक है
0: वो हम स्पेशल एक इंजेक्शन होता है एंटी वीजीएफ इंजेक्शंस मैंने बात की दो टाइप के इंजेक्शंस एक एंटी वीजीएफ इंजेक्शन होता है और एक स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन होता
1: अच्छा।
0: है डिपेंडिंग के सेवेरिटी कितनी ज्यादा है उसका एडीमा
1: कितना
0: डिपेंड करता है ओसीटी के ऊपर डिपेंड करता है और एडीमा पे डिपेंड करता है और फर्स्ट लाइन पे कभी कभार आपको एंटी वीजीएफ देना पड़ता है कभी कभार आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं डिपेंडिंग किस पे लेकिन उसका तरीका दोनों का देने का एक ही है
1: अच्छा ठीक
0: आप
1: क्योंकि आमतौर पर जैसे अगर पेशेंट को कंप्लेन करते हैं जैसे डायबिटिक्स हैं ज्यादा तो वो के इंजेक्शन लगा रहे हैं मगर उन्हें ये नहीं पता कि इंजेक्शन जो है वो क्या तो वो ही आपके थ्रू पूछना चाहूंगी आप अपने लिसनर्स को जो है वो मालूमात में इजाफा होगा कि टू टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं
0: बिल्कुल डायबिटीज के अंदर भी ये एंटी वीजीएफ के ही इंजेक्शन लगाए
1: अच्छा,
0: जाते हैं
1: ठीक
0: क्योंकि आपकी जब शरियाने क्योंकि डायबिटीज के अंदर भी आपके शरियानों को अफेक्ट हो रहा है और आपको मैकुलर एडीमा हो रहा है सीआरवीओ और बीआरवीओ में भी आपको मैकुलर एडीमा हो रहा है सारे मैकुलर एडीमा का इलाज वो इंजेक्शन ही है
1: ठीक
0: वो टाइप ऑफ इंजेक्शन जो है उसमें एक दो जैसे हमने बात की एंटी वीजीएफ हैं और स्टीरॉइड्स हैं वो डिपेंडिंग कि आपको क्या डिजीज है नॉर्मली सीआरवीओ के अंदर स्टार्ट जो है वो एंटी वीजीएफ से ही किया जाता है लेकिन अगर आपका एडीमा बहुत ज्यादा हो तो उसमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जो एंटी वीजीएफ इंजेक्शन है उसका कोर्स होता है तीन या चार होते हैं यानी आपने हर महीने एक इंजेक्शन लगाना है
1: ठीक है
0: सो आपको वो इंजेक्शन लगा के तीन इंजेक्शन लगा के चार इंजेक्शन लगा के डिपेंडिंग कौन से टाइप का इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके बाद आप ओसीटी को रिपीट करते हैं
1: अच्छा
0: अगर आपका मैकुलर एडीमा सही हो गया तो आप रोक देते अगर मैकुलर एडीमा नहीं सही हुआ तो आप कंटिन्यू करते हैं
1: ठीक है
0: स्टीरॉइड्स इसके अंदर
1: उसमें कुछ वक्फा देते हैं क्यों तो
0: एक महीना
1: हार्ट
0: इंजेक्शन के अंदर इंजेक्शन के अंदर एक महीने का वक्फा
1: उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है
0: फिर एक महीने के बाद तो यानी आपने तीन इंजेक्शन लगाए एक महीना यानी एक एक महीना उसके बाद एक महीने के बाद आपने ओसीटी दोबारा रिपीट की
1: ठीक
0: देखिए ताकि आप उसको देखें कि उसका फर्क कितना पड़ा अगर मैकुलर एडीमा रिजॉल्व हो गया ठीक हो गया तो कोई इंजेक्शन अगर मैकुलर एडीमा नहीं रिजॉल्व हुआ तो आप इंजेक्शन कंटिन्यू करें और अगर आपको लगता है कि मैकुलर एडीमा को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा और बल्कि ज्यादा हो गया तो फिर आप उसमें कोर्टिजोन क्योंकि स्टीरॉइड्स मोर स्ट्रॉन्गर ड्रग्स है
1: अच्छा
0: स्टीरॉइड्स का फायदा क्या है वो एक इम्प्लांट होता है वो आंख के अंदर जब आप डालते हैं वो तीन से चार महीने तक आंख के अंदर रहता है आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती
1: ठीक है
0: लेकिन स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं स्टीरॉइड्स के आंख के अंदर साइड इफेक्ट्स क्या हैं एक तो आपको आंख का प्रेशर हाई होने का चांसेस है
1: अच्छा,
0: और अगर आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ अभी तक तो आपको कैटरेक्ट इंक्रीज होने के चांसेस
1: ठीक
0: सो आपको वो फिर कह लेंगे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये जो इंजेक्शन हम लगाते हैं इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इन्फेक्शन का
1: अच्छा।
0: जैसे आपको पता है कोई भी हम आंख बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाए सर्जरीज कराएं कोई भी चीज आपको पता है सूचर लगाएं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो प्रिवेंट कर रहे होते हैं पोस्ट किसी भी चीज के प्रोसीजर के वो इन्फेक्शन है क्योंकि हम बॉडी को एक तरह का ओपन कर रहे हैं
1: जी
0: सो बाहर से कोई बैक्टीरिया एंड वायरस कोई भी चीज आंख के अंदर जा सकती है सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफ कोर्स हम काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है आंख के अंदर बीटाडाइन के ड्रॉप्स यानी जो आपके पोविडाइन होती है उसके स्पेशल ड्रॉप्स होते हैं जो डाले जाते हैं ताकि आंख के जितने भी आंख के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो खत्म हो सके एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं लेकिन कभी कभार फिर भी साइड इफेक्ट आ जाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो चांसेस उसके काफी ज्यादा है 1 in 100,000 यानी लेकिन जो सबसे डेवस्टेटिंग साइड इफेक्ट किसी भी प्रोसीजर का आंख के अंदर वो इन्फेक्शन पर्दे के अंदर का है जिसको अच्छा। हम एंडोफ्थाल्माइटिस कहते हैं
1: ठीक
0: यानी आंख के आप पर्दे के अंदर आप कह लें कि आपके अंदर आपके जो विट्रियस कैविटी उसके अंदर इन्फेक्शन होगी क्योंकि एक जब बैक्टीरिया आंख के अंदर चला जाए या वायरस आंख के अंदर चला जाए सो वो एनवायरनमेंट काफी बेहतर होती है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए
1: ठीक
0: सो जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाता है और वो काफी ज्यादा डेवस्टेटिंग होता है अगेन चांसेस जैसे मैंने आपको कहा काफी कम है इसका इंसिडेंट काफी कम होता है बट वन ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट कहने और सबसे डेवास्टेटिंग साइड इफेक्ट है. बाकी इतना खास कोई साइड इफेक्ट इन्फेक्शन का, आपको एलर्जी हो सकती है ड्रग्स से, आंख प्रेशर वगैरह कभी बार थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस तरह की
1: है. पेनफुल तो नहीं होता है?
0: दे पेनफुल इस सेंस में कि उसमें आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया.
1: अच्छा अच्छा.
0: एनेस्थीसिया डाला जाता है, पूरा स्टीराइल प्रोसीजर किया जाता है. स्टीराइल से मुराद ये खास सफाई का ख्याल रखा जाता है, स्पेशल रूम होता है, फिर उसके बाद आंख के अंदर ड्रॉप्स डाला जाता है, सारा कुछ करके ग्लव्स यानी जैसे आप एक प्रोसीजर स्टीराइल प्रोसीजर कर रहे हैं उसका खास ख्याल रखा जाता है. दर्द पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है.
1: अच्छा.
0: मैं आपको बताऊं कि कुछ पेशेंट्स को महसूस होता है, कुछ पेशेंट को पता भी नहीं लगता. जैसे आप लगा लें कि बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, कुछ पेशेंट को महसूस होता है, कुछ पेशेंट को नहीं. बट उसको एनेस्थीसिया जरूर दिया जाता है जो कि ड्रॉप्स के जरिए दिया जाता है.
1: अच्छा.
0: आजकल आपको पता है कैटरेक्ट सर्जरीज भी टॉपिकल एनेस्थीसिया के थ्रू हो रही है, वो सेम एनेस्थीसिया इसमें भी दिया जाता है.
1: तो
0: कभी कभार बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, कभी कभार आपको थोड़ा सा महसूस होता है, बट ऐसा सच नहीं है कि आप कहें कि बहुत सख्त दर्द होती है, ऐसा नहीं. थोड़ी सी आपको चुभन जैसे एक सुई का अंदर जाने की जरूरत कभी होती है, और कभी कभार आपको पता भी नहीं लगता क्या हुआ है.
1: ठीक ठीक. किस तरह इसमें डॉक्टर जैसे कि हर चीज के, जैसे आई में लेजर ट्रीटमेंट बहुत सुना भी जाता है, तो क्या इसमें भी लेजर का इस्तेमाल होता है? लेजर ट्रीटमेंट है इसमें भी
0: जी,
1: या ये स्पेशल जो इंजेक्शन हैं वही होते हैं?
0: नहीं, पुराने जमाने में जब सीआरवी और बीआरवी होता था, क्योंकि ये इंजेक्शन इन्वेंट नहीं हुए थे, तकरीबन 15 साल पहले की बात है.
1: अच्छा.
0: तो उसके अंदर क्या करते थे, ये जो पार्ट से आपका जो कह लेंगे आपकी जो वेन ब्लॉक हो गई है
1: जी,
0: उसके साइडों पे लेजर कर दिया जाता था. लेजर क्यों किया जाता था, आप समझ लें एक डैम बना दिया जाता था
1: जी,
0: ताकि वो जो पानी है वो मैकुला तक ना जा सके. वो काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, बट उस टाइम कोई इलाज नहीं था, तो ये इलाज किया जाता था, उसको ग्रिड लेजर कहा जाता था. ये पर्दे की लेजर की बात कर रहा हूँ, नजर वाले लेजर की नहीं. पर्दे का स्पेशल लेजर होता है, पैनरेटिनल फोटोकोएगुलेशन उसे कहा जाता है. सो वो लेजर आप समझ लें कि एक जगह से पानी आ रहा है, सो हमने उसके इर्द गिर्द डैम बना दी, उसको ब्लॉक कर दिया. तो वो लेजर करके पर्दे के उस हिस्से को खत्म कर दिया जाता था कि वो हिस्से से पानी ना आए, बट फिर भी क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं से लीक होके आ जाता था, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. अब जो है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन यानी जो लेजर है उसका रोल डिफरेंट हो गया
1: जी.
0: जैसे हमने पहले बात की, जो पहले पार्ट में हम इंजेक्शन लगाते हैं मैकुलर एडिमा के लिए, फिर दूसरे हमने पार्ट में बात की फ्लोरेसिन की. जब आप फ्लोरेसिन करते हैं, आपको अगर किसी पार्ट में लगे, जैसे हमने न्यू वेसल्स की बात की थी, वो शरियाने जो कि नॉर्मल नहीं होती वो बन गई है, सो उन शरियानों को खत्म करने के लिए जो है लेजर किया जाता है. होता क्या है कि आपका जो, जैसे हमने कहा जो टिश्यू डेड हो गया है वो एक फैक्टर बनाता है जिसको हम कहते हैं VGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. वो VGF जो स्पेशल टिश्यू बना रहा है वो एक्चुअली बॉडी को प्रमोट कर रहा होता है कि मैं डेड हो गया हूँ, सो मुझे नई ब्लड वेसल्स की जरूरत है. लेकिन वो जो नई ब्लड वेसल्स बेसिकली बनती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल होती, वो फ्रेजाइल होती है. तो उसको जो है खत्म करने के लिए हमें जो है लेजर करना पड़ता है, उस पार्ट को खत्म करने के लिए कि वो VGF सीक्रेट ना करे. इसमें दोनों चीजें काम कर सकती हैं, जैसे आपने इंजेक्शन दिया तो वेसल खत्म हो सकती है, और आप लेजर करके भी उस पार्ट को यानी खत्म कर सकते हैं. सो दोनों का काफी ज्यादा रोल है. सो जैसे हमने इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक की बात की, उसके अंदर होता है कि अगर आपके पास काफी ज्यादा रेटिना का एरिया डेड हो गया है, सो सारी जगह पे आपको लेजर करके उसको खत्म करना पड़ता है कि ताकि वो VGF ना बनाए. क्योंकि इसकी एक और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है सीआरवीओ को, जिसको हम कहते हैं न्यू वास्कुलर ग्लूकोमा.
1: ठीक.
0: न्यू वास्कुलर ग्लूकोमा में क्या होता है,
1: प्रेशर जो है ना वो ज्यादा
0: होता गया कि वो शरियाने जो है सिर्फ पर्दे के अंदर नहीं बनती, वो शरियाने आपकी आयरस में जो आपका कलर्ड पार्ट है आंख का, और आपके जो एंगल्स हैं वो सारे पार्ट्स में बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि आके आपके सारे उसको ब्लॉक कर देती हैं एंगल्स को, जहां से आपके आंख का पानी का फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है आंख का वो काफी हद तक बढ़ जाता है.
1: तो
0: जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी काफी ज्यादा दर्द होती है. वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कह लें कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीआर रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जो नॉर्मली सीआरवीओ के साथ होती है, बीआरवीओ के साथ कॉमन नहीं है,
1: ये
0: काफी ज्यादा कॉमन है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के लिए.
1: तो
0: इस के अंदर एक्चुअली लेजर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आपका वो पार्ट डेड हो जाता है, सो आपकी ये शरियाने जो है बनने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं. इसलिए लोग इंजेक्शंस और उसके बाद लेजर इसका कॉम्बिनेशन, अगर आपके फ्लोरेसिन में कोई आपको शरियाने नजर आ गई सो उसमें लेजर भी कर देते हैं ताकि ये शरियाने आगे ना बढ़े।
1: ठीक,
0: क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गई और आपका ग्लूकोमा हो गया, क्योंकि ये काफी पेनफुल होता है ग्लूकोमा जो है, निवास्कुलर ग्लूकोमा जो है, वो कह लें कि पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द होती है, उसका फिर ट्रीटमेंट का प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा है, आपको एक तो आपकी नर्व भी डैमेज हो जाती है, आपका

0: ना भी डैमेज हो जाता है, प्लस आपको पेन हो गई, सो काफी ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना आपके विजन रिकवर होने के काफी कम हो जाते हैं।
1: कम हो जाते हैं, ठीक।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: लिसनर्स, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जो है वो हमारे साथ हमें बताया और बहुत सारी नई चीज़ें जो हमें मालूम है. डॉक्टर साहब, सबसे अहम बात प्रिवेंशन होती है, तो क्या इसकी में भी हम कोई ऐसी तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि हम यहाँ इस लेवल तक ना पहुँचे, यानी क्या उसकी बचने के कोई चांसेस हो सकते हैं?
1: देखें अगेन, जितना सारी चीज़ें कुछ हद तक जैसे हमने बात की क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर स्पेसिफिकली जो है यानी प्रिवेंटेबल है, इवन आपके स्ट्रेस फैक्टर, रेगुलर चेकअप आपका, कोई भी कहूँगा कि आपको हर साल में एक दफ़ा चेकअप कराना चाहिए, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, आपको डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं, कह लें कि आजकल हालात की वजह से आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है, आपके सर दर्द ज़्यादा हो रही है, आपके पीछे गर्दन में दर्द हो रही है जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की अलामतें हैं, आपकी शुगर आपको पता है आपको है, आप उसको रेगुलर चेक कराएं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चेक करा के उसको प्रिवेंट या उसको कंट्रोल किया जा सकता है.
0: ठीक है.
1: दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लग गया फॉर एग्जांपल कि आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया या आपको पता लग गया आपको शुगर हो गई है, इस तरह की कोई चीज़ होगी, एक्सरसाइज, आपके खाने पीने की रोज़मर्रा की आप जो डाइट है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आपकी नींद है, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तौर पे जैसे जैसे आप कह लें कि उम्र बढ़ती जाती है और सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप उसको उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाए. सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे आपको पता है आजकल डिजिटल लाइफ हो गई है काफ़ी ज़्यादा, टैब्स, मोबाइल्स, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, कह लें कि आजकल मौसम जो है गर्मी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये कि आप देखिए अब पार्क्स भी ऐसे बन गए हुए हैं जिसके अंदर एयर कंडीशनड पाथवेज हैं, मॉल्स के अंदर आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है वॉक वगैरह को, फास्ट फूड को कम किया जा सकता है, आप उसको ये ना करें कि रोज ही आप फास्ट फूड खा रहे हैं या इस तरह की चीजें खा रहे हैं जो कि मुजरे सेहत है. ठीक है, ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, इस तरह की चीजें हो गए जो आपकी शुगर को बढ़ा सकते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है.
0: लाइफस्टाइल चेंजेस जो है,
1: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
0: ठीक है, एक्सरसाइज है
1: बिल्कुल, और एक्सरसाइज रेगुलर, अगेन ये नहीं कि रोज की जा सके, बट आप उसको जितना बेहतर कर सकते हो और जितना अपनी हर एक अपना टाइम है, अपने हर एक का जितना उसको बेहतर कर सकता है, थोड़ा सा भी टाइम दे अपने आप को, तो अपने जिस्म को कह लें ये बेहतर तौर पे तो इम्पोर्टेंट है.
0: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब आप जो हम मैसेज क्या होगा, जैसे कि क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लाइफस्टाइल चेंजेस से और बाकी जैसे आपने कहा किसी को क्रॉनिक डिजीज हैं तो हम सब उनको कंट्रोल करते हुए इससे बच सकते हैं.
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे हमने कहा कि जी क्रॉनिक डिजीजेज हमें उसको एक तो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर चेक कराएं, जब आपको कोई आँख के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए उसको चेक कराएं. सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको ये ना करें, एक तो डिले ना किया जाए.
0: ठीक है,
1: आपको कभी भी आँख के अंदर ऐसे लगता है आपके नज़र धुंधलापन आ गया है और कह लें कि आधे घंटे में नहीं जा रहा और इस तरह नहीं हो रहा, सो आपको फ़ौरन जो है जाके चेक कराना चाहिए. एमरजेंसी 24/7 ओपन होती है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट उधर अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है एक्चुअली में, सो हर आपको उधर जाके चेक कराना चाहिए. अपनी जो भी आपको अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है उसको बेहतर तौर पे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, रेगुलर ट्रीटमेंट करानी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिस करनी चाहिए, मेडिकेशन नहीं मिस करनी चाहिए, और अपने जितने भी हम कह लें कि बेहतर तरीके से लाइफ को लीड कर सकते हैं सेहतमंदाना तौर पे, उसको लीड करने की कोशिश करनी चाहिए. और आंखों का चेकअप हमने हमेशा कहा है कि आपको साल में एक दफ़ा अगर आपको नहीं कोई बीमारी और जिस तरह अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको चेक कराना चाहिए, एक दफ़ा ज़रूर चेक करानी चाहिए. डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन, रेटिना का चेकअप, आपका विजन, आपकी डिफ्रैक्शन, आपके आंखों का नंबर, सारी चीज़ें, आंख का प्रेशर, क्योंकि ये साइलेंट डिजीजेज हैं कभी कभार, आपको पता नहीं लगता अनटिल के कोई सीरियस उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए.
0: ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें ये तो ज़्यादातर एज रिलेटेड ही है, जैसे कि एज की जो

0: जैसे जैसे चेंजेस आती हैं तो आई में भी चेंजेस हैं, मोस्टली ये होता है
1: जी। ये बेसिकली जो है एज रिलेटेड है, गालात ने जो लेंस बनाया उसमें आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ उसमें थोड़ा सा कह ले धुंधलापन सफेदपन आ गया
0: जी।
1: सो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता वो जो सफेदपन ज्यादा होता जाता है, लेंस के जो चेंजेस हैं वो मेन एज रिलेटेड। बट ये कि अगर आपको कोई ट्रोमा हो गया है, आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे फिर वही बात शुगर की आ गई, ब्लड प्रेशर है, उससे ज्यादा हो सकता है। कुछ लोगों को कंजेनिटल तौर पे बचपन में ही से ही कैटरेक्ट हो जाता है, कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो गई, होमोसिस्टिन यूरिया इस तरह की कोई चीज उसकी वजह से हो सकता है। सो उसके अंदर दूसरी वजह भी हो सकती है, बट मेन वजह एज रिलेटेड है।
0: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब जैसे ऑपरेट कर दिया तो उसकी थोड़ी जो है क्या क्या हमें एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए,
1: नॉर्मली
0: क्या केयर करनी चाहिए, वो पूछना चाहूंगी आपसे। कितने दिन ड्राइव नहीं करना, कितने दिन इस तरह, ये बताइए।
1: मैं आपको बोलूंगा जी, आजकल ना ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं,
0: ठीक है,
1: क्योंकि हर एक पार्ट का मौसम डिफरेंट है, हर एक जगह की चीजें डिफरेंट है। आजकल कुछ लोग यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह पे जहाँ के मौसम गर्म नहीं है
0: जी जी,
1: और लोग कह लें कि कोई सर्द इलाके में अच्छे मौसम, ऐसा मौसम जिसमें पसीना ज्यादा नहीं आता इस तरह कुछ है, सो उस जगह पे एक्चुअली एक से दो दिन में आपको कहते हैं कि कोई मसला नहीं। हम लोग इधर नॉर्मली एक हफ्ता पेशेंट को कहते हैं कि रेस्ट करना चाहिए। पहले दिन नॉर्मली आंख को पैच किया जाता है यानी बंद किया जाता है, नेक्स्ट दिन डॉक्टर खुद उस पैच को खोलता है। कुछ जगह पे जहाँ कह लें कि जो बड़े मुल्क हैं जिसमें पेशेंट काफी दूर दराज इलाके से आते हैं, दोबारा वापस नहीं आ सकते डॉक्टर के पास किसी वजह से, सो उनको नॉर्मल कहते हैं कि आप घर पे ही खोल ले और जस्ट ड्रॉप स्टार्ट कर ले।
0: अच्छा अच्छा, वो खुद कर सकते हैं
1: खुद, क्योंकि वो पेशेंट आप कह लें, हम बात कर रहे हैं कतर में जिधर सब कुछ एक्सेसिबल है
0: जी,
1: यानी आप कह लें कि कोई भी लोग हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ जो बड़े मुल्क हैं जिधर को कह लें कि घंटों के सफर है इस तरह का है, सो कई बार पेशेंट वापस नहीं आ सकता, जैसे कैंप्स लगते हैं, कैटरेक्ट के कैंप्स लगते हैं जिसमें हजारों के हिसाब से पेशेंट होते हैं, तो हर पेशेंट का पैच खोल के देखना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जैसे हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो एक दिन के लिए पैच करते हैं, उसके बाद अगले दिन उस पैच को खोला जाता है, फिर उसका ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन किया जाता है, देखा जाता है सब कोई इन्फेक्शन तो नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्फेक्शन कोई नहीं, जैसे पहले भी हमने बात की एंडोफ्थाल्माइटिस की, कि आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चली गई, इसके भी वही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। सो ड्रॉप्स जो है नॉर्मली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं और यानी स्टीरॉइड्स के ड्रॉप्स होते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके,
0: स्वेलिंग जो है,
1: स्वेलिंग क्योंकि आप एक कह लें कि ओपनिंग कर रहे हैं यानी आप उसके अंदर खोल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो एक बॉडी का रिकवरी भी होती है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज एहतियात, जैसे आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, साबुन नहीं जाना चाहिए, नॉर्मली पेशेंट को कहते हैं बाहर ना जाए, हम एक शील्ड लगाते हैं आंख के ऊपर, प्लास्टिक की शील्ड होती है,
0: ठीक है,
1: ताकि आंख के अंदर कोई चीज ना चली जाए, हवा चल रही है, गर्द गुबार से। नॉर्मली एक हफ्ता नॉर्मली पेशेंट को कहा जाता है। पेशेंट के अगर कोई ऐसा आपको लगे कि पेशेंट फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह पे रहता है जो कि हाइजीनिक नहीं है, तो दो हफ्ते भी उसको किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लोग हैं जो मिल के साथ रह रहे हैं और तीन चार लोग साथ रहते हैं या ज्यादा बंदे भी साथ रहते हैं और हाइजीन का इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा उस जगह पे, तो कभी कभार ज्यादा भी कह देते हैं, कोई बंदे बाहर से आ रहे हैं, हवा चल रही है, इस तरह की चीजों पे ग्लासेस या शील्ड आंख के ऊपर लगाई जाती है। फिर वो एक हफ्ते के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टीरोइड्स को कम कर दिया जाता है, एंटीबायोटिक स्टॉप कर दिए जाते हैं, लेकिन वो कि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के आंख की कंडीशन कैसी है। नॉर्मल रिकवरी पीरियड एक हफ्ते से 10 दिन होता है, आप कह लें मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आंख जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक नजर जो है उसकी बेहतर होना शुरू हो जाती
0: है। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी मेजर्स हैं जो कि अपना कर हम फिर
1: बिल्कुल
0: ये जो और बिल्कुल सही जो
1: दूसरी चीज ये
0: आंख भी हमारी आई साइट भी बिल्कुल सही बिल्कुल हो जाती है।
1: हाँ बस ये, लेकिन कि कैटरक का मतलब ये नहीं कि आपने कल कैटरक कराया तो आपको नजर आए, कैटरक क्या दूसरी चीज नजर की वो रेटिना भी है
0: जी।
1: इसका मतलब ये कि आपने अगर मोतिया का ऑपरेशन करा लिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी नजर 6x6 हो जाएगी,
0: ठीक,
1: इसका मतलब ये है कि आपके पर्दे का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है,
0: है।
1: आपका पीछे से अगर पर्दा मजबूत नहीं है, जैसे हम पुराने कैमरे की फिल्म की बात कर रहे हैं, तो तस्वीर भी आगे से अच्छी नहीं आएगी। सो सिर्फ नजर के अंदर एक कैटरेक्ट या सिर्फ पर्दे का या कॉर्निया का पार्ट नहीं होता, सारों के एक पूरे पार्ट्स का अपना अपना एक रोल है। सो कैटरेक्ट सर्जरी कोई भी कराए उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कैटरेक्ट करा लूंगा, जैसे
0: तो बिल्कुल नजर बिल्कुल
1: कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा पर्दा

0: खराब मैं ऐनक पहनूंगा तो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नजर एक्चुअली पर्दा बना रहा है। अगर पर्दा पीछे से नजर नहीं बना रहा तो या कैटरेक्ट कराएं या आप ऐनक को लगाएं, उससे बेहतर नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पर्दे की ताकत है तो उसके आप कैटरेक्ट कराएंगे तो नजर डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी, या ऐनक लगाएंगे तो नजर डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी।
1: जी, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैसेज आप क्या देना चाहेंगे?
0: सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, जैसे हम हर दफ़ा कहते हैं कि अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर कराया जाए, और आपको अगर कोई भी किसी किस्म की भी डिजीज़ हैं उसका इलाज करा, यानी रेगुलरली ज़रूर चेक कराएं। इधर मेडिकल जो केयर है वो काफ़ी एक्सेसिबल है, हर एक चेक करा सकता है, हेल्थ सेंटर हो, हॉस्पिटल्स हो, आप उसमें जाकर रेगुलरली चेक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ड्रॉप्स दी गए, कोई भी दवाई दी गई है, उसको रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, उसमें आप बद एहतियाती नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी लगा है कि आपकी नज़र धुंधलापन हो गया है और इस तरह कुछ हो गया, तो उस टाइम ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अपने ब्लड प्रेशर्स, जैसे हमने आज रेटिनल वेन ऑक्लूजन की बात की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यंग पेशेंट्स के अंदर और ओल्डर पेशेंट्स में भी फर्स्ट कॉज हाइपरटेंशन का है, क्योंकि वो एक तरह का आपका एकदम से आई होता है, लेकिन उसकी वजूहात कुछ ना कुछ ज़रूर होती हैं, जैसे स्ट्रेस हो गई। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो अपना रेगुलर मोनिटर ज़रूर किया जाए ब्लड प्रेशर, और अगर आपको लगता है कि उसके यानी फ्लक्चुएट हो रहा है, हाई जा रहा है, तो ज़रूर उसका बर वक्त इलाज कराया जाए।
1: बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर उस्मान नईम, जो कि कंसल्टेंट हैं ऑफ्थल्मोलॉजी में, फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 9 a.m. News at 9 a.m. from Urdu Radio FM 107.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9:00 آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے عرب و افریقی امور کے لیے اعلی مشیر سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ عراق میں سیکیورٹی میڈیا سیل کے سربراہ نے کہا کہ حکومت سیکیورٹی فیصلوں کو متحد کرنے اور تمام عسکری قوت کو ریاست کے ماتحت لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع حرش السعادہ کے علاقے میں قابض اسرائیلی جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے فضائی حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतरी टेबल टेनिस स्टार राशा लगराइबी के बारे में। राशा लगराइबी कतर की उभरती हुई टेबल टेनिस स्टार हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही बैनुल अक्वामी सत्ता पर अपनी पहचान बना ली है। इस साल की इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में राशा ने अंडर 11 कैटेगरी में दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी बनकर कतर के लिए एक तारीखी कामयाबी हासिल की। ये मकाम कतर की टेबल टेनिस की तरक्की और नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का सबूत है। राशा की ये कामयाबी यूथ कंटेंडर और स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का नतीजा है। ये टूर्नामेंट्स दोस्तों 31st कतर इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप सीरीज का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपनी एज कैटेगरी में बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला किया। हर मैच में कीमती रैंकिंग पॉइंट्स हासिल करते हुए राशा ने वर्ल्ड रैंकिंग्स की पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। राशा की कामयाबी पर कतर टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमाद अहमद अल हमादी ने भी फख्र का इजहार किया। उन्होंने राशा की मेहनत, लगन और बेहतरीन परफॉर्मेंस को सराहा और कहा है कि ये कामयाबी कतर के लिए बहुत अहम है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा, बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र पर जा रहे हैं, चाहे वो कारोबार के लिए हो, छुट्टियों के लिए हो, या अहले

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? From smart cities to saving precious water, desert को green करने के ideas से लेकर sustainable living तक, हम explore करेंगे हर green corner of Qatar. मतलब simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, be part of the conversation जो Qatar को बना रहा है leader in sustainability. Tune in to Qatar Green Beat with A for Amita. फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। शो का नाम है कतर ग्रीन बीट। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? वेल, हमारे कतर ग्रीन बीट का ये दूसरा सीजन अब यूं कहें तो अपने फाइनल मुकाम पर है, और ये फाइनल एपिसोड है इस सीज़न का। और उसके बाद जब दोबारा हम कतर ग्रीन बीट लेकर आएंगे तो और भी खास बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। वेल, पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक लंबी जर्नी तय की थी। हम अल थकीरा के उन गहराइयों में गए जहां मैनग्रूव सांस लेते हैं, और वहां से निकलकर हमने हमारे स्टेडियम्स के हाईटेक कूलिंग सिस्टम्स को भी देखा। हमने इंजीनियरिंग के बड़े बड़े अजूबे देखे, और रेगिस्तान के उस पुराने, वो कहते हैं ना, हिकमत यानी विजडम को भी समझा जो इस मिट्टी को सदियों से जिंदा रखती है। मगर आज इस ऊंचाई से जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ है, सस्टेनेबिलिटी कोई आखिरी मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक होराइजन है और एक ऐसा खूबसूरत इत्तफाक है जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, है कि नहीं? आज हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं जिसे पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है, द कतर नेशनल विजन 2030। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये विजन जो है सिर्फ उन ऊंची इमारतें या चमकते स्काईस्क्रेपर्स या सोलर पैनल्स के बारे में है। अब ये सब हम जानते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है, पर सच तो ये है कि इस विजन की असली जो रूह है, इसका सबसे मजबूत पिलर जो है वो है हमारा ह्यूमन पिलर। ये उन बच्चों के बारे में है जो आज एस्पायर पार्क में खेल रहे हैं, ये उस विरासत यानी लेगेसी के बारे में है जो हम उनके लिए छोड़ कर जाएंगे। तो बस आज कुछ ऐसी ही कमाल की बातें हम अपने शो कतर ग्रीन बीट पर करने वाले हैं, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ ऑन FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।

0: Green Beat.
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. और चलिए अब वक्त है हमारे सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का, जिसे हम कहते हैं द ग्रीन वायर. आज हम स्कोर बोर्ड पर एक गहरी नज़र डालेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे इस प्यारे से कतर ने जो करिश्मे कर दिखाए हैं ना, वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है. अक्सर हम हेडलाइंस पर पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन एनर्जी, पर ये क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये लफ्ज हमारी ज़मीन पर कैसे उतर रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं? आज हम सिर्फ डेटा की बात नहीं करेंगे, आज हम उस जज्बे की बात करेंगे जो कतर को एक ग्लोबल लीडर बना रहा है. सो आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू रेडी, देन आगे हमारी बातचीत करने में हमें बड़ा मज़ा आने वाला है. तो सबसे पहले बात करते हैं उस पावर की, उस शक्ति की, उस एनर्जी की जो हमारे सर पर हर रोज चमकती है. दैट इज सन या सूरज. तो जनाब, इसी साल हमने अलखरसा सोलर पीवी पावर प्लांट का इनॉग्रेशन देखा. सोचिए, कई स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए लाखों सोलर पैनल्स. ये सिर्फ कांच और सिलिकॉन के टुकड़े नहीं हैं, ये कतर की एनर्जी का नया चेहरा है. ये रीजन का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो तकरीबन 800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है. इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हम हर साल 26 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने से रोक रहे हैं. जब हम सूरज की गर्मी से परेशान होते हैं, वही सूरज हमारे घरों को रोशन करने की ताकत बनते जा रहा है. ये है टेक्नोलॉजी और कुदरत का सही बैलेंस या सही मेल. और जनाब, वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब पूरी दुनिया हमारे स्टेडियम्स में बैठी थी. यस, ये तो एक हिस्ट्री की तारीख में एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख हो चुकी है. फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसने सिर्फ फुटबॉल के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि रीसाइक्लिंग का एक ऐसा नया, वो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि दुनिया देखती रह गई. कतर ने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था कि एक कार्बन न्यूट्रल इवेंट का एक बड़े पैमाने में इसे होस्ट किया जाएगा, बस वो हमने कर दिखाया. स्टेडियम से निकलने वाला कचरा लैंडफिल में नहीं गया, बल्कि उसे रीसाइकिल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या एनर्जी में बदला गया. हर स्टेडियम की अपनी एक कहानी थी, जैसे स्टेडियम 974, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो नए मकसद के लिए रीसाइकिल हो रहा है. ये हमारा कमिटमेंट था पूरी इंसानियत के लिए. लेकिन सफर यही नहीं खत्म हुआ. अगर आप आज कतर की सड़कों पर निकलें, तो आपको एक बदलाव भी दिखेगा. हमारा ग्रीन बेल्ट हर दिन फैल रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की प्लांट मिलियन ट्रीज इनिशिएटिव के तहत रेगिस्तान की रेत अब हरियाली में बदल रही है. ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये पेड़ हमारी मिट्टी में जान फूंक रहे हैं, हवा को ठंडा कर रहे हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को बना दे रहे हैं. इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपनी एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी 2021-2026 लॉन्च की है. टारगेट बड़ा है, 2030 तक ग्रीन हाउस गैस

0: प्लेयर्स नहीं है, हम प्लेयर्स भी हैं। जब आप सुबह अपनी कार के बजाय दोहा मेट्रो पर सफर करते हैं या दोहा मेट्रो को चुनते हैं, या जब आप मुशर्रफ के किसी कैफे में वो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ मिलता है ना उसको ना कह देते हैं, या जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पानी की एक बूंद कितनी इम्पोर्टेंट है, उसे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो आप बन जाते हैं वो ग्रीन वायर जो हमारे नेशनल विजन 2030 को हमारी हकीकत से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। अक्सर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी मशीन्स, फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स या ग्लास से बनी बिल्डिंगें, ये इन सब की ना तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। हम सोचते हैं कि शायद कोई जादुई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारी धरती को बिल्कुल बचा लेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट में छुपा है। इस सीजन का हमारा आखिरी और सबसे खास प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट जाता है एक ऐसी संस्था को जो कतर की मिट्टी से उपजी है, अर्थना। यस, कतर फाउंडेशन ने जब अर्थना को लॉन्च किया तो मकसद सिर्फ एक नया ऑफिस बनाना नहीं था, मकसद था एक ब्रिज बनाना, एक ऐसा पुल जो ग्लोबल साइंस और हमारी लोकल लेगेसी को आपस में जोड़ सके। अर्थना हमारा वो मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बातें नहीं है, ये हमारी रूह को हमारी जमीन से दोबारा जोड़ने का काम करता है। अर्थना की जो बात मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो है उनका नजरिया। वो कहते हैं, लेट्स लुक बैक टू मूव फॉरवर्ड। सोचिए, सदियों पहले जब ना बिजली थी, ना एसी था और ना ही मॉडर्न इंजीनियरिंग थी, तब हमारे जो पुरखे थे या एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस तपते रेगिस्तान में कैसे गुजारा किया होगा, वो विजडम क्या थी। हमारे बेदुइन एंसेस्टर्स कुदरत के साथी थे, वो जानते थे कि कब हवा का रुख बदलेगा, कब बारिश होगी और कैसे पानी की एक एक बूंद को, यानी इस अमानत को हम समझ सकते हैं और इसे बचा सकते हैं। अर्थना इसी पुरानी समझ को आज की मॉडर्न साइंस के साथ मिला रहा है। वो स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पुराने आर्किटेक्चर को कैसे बर्जील यानी विंड टार्स गर्मी में ठंडक दे सकते हैं। वो देख रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स कैसे कम पानी में भी जिंदा रहते हैं। अर्थना हमें बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारे खून में है। हमने हमेशा से रेगिस्तान के साथ दोस्ती की है, उसका मुकाबला नहीं किया। अब बात करते हैं एक ऐसे लव्स की जो अर्थना की फिलॉसफी की जान है, और वो है बैलेंस। तो जनाब, कुदरत ने इस दुनिया को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर बनाया है। जितना हम लेते हैं उतना ही हमें लौटाना भी पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में अगर हम देखें तो इंसान ने इस बैलेंस को ना बिगाड़ दिया है। हमने धरती से बस लिया ही है, लौटाया कुछ भी नहीं। अर्थना हमें वापस देना, ये बैलेंस सही तरीके से करना सिखाता है। वो हमें सिखाते हैं कि तरक्की या प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि कुदरत को पीछे छोड़ दें। असली तरक्की वो है जहाँ स्काई स्क्रेपर्स और मैनग्रोव्स के एक साथ सांस लेने में हम मदद कर सकें। अर्थना के प्रोग्राम्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कंजम्पशन को कम करें और अपने रिसोर्सेज का बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है ना तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाती है। अर्थना सिर्फ रिसर्च पेपर्स और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस तक लिमिटेड नहीं है, इनका असली रंग दिखता है अर्थना प्राइज में। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि अर्थना हमारे शहर के उन अनसंग हीरोज को पहचान रहा है जो खामोशी से बदलाव ला रहे हैं। वो स्कूल के टीचर्स जो बच्चों को स्कूल के गार्डन में कंपोस्टिंग सिखाते हैं, वो छोटा SME या स्टार्टअप जो दोहा की धूप से बिजली बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है, या वो स्टूडेंट जो प्लास्टिक वेस्ट से आर्ट बना रहे हैं। अर्थना प्राइज ये साबित करता है कि सस्टेनेबिलिटी किसी एक मिनिस्ट्री का नाम नहीं है, ये हमारी शेयर्ड लेगेसी है। मैंने देखा है कि कैसे मुशर्रफ में या एजुकेशन सिटी में छोटे बच्चे अर्थना के वर्कशॉप्स में मिट्टी से जुड़ते हैं। जब एक बच्चा अपने हाथ से एक पौधा लगाता है और उसे बड़ा होते हुए देखता है, तो वो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहा, वो अपने अंदर हिफाजत

0: आवाज जगा रहा है, अर्थनाइज कम्युनिटी स्पिरिट को जिंदा कर रहा है।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। अब आते हैं हमारे नेशनल विजन 2030 पर। यस, विजन 2030 के चार पिलर्स हैं, उनमें सबसे अहम है ह्यूमन पिलर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता 2030 में कतर कैसा दिखेगा। मेरा जवाब होता है 2030 सिर्फ टेक्नोलॉजी का साल नहीं है, वो हमारी अमाना का इम्तिहान है। यस, अमाना यानी ट्रस्ट। हमें ये ज़मीन, ये समुंदर, ये रेगिस्तान हमारे बुजुर्गों से तोहफे में नहीं मिले, बल्कि हमारे बच्चों से उधार मिला है। इट इज़ अ ट्रस्ट वी मस्ट सेफ गार्ड। अर्थना हमें बताता है कि 2030 का ह्यूमन पिलर वो इंसान है जो कॉन्शियस है, वो जो जानता है कि उसके हर एक्शन का असर इस मिट्टी पर पड़ता है। अर्थना इज बिल्डिंग अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटल गार्जियंस। हम सिर्फ एक शहर नहीं बना रहे जो 2030 में चमकेगा, हम एक ऐसी लेगेसी तैयार कर रहे हैं जो सदियों तक चलेंगी। अर्थना का हर प्रोजेक्ट, हर वर्कशॉप और हर रिसर्च इसी ह्यूमन पिलर को मजबूत करने के लिए है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां ये सीजन खत्म हो रहा है। अक्सर शो के आखिर में मैं आपको एक ग्रीन टिप देती हूँ, कभी पानी बचाने की, कभी प्लास्टिक कम करने की, लेकिन आज क्योंकि ये हमारा फिनाले है, आज हमारा आखिरी शो है इस सीजन का, मैं सिर्फ एक एडवाइस आपको देना चाहूँगी। आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारा ग्रीन बीट मैनिफेस्टो, हाँ वो क्या है? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि एक ऐसा ऐलान, एक ऐसा वादा जो हम अपने आप से करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल और दिमाग में महफूज कर लें, ताकि जब तक हम अगले सीजन में ना मिलें, आप कतर ग्रीन बीट के इस बीट को जिंदा रखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बस जिंदगी जीने का एक नया और बेहतर तरीका है। हमारा पहला उसूल क्या है? पहला उसूल है द वन लेस रूल। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये क्या है, तो हमारे कतर में लाखों लोग हैं, अगर मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। यही वो सोच है जिसे हमें बदलना है। सोचिए, अगर कतर का हर रेजिडेंट सिर्फ एक चीज कम करने का फैसला कर ले तो उसका असर कितना बड़ा होगा। अगले एक महीने के लिए अपने आप से एक वादा कीजिए, सिर्फ एक चीज कम। शायद वो एक प्लास्टिक बैग हो सकता है जो आप सुपरमार्केट में मना कर देंगे, शायद वो एक मिनट हो जो आप अपने शहर में कम बिताएंगे, शायद वो एक अननेसेसरी कार ट्रिप हो जिसके बजाय आप वॉक करेंगे या मेट्रो लेंगे। एक मिनट पानी बचाने का मतलब है तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी। अगर 30 लाख लोग एक मिनट बचाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा समंदर हम बचा रहे हैं। याद रखिए, समुंदर में उठने वाली हर बड़ी लहर एक छोटी सी हलचल से शुरू होती है। स्मॉल रिपल्स क्रिएट बिग वेव्स। ये वन लेस रूल आपकी लाइफ को आसान बनाएगा और हमारी मिट्टी को सुकून देगा, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कि बिकम अ सिटीजन साइंटिस्ट। आपको साइंटिस्ट बनने के लिए किसी बड़ी लैब या वाइट कोट की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक टूल बन सकता है। कैसे? हम कतर में रहते हैं, ठीक है, जहां लोग सोचते हैं कि सिर्फ रेत है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी बायोडायवर्सिटी लाजवाब है। एक आई नेचुरलिस्ट या इसके जैसे कई सारे एप्स हैं जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो जब आप वीकेंड पर जकरीद जाते हैं या फुवारित के बीच पर होते हैं या अपने गार्डन में बैठे होते हैं, तो ज़रा रुकिए, वहाँ कोई अनजान सा परिंदा दिखे या रेगिस्तान का कोई छोटा सा फूल, उसकी एक फ़ोटो लीजिए और ऐप पर अपलोड कीजिए। आपको शायद लगेगा कि ये सिर्फ एक फ़ोटो है, लेकिन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। आपकी एक फ़ोटो से उन्हें पता चलता है कि हमारी वाइल्ड लाइफ कहाँ पनप रही है, कौन से पौधे खत्म हो रहे हैं और किन्हें हमें हिफाजत देनी है। समझ रहे हैं आप कतर के डिजिटल गार्जियन बन सकते हैं, हमारी मिट्टी की कहानी लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं, साइंस को लैब से निकाल कर अपने फ़ोन में जगह दे सकते हैं। हमारा तीसरा और सबसे अहम उसूल, कीप द कॉन्वर्सेशन अलाइव। सस्टेनेबिलिटी खामोशी में दम तोड़ देती है, आप समझते हैं? अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना, तो

0: तो ये सिर्फ एक किताबी लफ्ज बनकर रह जाएगी। इसे अपनी मजलिस का हिस्सा बनाइए, अपने दस्तखान पर इसका जिक्र कीजिए। सबसे जरूरी है हमारे बच्चे, उन्हें बताइए कि ये रेगिस्तान सिर्फ धूल और रेत नहीं है, ये एक नायाब खजाना है। उन्हें सिखाइए कि अट्रैक्शन सिर्फ मॉल की लाइट्स में नहीं बल्कि एक खिलते हुए सिद्रा के पेड़ में भी है। जब हम बात करते हैं तो हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, और जब अवेयरनेस पैदा होती है तो हिफाजत प्रोटेक्शन अपने आप शुरू हो जाती है। तो जनाब, हमने आज क्या बचाया? अपने पड़ोसी को बताएं कि रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है। जब हम एक साथ बोलेंगे ना तो हमारी आवाज 2030 के विजन को हकीकत में बदल देगी। तो बिल्कुल ना झिझके, अपनी जमीन पर अपना हक जमाएं और सही बात सब तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज का हमारा ग्रैंड फिनाले, आज हमारा कतर ग्रीन बीट ये आखिरी एपिसोड था जिससे अब मैं रुखसती लेना चाहूंगी। अब दुआ करते हैं कि अगले एपिसोड में आपकी मेरी फिर मुलाकात हो नए नवेले टॉपिक्स के साथ। आपको हमारा कतर ग्रीन बीट कैसा लगा आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने मैसेजेस के साथ, और हमारे FM 107 की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। और अभी इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और अपने कतर को हरा भरा बनाने में, सस्टेनेबल बनाने में जो भी आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके वो जरूर दीजिएगा। Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट,
2: नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन,
3: एनीटाइम एनीवेयर,
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीश्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें, क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FM 107 पे इस्तकबाल है आपका और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम आपसे बात करते हैं हर हफ्ते। और इस हफ्ते है बात एजुकेशन स्कैम के बारे में, एजुकेशन फ्रॉड के बारे में। आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं ये फ्रॉड, और इसकी वजह है बच्चे पढ़ाई के लिए फोन, टैबलेट्स और इंटरनेट का यूज करते हैं। स्कैमर्स फेक एजुकेशनल वेबसाइट्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज, स्कॉलरशिप ऑफर्स और लर्निंग एप्स बनाकर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, गारंटीड एग्जाम सक्सेस, फ्री स्टडी मटेरियल्स या ऐसी स्कॉलरशिप्स का एड दिखाते हैं जो सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। इन ऑफर्स को लेने के लिए बच्चों से रजिस्टर करने को कहा जाता है और उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड। इतनी ही जानकारी काफी है फ्रॉड करने के लिए। कुछ फेक वेबसाइट स्टडी मटेरियल या एग्जाम प्रेप के लिए पहले पेमेंट भी मांगती है। बहुत बार ये वेबसाइट्स कोई एजुकेशनल सर्विस नहीं देती, इसके बदले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती हैं, पैसे ठग लेती हैं। ये डिवाइस में हार्मफुल सॉफ्टवेयर डाल देती हैं। स्कैमर्स फेक ईमेल्स या मैसेजेस भी भेजते हैं, जो देखने में लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। इन मैसेजेस में स्टूडेंट्स को एक लिंक पर क्लिक करके अपना स्कूल अकाउंट अपडेट करने या आइडेंटिटी वेरीफाई करने को कहा जाता है। जैसे ही लिंक खुलता है, स्कैमर्स को पर्सनल इन्फो या ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। ऐसे स्कैम से आइडेंटिटी थेफ्ट, पैसे का नुकसान और बच्चे, फैमिली दोनों को स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है। कैसे बचें इन स्कैम से या फ्रॉड से? बच्चे सिर्फ वही वेबसाइट और एप्स यूज करें जो स्कूल, टीचर्स या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंड की हो। दूसरा तरीका है कोई भी ऐप डाउनलोड करने या क्लास के लिए पे करने से पहले पेरेंट से वेरीफाई करवाएं। तीसरा, अननोन वेबसाइट पर कभी भी पासवर्ड, पर्सनल इन्फो या फिर पेमेंट डिटेल्स शेयर ना करें। वेबसाइट का एड्रेस यानी कि यूआरएल ध्यान से चेक करें कि वो ऑफिशियल स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की है या नहीं। अगर कोई ईमेल या मैसेज सस्पिशियस लगे तो लिंक पर क्लिक ना करें और बड़ों को रिपोर्ट करें। इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल नए जमाने के नए फ्रॉड कुछ इतने यूनिक और ट्रिकी होते हैं कि उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्रॉड अवेयरनेस के एपिसोड में, जहां पर नए जमाने के और नए फ्रॉड के बारे में हम बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर स्पोर्ट्स की. क्या खेलों की दुनिया बदलने वाली है? देखिए, आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जहां बच्चे शायद इस टॉपिक पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, और ये टॉपिक है फ्यूचर स्पोर्ट्स का. क्या आपने कभी सोचा है कि 20 से 30 साल बाद स्पोर्ट्स कैसा होगा? क्या फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस वैसे ही रहेंगे जैसे आज है? या आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेलों की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी? चलिए मिलकर इस मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं. देखिए, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी का रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है. आज से कुछ साल पहले तक रेफरीज और एम्पायर्स के फैसले फाइनल समझे जाते थे, लेकिन आज हम VAR, गोल लाइन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कैमरास का इस्तेमाल देख रहे हैं. फ्यूचर में AI और एडवांस सेंसर्स मैचेस के हर सेकंड को एनालाइज कर सकेंगे. प्लेयर्स की स्पीड हो, फिटनेस हो, हार्ट रेट हो, परफॉर्मेंस हो, रियल टाइम मॉनिटर किए जा सकेंगे. यानी स्पोर्ट्स सिर्फ टैलेंट का नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी का भी गेम बन जाएगा. अब आपको क्या लगता है, जो एथलीट्स हैं वो कैसे होंगे? स्मार्ट होंगे? मैं कहूँगी आने वाले टाइम में स्मार्टर होंगे. फ्यूचर के एथलीट्स बहुत ज्यादा फिट और प्रिपेयर्ड होंगे. वेयरेबल डिवाइसेस उन्हें बताएंगे कि कब ट्रेनिंग करनी है, कितना रेस्ट करना है और किस चीज से इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है. इमेजिन कीजिए, एक फुटबॉल प्लेयर को मैच से पहले AI सिस्टम बता रहा हो, आज आपका राइट लेग जो है वो ज्यादा स्ट्रेस में है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम रखिए. इस तरह इंजरीज कम और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है ना? क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या रोबोट्स स्पोर्ट्स खेलेंगे? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं. कहने को तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. आज भी रोबोट फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स और ड्रोन रेसिंग इवेंट्स मौजूद हैं, होते हैं. फ्यूचर में भी हो सकते हैं कि रोबोट लीग्स भी पॉपुलर एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाए. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानी इमोशंस, पैशन और क्रिएटिविटी की वजह से ह्यूमन स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस हमेशा से रहेगी. लोग सिर्फ हार या जीत देखना नहीं चाहते, वो प्लेयर्स की कहानियाँ, उनकी स्ट्रगल्स भी देखना चाहते हैं. वैसे ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी काफी ब्राइट होगा. एक जमाना था जब वीडियो गेम्स सिर्फ हॉबी समझी जाती थी, आज ई स्पोर्ट्स दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है. प्रोफेशनल गेमर्स स्टेडियम्स भर देते हैं और मिलियन लोग ऑनलाइन टूर्नामेंट्स देखते हैं. फ्यूचर में भी हो सकता है कि ई स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बराबर पॉपुलैरिटी हासिल कर ले. स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज भी कॉम्पिटिटिव गेम्स को करियर ऑप्शंस के तौर पर देख सकती हैं. लेकिन स्पोर्ट्स हर किसी के लिए होगा, ये भी एक अपने आप में दिलचस्प सवाल है. देखिए, टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को ज्यादा इंक्लूसिव बना रही है. वर्चुअल रियलिटी की मदद से लोग घर बैठे ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं. डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए एडवांस प्रोस्थेटिक और इक्विपमेंट्स नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं. यानी फ्यूचर स्पोर्ट्स का मकसद सिर्फ कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा, इसका मकसद होगा पार्टिसिपेशन. अब एक और टर्म आपने सुन रखी है और वो है सस्टेनेबल स्पोर्ट्स. हाँ जी, फ्यूचर में एनवायरमेंट भी स्पोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा. स्टेडियम सोलर एनर्जी से चल सकेंगे, इको फ्रेंडली मटेरियल से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं. इंटरनेशनल इवेंट्स का मकसद होगा कि इस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे. यानी फ्यूचर का चैंपियन सिर्फ फास्ट नहीं, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है. वहीं एक और स्पोर्ट होगा जिसे लोग बहुत पसंद करेंगे, वो है स्पेस स्पोर्ट्स. अब थोड़ी इमेजिनेशन की बात हम करें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये स्पेस स्पोर्ट्स क्या होगा. अगर इंसान मून या मार्स पर कॉलोनीज बनाता है तो वहां पर स्पोर्ट्स कैसे होंगे? कम ग्रेविटी में बास्केटबॉल कितना डिफरेंट होगा? हाई जंप कितनी हाई हो सकती है? यानी ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन कुछ डेकेड्स पहले वीडियो कॉल्स भी फैंटेसी ही लगती थी. अब एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खत्म हो जाएंगे? शायद हाँ या शायद नहीं, कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन हाँ, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या स्विमिंग और भी दूसरे गेम्स, उस तरह की पॉपुलैरिटी को कायम कर पाए ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, बट मुझे लगता है इनमें चेंजेस जरूर आएंगे। फिर भी जैसे मैंने कहा कि 100% ह्यूमन स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी। टेक्नोलॉजी उन्हें मॉडर्न बना सकती है लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन्स आने के बाद भी आज भी लोग बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरह नए स्पोर्ट्स आने के बावजूद भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। वैसे टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को बदल रही है और बदलेगी भी, लेकिन इंसानी जज्बा, मेहनत और कॉम्पिटिशन की रूह को कभी भी रिप्लेस करना मुश्किल ही होगा। फ्यूचर के स्पोर्ट्स स्मार्ट जरूर होंगे लेकिन उनका दिल हमेशा इंसानी पैशन ही रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों पे जा सकती है। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2020.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वेलकम वेलकम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन, वेलकम टू द वर्ल्ड जो बदलता ही रहता है हर सेकंड, वेलकम टू टेक इनोवेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं दूहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड टेक इनोवेशन में आज भी बहुत कुछ बर-बर की ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके काम आएंगी, कोई भी ऐसी बात नहीं जो घुमा फिरा के करनी पड़े, पॉइंट ब्लैंक एक एक चीज आपके काम की। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर आपको चीज ना समझ में आए, आपको लगे कि दोबारा सुननी है या जानना है, तो आप बाकी शोज में मुझसे पूछ सकते हैं जब मैं लाइव रहूंगा आपके साथ। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों से टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के बारे में भी। आई लव इट, आई लव गैजेट्स, आई लव टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं बहुत ही चाव से आपके लिए सब लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्स की, फिर गैजेट्स की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तो मेनली जो चीज मेन है, सोशल मीडिया हैंडल्स, वहां पे जरूर जरूर जुड़े रहें, परिवार हमारा बढ़ता रहना चाहिए सोशल मीडिया का। सो FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। सो प्लीज गेट इन टच विद अस, ठीक है? शुरू करते हैं सबसे पहले AI टूल्स एप्स दिस वीक से। तो सबसे पहले ऑन द लिस्ट, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रैंडमली आपको बता रहा हूं, तो नंबर वन पे मैं सबसे पहले बात करूंगा sushi.ai की, SWISHY sushi.ai। ये जो AI है, एक कमाल की वेबसाइट है इसकी, जब आप गूगल पर डालेंगे तो वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। ये हर किसी सोशल मीडिया पे काम करने वाले बंदे के लिए है।

0: ऐसी स्टाइलिंग चाहिए एंड इट विल गिव यू. मोस्टली फीचर्स इसके फ्री हैं, जो जो प्रो वर्जन है इसका वो कुछ चीजों के लिए है, तो आपका काम हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. तो स्विशी, ये जब आप नाम टाइप करेंगे गूगल पे, सबसे पहली वेबसाइट आएगी, वहां जरूर जाइएगा. सो SWISHY. जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, जो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे काम करते हैं या बनाना चाहते हैं कुछ, ये आपके लिए बहुत मददगार, बहुत मददगार है ये. ट्राई दिस वन, आपको सच में अच्छे लगेगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला है भाई मेरा फेवरेट, इसका नाम है Pixabay. PIXABAY. दोबारा बोल देता हूं, PIXABAY. अभी क्या करता है ये वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, Pixabay, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, पहले ही वो है वेबसाइट होगी. तो अमूमन जब आप ढूंढने निकलते हैं साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, आपको कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, बहुत मसले आते हैं. फिर आप उन साइट्स पे जाते हैं जो आपको पेड वर्जन लेने पे मजबूर कर देते हैं, बिकॉज दे विल नॉट गिव यू फ्री वर्जन ऑफ इट. उन सब का तोड़ यही है, आप Pixabay जाइए, आपको साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, आपको बैकग्राउंड स्कोर मिलेगा, आपको म्यूजिक मिलेगा फॉर योर वीडियोस, आपको अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस मिल जाएंगे. और ये ट्रेंडी ट्रांजिशंस हैं इस वेबसाइट्स पे, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेंडिंग चल रही हैं, जो आपने कहीं साउंड सुना है बहुत ज्यादा फेमस है एंड यू वॉन्ट टू यूज इट समवेयर इन द वीडियो, और आप ढूंढ रहे हो उसको, यूट्यूब पे लगे हुए ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, वो आपको यहां मिलेगा. ये फ्री है और इसका एक एक चीज आपके काम आ सकती है. तो अगर आप काम करते हैं वीडियोस पे, आप काम करते हैं ऑडियो के चीजें बनाते हैं, और या आपको जनरली प्रोफाइल के लिए कुछ चाहिए अपने बनाना है, तो ये डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इट इज ऑल फ्री एंड यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड आपका काम हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है. Pixabay, PIXABAY, BGM, मतलब बैकग्राउंड स्कोर, साउंड इफेक्ट्स और कॉपीराइट फ्री ग्राफिक्स, मतलब कोई कॉपीराइट शॉपीराइट कुछ नहीं है, आपको आराम से कंटेंट के लिए अपने यहां से सारा का सारा सामान मिलेगा. समझ रहे हैं आप, आपके मजा आ जाएंगे. तो ये आपके काम का है, और फैला दीजिए, किसी को अगर बताना चाहे तो बताइए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बढ़ते हैं आगे, और ये ऐप नहीं वेबसाइट है, तो ये क्लियर कर दूं मैं, ये वाली जो वेबसाइट है ये फिर से आपके सोशल मीडिया कंटेंट के लिए है. इसका नाम है transitionalhooks.com, TRANSITIONAL, transitionalhooks.com. ट्रांजिशनल हुक्स ये जो वेबसाइट है, ये आपको सारे ट्रेंडी ट्रांजिशन देगी, आपको उन्हें अलग से एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये काम आएगा आपके वीडियोस में. समटाइम्स आपको ट्रांजिशन देखते हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो में, एंड यू आर लाइक यार ये कैसे किया इसने, यार ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे, और फिर आप अपने तिगड़म लड़ाते हैं, आप फिर AI के पास जाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं. मगर यहाँ पे आपको हाथों हाथ एक टेम्पलेट मिल जाएगा, और उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं. लिटरली स्काई इज द लिमिट. आप इसमें देखेंगे तो वही ट्रांजिशन है जो आपको अक्सर रील्स में मिलते हैं, आपको टिकटॉक पे नजर आते हैं, या आपने देखा होगा कि बड़े फैंसी तरीके से ट्रांजिशन होता है एक चीज से दूसरी चीज की तरफ यूट्यूब पर, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स इसे यूज करते हैं, तो ये आपके काम भी आ सकता है. सो ये मैंने जो आज आपको तीनों चीजें बताई हैं, ये तीनों चीजें आपके करियर को एज एन इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे बूस्ट करेंगी, डेफिनेटली हेल्पफुल, एंड आप करते करते सीखते चले जाएंगे. समझ रहे हैं, इन वेबसाइट्स के साथ क्या है कि करते करते चीजें समझ में आती हैं, और जब आ जाती हैं तो एक एक फन वे में आप बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, और यू नेवर नो कि आपका करियर किक ऑफ हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट पे वही चीज चलती है जो थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, फिनिश्ड नजर आती है, फिनेस होती है उसमें, लगता है कि हाँ यार इस पे काम किया गया है. तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम स्मूथ और एकदम ऐसा लगे कि हाँ एक्सपर्टीज आपकी नजर आए, तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो, और ये वाली तो बहुत जरूरी है, transitionalhooks.com, transitionalhooks.com. ठीक है, ट्राई दिस वन आउट. अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स की तरफ, इन गैजेट्स दिस वीक.
1: cool gadgets.
0: तो गैजेट नंबर वन, मैंने सोचा था इस बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बजट में आपको मिल सकता है और बहुत शानदार मिल सकता है. तो बजट फ्रेंडली एक हेडफोन है, बेसिकली एयरबर्ड्स हैं जो आपके बहुत काम के हैं. ये है बाय नथिंग, CMF बर्ड्स 4A. तो CMF जो बर्ड्स हैं ये इतने सही हैं कि आपको लगेगा यार ये महंगे होने चाहिए थे. समटाइम्स यू फील अरे ये इतने सस्ते कैसे हैं यार.

बढ़िया काम करते हैं. NCMF के जो बर्ड्स हैं मैंने यूज भी करके देख लिए और मैं पक्के इनसे कह सकता हूँ कि आपको अगर एक बजट में बहुत बढ़िया साउंड चाहिए तो ये आपके काम का है. सो CMF नथिंग के जो एयरबड्स हैं वो आप चेक कीजिए, आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्जन से, मगर जो 4A है और जो उसके प्रो वर्जन से वो बहुत अच्छे हैं, काफी बजट फ्रेंडली हैं. ऐसा नहीं है कि सीधा लाओ जी 1200 रियाल निकालो 800 रियाल निकालो, ऐसा नहीं है. और अगर आप का कोई दोस्त है जो इंडिया से आपको ला के दे सकता है, क्योंकि इंडिया में अमेजोन से डिलीवरी होगी या फिर लोकल स्टोर से मिलेगा, तो और भी सस्ता मिलेगा. कितना सस्ता बताऊं आपको, दिल में याद रखो, महज 120 रियाल में, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम नहीं तो 150, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा. तो ये बहुत बहुत इफेक्टिव एयरबड्स हैं, बजट फ्रेंडली भी हैं, दिखते महंगे, ऊपर से कलर्स अलग आ जाते हैं इसमें. तो ये आप देखिएगा एंड ऑर्डर कर सकते हैं. अब कतर में लोकली कहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, वरना आपको दिखे तो आप बता दीजिएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर बजट फ्रेंडली गैजेट. अब जो गैजेट के बारे में बात कर रहा हूँ ये भी बड़ा कमाल का है. अमूमन जब हम स्मार्ट वॉच की तरफ जाते हैं तो बहुत वाइड रेंज है, बड़ी बड़ी कंपनी इसमें कूदी हुई हैं, राइट फ्रॉम सैमसंग टू एप्पल टू हुआवे एंड डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, जो फिटबिट ये सब कुछ एक साथ इनमें जंग हो रही है. और जो स्मार्ट वॉचेस का जो रेंज है वो भी बढ़ती चली जा रही है. आपने देखा होगा रिसेंटली टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी हो गई है, जो वॉचेज हैं वो भी 1500 को क्रॉस कर रही हैं. आई रिमेंबर व्हेन एप्पल लॉन्च्ड वन वॉच और मैंने खुद जाके वो देखी थी तो 2100 रियाल की थी. तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी में स्पेशली स्मार्ट वॉचेस की जो जो जो सेक्शन है वो 1000 के नीचे बात नहीं करता, करता भी है तो बहुत कम. बट देन ऐसे में एक बजट फ्रेंडली वॉच हो तो कितनी कमाल की है. और मैं बैटरी लाइफ को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सस्ती है तो भाई इसकी तो बैटरी खराब होगी, ना, बैटरी बाकियों से बहुत बढ़िया और घड़ी तो और भी बढ़िया और ऊपर से बजट फ्रेंडली. तो ये है CMF, अगेन नथिंग की है, वॉच प्रो टू CMF वॉच प्रो टू. अगर लोकली अगेन मुझे दिखती है तो मैं आपको बताऊंगा, आप कहीं लोकली कतर में मिले तो आंख बंद करके आपका मन कर रहा है स्मार्ट वॉच लेने का तो ये ले लेना, बजट फ्रेंडली है. एंड इस वॉच का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, इंडियन रुपीज में बात करूं तो 3999 था, 4000 को मिला के, तो अगेन इट इज अराउंड दैट रेंज. तो यहाँ पे हो सकता है कि 250 रियाल के आसपास हो, मगर 250 रियाल और 300 रियाल फॉर अ स्मार्ट वॉच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ये घड़ी आपकी कलाई पे सस्ती भी नहीं दिखती, सबसे अच्छी बात ये इट लुक्स फैंसी, इसका जो UI है वो भी बहुत बढ़िया है. एंड आई बीन यूजिंग वन ऑफ दोज वॉचेस, में उसका नाम भूलिए मगर वो CMF की वॉच ही है और मेरा पर्सनल यूज है, इसलिए आपको बता रहा हूँ बैटरी लाइफ इसकी बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है. और आपके जो बेसिक काम है, आपको स्लीप ट्रैकिंग करनी है, हार्ट बीट है, ये सब है, आप जिमिंग करते हैं, आप वॉक कर रहे हैं, यू नो स्टेप्स गिने, एवरीथिंग एनीथिंग, जो बेसिक चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिसाइसली आपको जरूर बताएगी वॉच. तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली वॉच देख रहे हैं दिस इज फॉर यू, और आपको लगे कि शेयर करना है, अगर लोकली कहीं मिलती है लेट मी नो एज वेल. CMF वॉच प्रो टू, गो फॉर इट, बड़े आगे चलो भाई. लास्ट गैजेट ऑन द लिस्ट, बहुत प्यारा, मुझे इस गैजेट से भाई हो गया प्यार, मोहब्बत हो गई सच्ची वाली. मैंने इतने सारे कीबोर्ड्स आपको आज तक बताए, कितने सारे कीबोर्ड बताए, कोई कीबोर्ड फोल्ड होकर जेब में आ जा रहा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, मगर यार इस कीबोर्ड से मेरे को हो गया प्यार भाई. ये कीबोर्ड है ओला, इसका नाम है AULA F75, ओला F75. ये एक कीबोर्ड है, RGB लाइट है, बोलिंग RGB लाइट तो कीबोर्ड में मिल ही जाती है, क्या बड़ी बात है, मगर ये ट्राई मोड गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसमें एक नॉब भी दी हुई है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी नॉब है राइट हैंड कॉर्नर में, और बड़ा अच्छा उसका फंक्शन है, ब्राइटनेस पे उसे लगा दो, वॉल्यूम के लिए यूज कर लो. एंड ये एनिमे स्टाइल में है, जो लोग गेमिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं शायद वो समझेंगे, एनिमे स्टाइल अगर आप एनिमे देखते तो भी समझेंगे, तो एक अलग सा लुक है इसका. ये कीबोर्ड इतना प्यारा लगा ना मुझे कि मैं अगर PC पे गेमिंग कर रहा होता तो मैं पहली फुर्सत में से लेके आता, मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके पीछे USB के सेक्शन दिया हुआ है, ऑन ऑफ है ब्लूटूथ का, एंड आई रियली लव द फैक्ट कि उन्होंने तो इस कीबोर्ड को फन बनाया है, मतलब अगर यार फन है कीबोर्ड गैजेट तो ऑलमोस्ट कीबोर्ड के मामले में तो सारे कीबोर्ड आपको सेम ही लगेंगे, बट उसमें भी फन डाल देना जस्ट शोज की मेहनत की गई है. तो ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर कोई कीबोर्ड के शौकीन है तो आप इसे देख सकते हैं. अगेन ये इंडिया में तो बहुत इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अमेजोन की डिलीवरी आपके यहाँ आती है तो आप

0: जानते हैं तो मंगा लीजिएगा भाई। मैं नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, ए यू एल ए ओला, ओला क्यों बोल रहा हूँ, ओला ओला ओला, आई प्रोबेबली थिंक यही इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, ए यू एल ए एफ 75, एफ लाइक इन फ्रूट 75, नंबर 75, ओके। तो ये थे गैजेट्स दिस वीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, खबरों में बहुत कुछ है भाई, आ जाओ इन टेक न्यूज। सबसे पहली खबर है, लोगों की नजर बनी हुई है आईफोन की तरफ, एप्पल लॉन्च करने वाला है सितंबर में, क्या होने वाला है ये आईफोन 18 क्या लेके आएगा। देखो रूमर्स जो आ रहे हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं उसके बारे में बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि नए नए कलर्स में लॉन्च होने वाला है। इस बार जो कलर यूज कर रहे हैं वो डार्क चेरी और बर्गंडी शेड है। डार्क चेरी में पता नहीं कैसा लगेगा, आई डोंट नो, ऑरेंज तक ठीक था भाई, पर डार्क चेरी और बर्गंडी शेड में इस बार आईफोन आ सकता है, जो प्रो कलर्स होंगे एप्पल के। एंड वो नए नए कलर्स को भी टेस्ट करें, तो जब तक लॉन्च होगा उनका फ्लैगशिप फोन तो पता नहीं कहां कहां चला जाएगा। और कॉस्मिक ऑरेंज भी है, कॉस्मिक ऑरेंज भी होगा इस बार अगेन। मगर जो मेन चीजें हैं वो है डायनेमिक आइलैंड आईफोन का, वो और छोटा कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि वो जो फेस आईडी है ना, वो इस बार डिस्प्ले के अंदर है। यू नो, जो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि जबकि Xiaomi ये सब फोन बहुत पहले कर चुके हैं, ये Samsung भी कर चुका है, तो उन्होंने फेस आईडी को इस बारी फेस आईडी कंपोनेंट्स को अंडर द डिस्प्ले कर दिया है। तो जो डायनेमिक आइलैंड है उसे और छोटा कर दिया है और एक यूनिफाइड लुक देने की कोशिश करी है अलग अलग रंगों के साथ। तो आई डोंट नो ये कितना सच है, ये 95% सच है भाई, 5% तो झोल हो गया तो मैं कह नहीं सकता, मगर ये मैं बहुत पुख्ता खबर लेके आया हूँ। तो जब आईफोन 18 आएगा तब देख लेंगे हम। कुछ लोग कह रहे थे इस बार तो फोल्ड आ जाएगा आईफोन का, भाई मुझे नहीं, मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आईफोन अभी फोल्ड की मार्केट में उतरेगा, आई डोंट थिंक सो। वो कुछ नया ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दे वो अलग बात है, बट आईफोन विल नॉट कम फॉर फोल्ड्स, आई डोंट थिंक सो।
1: एंड एंटरटेनमेंट,
0: एंड लास्ट खबर जो है वो है गेमिंग की दुनिया से, मॉर्टल शेल 2 रिलीज हुआ है। रिव्यू से पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, फिर गेम प्ले आया, फिर लगा अरे बाप रे ये तो चाहिए, और फिर रिलीज हो गया तो अब ऐसा हो गया ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मॉर्टल शेल 2 गेमर्स जाग जाओ, ये बहुत बढ़िया है, 30 आवर का गेम प्ले है, कमाल का है फॉर द फुल गेम, कॉम्बैट से लेकर हर एक चीज बहुत मजेदार है। एंड सोल गेम्स की दुनिया में आंधी लेके आया है ये गेम, बहुत ही ग्रिटी एनवायरमेंट्स हैं और वो ऐसा लगता है कि एल्डन रिंग को ग्राफिकली अपस्केल करके, पहले ही ग्राफिक्स उसके बहुत अच्छे हैं, उसे और अपस्केल करके उसे कॉम्बैट को और ज्यादा ग्रिटी बना के लॉन्च कर दिया है, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो ये था हमारा टेक इनोवेशन, एंड इसी के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, मिलेंगे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है रोजाना मुहासबे की अहमियत के बारे में। रोजाना मुहासबा करना इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है। जब हम अपने दिन का जायजा लेते हैं तो हमें अपनी गलतियों और अच्छाइयाँ दोनों का एहसास होता है। ये अमल हमें बेटर डिसीजन लेने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद देता है। अगर हम हर रोज थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोचें कि हमने क्या अच्छा किया और कहाँ बेहतरी की जरूरत है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। मुहासबे का मतलब है सिर्फ गलतियाँ देखना नहीं, बल्कि अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट भी करना। ये बैलेंस इंसान को मोटिवेटेड रखता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले 2 मिनट के लिए अपने दिन का जायजा लें और कल के लिए बेहतर इरादा करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ, हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी जो पहली बार हुई, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे साथ प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, हॉस्पिटल्स सिर्फ दवाओं का मरकज नहीं होते, ये लोगों, पेशेंट्स, उनकी फैमिलीज और हमारे हेल्थ केयर हीरोज का मरकज होते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम आपको ले चलते हैं एक दिल को छू लेने वाले सफर पर, कतर के सबसे पहले तारीखी और मोहतरम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से एक अल रुमैला हॉस्पिटल की तरफ। तो दोस्तों, 6 दहाइयों से ज्यादा के अरसे से यह हॉस्पिटल कतर के हेल्थ केयर सिस्टम में रहमत, रहमदिली और तरक्की का एक सतून बना हुआ है। अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के अंडर एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर बनने तक, अल रुमैला हॉस्पिटल अल्लाह के हुक्म से आज भी हर दिन जिंदगियों को बेहतर बना रहा है। हम इस हॉस्पिटल की शानदार तारीख का जायजा लेंगे, उन लोगों को जानेंगे जो इसकी कामयाबी के पीछे हैं और उन अफराद की पर्सनल कहानी

कहानियां सुनेंगे जिनकी जिंदगियों को इस हॉस्पिटल की देखभाल ने छू लिया है। तो दोस्तों, हमारी कहानी का आगाज होता है 1950 की शुरुआती दिनों से। कतर जब मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर चल पड़ा था और एक मुनज्जम हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत बढ़ती जा रही थी। 1957 में रोमेला हॉस्पिटल ने अपने दरवाजे खोले, कतर के पहले बड़े हॉस्पिटल्स में से एक जो जनरल और मैटरनिटी केयर फराहम करता था। रोमेला हॉस्पिटल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तरक्की का निशान था। इसने उन लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचाया जो पहले सिर्फ रिवायती इलाज पर या बाहर सफर करने पर इन्हिसार करते थे। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वक्त के साथ ये हॉस्पिटल नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना, जिनमें से बहुत से पहले कतरी मेडिकल प्रोफेशनल्स थे। 1970s में रोमेला ने अपना दायरा बढ़ाया और सर्जिकल रिहैबिलिटेशन और पीडियाट्रिक वार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए और कतर के जदीद हेल्थ केयर सिस्टम की बुनियाद रखी गई। 1980s और 1990s की दहाइयों में कतर का हेल्थ केयर एक बड़ी तब्दीली से गुजरा। रोमेला हॉस्पिटल को नई कायम शुदा मेडिकल यानी हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC का हिस्सा बनाया गया और इसका फोकस स्पेशलाइज्ड केयर और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ। HMC के कायम के बाद रोमेला को रिहैबिलिटेशन और गैरियाट्रिक मेडिसिन के लिए एक की फैसिलिटी बनाया गया। समय यहाँ उन पेशेंट्स पर तवज्जो दी गई जो लंबी रिकवरी, एडवांस्ड फिजियोथेरेपी और मल्टीडिसिप्लिनरी केयर की जरूरत रखते थे। आज रोमेला हॉस्पिटल को रिहैबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म केयर और पीडियाट्रिक थेरेपी में महारत हासिल है। इसका स्टेट ऑफ द आर्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर उन पेशेंट्स को सपोर्ट करता है जो स्ट्रोक, इंजरीज और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज से रिकवर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। समीन, अगर हम इस सफर को समराइज करें तो ये जानिए कि रोमेला हॉस्पिटल को हुकूमत ने 1957 में इसे इनॉग्रेट किया, जो कतर के जदीद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद बना। हमद जनरल हॉस्पिटल 1982 में, इसका कयाम कतर की हेल्थ केयर जर्नी में एक अहम मोहर था। ये पहला हॉस्पिटल था जो मुकम्मल मेडिकल सर्विसेज फराहम करता था। वहीं एक्सपेंशन ऑफ हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की बात करें तो वक्त के साथ साथ HMC एक नेटवर्क बन गया जिसमें 12 हॉस्पिटल्स शामिल हैं, जैसे कि सिदरा मेडिसिन और हार्ट हॉस्पिटल भी। ये कतर के बढ़ते हुए हेल्थ केयर नीड्स को पूरा करने का सबूत है। वहीं दोस्तों, अगर अर्ली गवर्नेंस एंड विजन की बात करें तो जब हेल्थ केयर लैंडस्केप इवॉल्व होने लगा, कतरी हुकूमत ने सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट की जरूरत को समझा और फिर 1971 में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी MOPH कायम हुई, जिसका काम नेशनल हेल्थ पॉलिसीज का तय करना, सर्विसेज को रेगुलेट करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना था। ये एक स्ट्रेटेजिक कदम था यूनिफाइड हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए, जो मॉडर्नाइजेशन और पब्लिक वेलफेयर के ब्रॉडर विजन से हम आहंग था। दोस्तों, करंट स्ट्रक्चर ऑफ कतर हेल्थ केयर सिस्टम पर नजर डालें तो आज कतर का हेल्थ केयर सिस्टम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिक्स है, जिसमें हुकूमत का किरदार सेंट्रल है, सिटीजन्स और एक्सपेट्रिएट्स दोनों के लिए सर्विसेज फराहम और रेगुलेट करना। पब्लिक हेल्थ केयर ये सिस्टम का मेन प्लेयर है। कतरी सिटीजन्स को फ्री या लो कॉस्ट केयर मिलती है और एक्सपेक्ट्स को सब्सिडाइज्ड सर्विसेज, बेसिक चेकअप से लेकर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज तक सब कुछ कवर होता है। फंडिंग गवर्नमेंट बजट्स और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के जरिए होती हैं, जो मुल्क में 80% से ज्यादा केयर कवर करता है। सिस्टम में मुसलसल बेहतरी हो रही है, नई फैसिलिटीज खोलने, सर्विस एक्सपेंड करने और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने के जरिए। तो दोस्तों, कतर का हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स तक महदूद नहीं, ये एक वाज़े विजन और लॉन्ग टर्म गोल से गाइडेड है। यहीं से शुरू होता है कतर नेशनल विजन 2030। इसे समझिए एक रोड मैप के तौर पर, जो कतर को एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी बनाने का एम रखता है, जो अपनी डेवलपमेंट का खुद ख्याल रख सके और हर शख्स के लिए बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ फराहम कर सके। इस विजन को हकीकत में तब्दील करने के लिए कतर ने नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया है। आज हम थर्ड कतर नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2024-2030 यानी NDS-3 के दौर में हैं। ये स्ट्रेटजी पहले की प्रोग्रेस पर बुनियाद रखती है, मगर इस बार फोकस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ बड़ी तब्दीलियों का इरादा रखती है। NDS-3 के गोल्स की तरफ नजर डालें तो सबसे पहले आता है प्रिवेंटिंग डिजीजेस। कतर अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज को प्रिवेंट करने पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। बेहतर इंटीग्रेशन, हेल्थ और सोशल केयर सर्विस को कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है, खासकर मेंटल हेल्थ और डिसेबिलिटीज के हवाले से। वहीं फिक्सिंग इम्बैलेंसेस की बात करें तो हर मेडिकल फील्ड में काफी स्पेशलिस्ट हों, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। एफिशिएंसी के हवाले से हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है और रिसोर्सेज का अकलमंदाना इस्तेमाल हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि कतर का हेल्थ केयर सिस्टम मुस्तकबिल के लिए तैयार हो और हर शख्स की जरूरत को पूरा किया जा सके।

और आवाम की वेलबींग को बेहतर बनाया जा सके। नेशनल टारगेट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ MOPH 2030 तक एक मेजरेबल गोल्स के मुकाबले में देखा जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NCDs से होने वाली डेथ को 36% तक कम करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो इसको 1000 लाइफ बर्थ्स पर सिर्फ 2 तक लाना, अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को पूरी पॉपुलेशन में मजबूत बनाना है। ये गोल्स सिर्फ इलनेस ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बल्कि उसे प्रिवेंट करने और आवाम की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए हैं। तो आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि ये सब कतर नेशनल विजन 2030 से कैसे जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रेटेजी 2 मेजर पिलर्स को सपोर्ट करती है, बेटर हेल्थ आउटकम्स यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना और प्रिवेंटेबल डिजीजेस को कम करना, और वहीं दूसरा मेडिकल टूरिज्म ग्रोथ, कतर को एक रीजनल लीडर बनाने में मदद देना जो हाई क्वालिटी और पेशेंट सेंटर्ड केयर फराहम करता है। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर सफर।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। आइए दोस्तों, हम नजर डालते हैं इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे जो यहाँ की हेल्थ केयर फराहम कर रही है। तो ये जानिए कि कतर ने अपने एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। की एरियाज की तरफ नजर डालें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट प्लान्स में हो रहा है, जैसे कि हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने AI पावर टूल्स लॉन्च किए जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का अर्ली डिटेक्शन करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट को मेडिकल इमेजेस इंटरप्रेट करने में मदद देते हैं। वहीं टेलीमेडिसिन रिमोट हेल्थ केयर सर्विस फराहम की जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल से दूर रहते हैं। 2024 में 1.2 मिलियन से ज्यादा वर्चुअल कंसल्टेशंस रिकॉर्ड की गई, जो टेलीमेडिसिन को कतर के केयर सिस्टम का कोर पार्ट बनाती है। वहीं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की बात करें तो पेपर से दूर जाकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि हेल्थ केयर ज्यादा एफिशिएंट और कोऑर्डिनेटेड हो। 2025 तक 95% से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन PHCC सेंटर्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR सिस्टम से कनेक्टेड हो चुके हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज NDS 3 के मुताबिक सर्कुलर हैं ताकि हेल्थ केयर की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी बेहतर हो। तो दोस्तों, अर्रोमेला हॉस्पिटल अब भी अपनी कम्युनिटी से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये वेलनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और फैमिली सपोर्ट सर्विसेज फराहम करता है। आज का हेल्थ केयर सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं, ये प्रिवेंशन, एजुकेशन और मेंटल वेलबींग का भी हिस्सा है। अर्रोमेला के कम्युनिटी प्रोग्राम्स इस विजन का अक्स हैं, जब कतर अपने नेशनल विजन 2030 की तरफ बढ़ रहा है। अर्रोमेला अब भी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक कॉर्नर स्टोन बना हुआ है जो सेहत, इल्म और रहमदिली को प्रमोट करता है। 1997 की छोटी सी शुरुआत से लेकर आज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने तक अर्रोमेला हॉस्पिटल कतर के सफर का जिंदा सबूत है, जो रिवायत से ट्रांसफॉर्मेशन तक रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, ये हीलिंग, ह्यूमैनिटी और होप का विरसा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अर्रोमेला हॉस्पिटल की। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-22-107। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर फर्स्ट से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है।

0: कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun on FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें सबसे पहले हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क झटका या यूजुअल स्मेल तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है
2: चले तो कट ही जाएगा सफर
1: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
0: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं फिल्म हरो 7 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महर खान। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे और अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहे होंगे। द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट की एक और किस्त के साथ मैं हाजिर हूँ और आज जिन नबी का हम जिक्र करने वाले हैं वो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी के जरिए इंसानियत को हिदायत और सीधे रास्ते की तरफ बुलाने का मंसूबा बनाया। ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया तक पहुँचा। हर नबी का मकसद ये था कि लोग अल्लाह की इबादत करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और जुल्म व फिस्क से बचें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ भेजा जो यमन और ओमान के दरमियान आबाद थी। ये कौम ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत थी बल्कि फन तामीर और ताकत में भी सब पर सबकत रखती थी। बुलंदो बाला इमारात, शानदार महलात और मजबूत किले उनकी पहचान थे। उनकी दौलत और ताकत ने उन्हें गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर दिया था और वो जुल्म सतम में हद से बढ़ गए थे। कौम आद का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। वो अरब थे और अलहकाफ की वादी में आबाद थे जो समंदर के किनारे फैली हुई थी। उनकी वादी को मुकीस कहा जाता था। ये कौम अपनी जिस्मानी ताकत और फन तामीर के सबब हर कौम में मुमताज थी। उनकी जिंदगी में दौलत और वसाइल की परवानी थी मगर वो अल्लाह की इबादत और उसके कवानीन की पाबंदी में गफलत बरतते थे। अगरचे वो अल्लाह की मौजूदगी से वाकिफ थे लेकिन वो ना सिर्फ अल्लाह के सिवा दीगर माबूदों की इबादत करते थे बल्कि अपने गुनाहों में भी हद से गुजर गए थे। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और एक दिन हर इंसान को उसके अमाल का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा, अदल का तकाजा है कि एक रोज़ हिसाब हो, क्योंकि जिंदगी में हमेशा नेकी की फतह नहीं होती, कभी कभी बुराई गालिब आ जाती है। अगर कयामत ना हो तो जुल्म का तसलसल रह जाएगा, लेकिन अल्लाह ने जुल्म को अपने या अपने बंदों पे हावी नहीं होने दिया। लेकिन कौम आद ने इस बात का मजाक उड़ाया और कहा, ये सब कहानियां सिर्फ तुमने खड़ी हैं, हम मरते हैं और दोबारा जिंदा नहीं होंगे, हमारी जिंदगी बस इस दुनिया तक महदूद है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको याद दिलाया कि अल्लाह ही उनका हकीकी मददगार और निजात दहिंदा है और कोई भी माबूद या ताकत उन्हें नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों के बावजूद कौमे आद ईमान ना लाई, अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाजिल किया। पहली खुशसाली आई जिससे जमीन खुश्क हो गई, फसलें मुरझा गईं और पानी की किल्लत पैदा हो गई। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुशसाली क्यों आई है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का गजब है, अगर तुम ईमान लाओगे तो बारिश होगी,

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम आग की कहानी ना सिर्फ एक तारीखी वाकया है बल्कि आज भी इंसानियत के लिए एक अहम सबक रखती है। जैसे कि हमने देखा, हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम को बार बार अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, उन्हें उनकी नियमतों की याद दहानी कराई और कयामत के दिन के हिसाब के बारे में बताया। लेकिन कौम आद ने अपने गुरूर, तकब्बुर और दुनियावी दौलत में खर्क होके नसीहतों को नजरअंदाज किया। हजरत हूद अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा खालिक और राज़िक है, तुम्हारे अमाल का हिसाब उसी दिन लिया जाएगा जब हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जजा या सजा मिलेगी। दुनिया की जिंदगी बकती है और कयामत का दिन अल्लाह के अदल और इंसाफ को जाहिर करने के लिए जरूरी है। मगर कौम आद ने इनकार किया और कहा, हम मरते हैं और फिर दोबारा जिंदा नहीं होंगे, तुम्हारी बातें झूठ हैं, ये सब तुमने घड़ लिया है। हजरत हूद अलैहि सलाम ने सब्र के साथ उनकी बातें सुनी और उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह की ताकत अजीम है और कोई भी इंसान या माबूद अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी को नुकसान या नफा नहीं दे सकता। कौम की सरकशी के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नासिल किया। पहले खुशसाली आई जिससे जमीन खुश्क हो गई, फसलें मुरझा गईं, पीने का पानी कम हो गया। सूरज की तपिश ने जमीन को इस कदर गर्म कर दिया कि लोग और जानवर मुश्किल से जिंदा रह सकते थे। हजरत हूद अलैहि सलाम ने उस वक्त अपनी कौम को कहा, ये अल्लाह का ग़ज़ब है, अगर तुम अल्लाह की इबादत करो और सच्चाई कबूल करो तो अल्लाह तुम्हें रिज़्क और नियमतें अता करेगा। मगर कौम ने मजाक और इनकार जारी रखा। अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी के बदले आसमान से शदीद बादो तूफान भेजा जो 7 रातें 8 दिन तक जारी रहा। कुरान में इस वाकये की तफसील कुछ यूं बयान की गई और आद को एक सख्त और

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, घर हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे हमारी फेवरेट जगह होती है कि नहीं। यहाँ हम अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, फैमिली के साथ मेमोरीज क्रिएट करते हैं और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। हमारा एक कम्फर्ट जोन होता है ना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे घर की छोटी छोटी आदतें एनवायरमेंट पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? लाइट्स बंद करना, पानी बचाना, वेस्ट कम करना, चीजों को रीयूज करना, ये सब सिंपल से काम है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी बदल कर रख दें, मतलब ये कि अर्ली मन के टाइम पर चले जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कभी ना अपनी डेली लाइफ की रूटीन में एक छोटी सी एडजस्टमेंट करना ही काफी होता है। तो भाई, आज का इको स्विच में हम बात करने लगे हैं इको फ्रेंडली होम रूटीन्स की, यानी घर की ऐसी आदतें जो एनवायरमेंट को भी सपोर्ट करें और जिंदगी को भी बेहतर बनाएं। तो भाई चलो, पहले तो ना हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, घर में रोजाना बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो रिसोर्सेज यूज करती ही हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, पानी का वेस्ट, खाने का वेस्ट, प्लास्टिक और अननेसेसरी पैकेजिंग का ज्यादा यूज। अच्छा, ऐसी चीजें फेंक देना जो दोबारा काम में आ सकती हैं, रीयूज की जा सकती हैं।

0: कभी हम इतने बिजी होते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते, हमारा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि हम बिजी हैं। लेकिन अगर हर घर में छोटी छोटी इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाना शुरू कर दी जाए तो इसका कलेक्टिव इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। साथियों देखिए, घर को ग्रीन बनाना मुश्किल नहीं होता, नो मैं नहीं मानती, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन, अगर घर में इको फ्रेंडली रूटीन्स फॉलो की जाए तो उसके आइडियाज मैं आपको देती हूँ कि क्या हो सकते हैं। पहली चीज ये कि एनर्जी सेविंग रूटीन बनाएं। घर से निकलते वक्त या सोने से पहले एक क्विक चेक करें, क्या लाइट्स बंद हैं अननेसेसरी, क्या अननेसेसरी अप्लायंसेस चल रहे हैं। ये छोटी सी आदत एनर्जी बचाने में मदद कर सकती है, आपका बिल भी बचेगा भाई। अच्छा दूसरी चीज ये कि पानी की कदर करें। देखें ब्रश करते वक्त या डिशेस वॉश करते वक्त या क्लीनिंग के दौरान पानी को बेवजह ना चले रहने देना। पानी एक कीमती रिसोर्स है और हर बूंद की अहमियत है भाई। तीसरी चीज खाने का वेस्ट कम करें, मील प्लानिंग करें और जितनी जरूरत हो उतना ही खाना बनाएं। बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें ताकि वो वेस्ट ना हो, उसे वापस से अच्छे तरीके से रीयूज किया जा सकता है। और फिर रीयूज और रिपेयर को तरजीह दें। किसी चीज के खराब होने पर फौरन ये काम ना करें कि उसको फेंक दें और उसकी बजाय कोई नई चीज ले आए, ये करें कि उसको रिपेयर करवाएं और रिपेयर हो सकती है तो उसे रीयूज करें। भाई पुराने जार्स, बॉक्सेस और कंटेनर्स को नए काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में रिसाइकलिंग हैबिट बनाएं। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब आइटम्स अलग अलग आप चाहें तो आदत डाल सकते हैं कि इनको अलग अलग रखा जाए। वो भी रिसाइकलिंग और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाएं। साथियों अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए तो एक फैमिली अगर अपनी डेली रूटीन में सिर्फ कुछ चेंजेस ले आए ना, मतलब ये कि सुबह नेचुरल लाइट का यूज करे, शॉपिंग के लिए रियूजेबल बैग्स रखे, फूड वेस्ट कम करे और रात को अननेसेसरी डिवाइसेस स्विच ऑफ करे, तो भाई ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल होम रूटीन बना सकते हैं। कुछ फैमिलीज ने घर में सिंपल रूल्स बनाए हुए होते हैं, मैंने देखा है, जैसे कि रूम से निकलते वक्त लास्ट पर्सन लाइट चेक करेगा या शॉपिंग के वक्त रियूजेबल बैग्स जरूर साथ रखे जाएंगे। देखिए ऐसी छोटी छोटी आदतें आहिस्ता आहिस्ता लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपने घर की रूटीन में एक ऐसी आदत चूज करें जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो, चाहे वो पानी बचाना हो, एनर्जी सेव करना हो या वेस्ट कम करना हो। और हमें बताएं आपके घर में कौन सी इको फ्रेंडली हैबिट पहले से फॉलो हो रही है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए ग्रीन होम बनाने के लिए बड़े चेंजेस नहीं, छोटी छोटी अच्छी आदतें जरूरी होती हैं। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है रोजाना मुहासबे की अहमियत के बारे में। रोजाना मुहासबा करना इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है। जब हम अपने दिन का जायजा लेते हैं तो हमें अपनी गलतियों और अच्छाइयां दोनों का एहसास होता है। ये अमल हमें बेटर डिसीजन लेने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद देता है। अगर हम हर रोज थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोचें कि हमने क्या अच्छा किया और कहां बेहतरी की जरूरत है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। मुहासबे का मतलब है सिर्फ गलतियां देखना नहीं, बल्कि अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट भी करना। ये बैलेंस इंसान को मोटिवेटेड रखता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले 2 मिनट के लिए

अपने दिन का जायजा लें और कल के लिए बेहतर इरादा करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर स्पोर्ट्स की। क्या खेलों की दुनिया बदलने वाली है? देखिए, आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जहां बच्चे शायद इस टॉपिक पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, और ये टॉपिक है फ्यूचर स्पोर्ट्स का। क्या आपने कभी सोचा है कि 20 से 30 साल बाद स्पोर्ट्स कैसा होगा? क्या फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस वैसे ही रहेंगे जैसे आज है? या आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेलों की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी? चलिए मिलकर इस मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी का रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आज से कुछ साल पहले तक रेफरीज और एम्पायर्स के फैसले फाइनल समझे जाते थे, लेकिन आज हम VAR, गोल लाइन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कैमरास का इस्तेमाल देख रहे हैं। फ्यूचर में AI और एडवांस सेंसर्स मैचेस के हर सेकंड को एनालाइज कर सकेंगे। प्लेयर्स की स्पीड हो, फिटनेस हो, हार्ट रेट हो, परफॉर्मेंस हो, रियल टाइम मॉनिटर किए जा सकेंगे। यानी स्पोर्ट्स सिर्फ टैलेंट का नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी का भी गेम बन जाएगा। अब आपको क्या लगता है, जो एथलीट्स हैं वो कैसे होंगे? स्मार्ट होंगे? मैं कहूँगी आने वाले टाइम में स्मार्टर होंगे। फ्यूचर के एथलीट्स बहुत ज्यादा फिट और प्रिपेयर्ड होंगे। वेयरेबल डिवाइसेस उन्हें बताएंगे कि कब ट्रेनिंग करनी है, कितना रेस्ट करना है और किस चीज से इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। इमेजिन कीजिए, एक फुटबॉल प्लेयर को मैच से पहले AI सिस्टम बता रहा हो, आज आपका राइट लेग जो है वो ज्यादा स्ट्रेस में है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम रखिए। इस तरह इंजरीज कम और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है ना? क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या रोबोट्स स्पोर्ट्स खेलेंगे? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। कहने को तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आज भी रोबोट फुटबॉल कॉम्पिटिशंस और ड्रोन रेसिंग इवेंट्स मौजूद हैं, होते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं कि रोबोट लीग्स भी पॉपुलर एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानी इमोशंस, पैशन और क्रिएटिविटी की वजह से ह्यूमन स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस हमेशा से रहेगी। लोग सिर्फ हार या जीत देखना नहीं चाहते, वो प्लेयर्स की कहानियाँ, उनकी स्ट्रगल्स भी देखना चाहते हैं। वैसे ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी काफी ब्राइट होगा। एक जमाना था जब वीडियो गेम्स सिर्फ हॉबी समझी जाती थी, आज ई स्पोर्ट्स दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है। प्रोफेशनल गेमर्स स्टेडियम्स भर देते हैं और मिलियन लोग ऑनलाइन टूर्नामेंट्स देखते हैं। फ्यूचर में भी हो सकता है कि ई स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बराबर पॉपुलैरिटी हासिल कर ले। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज भी कॉम्पिटिटिव गेम्स को करियर ऑप्शंस के तौर पर देख सकती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स हर किसी के लिए होगा? ये भी एक अपने आप में दिलचस्प सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को ज्यादा इंक्लूसिव बना रही है। वर्चुअल रियलिटी की मदद से लोग घर बैठे ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए एडवांस प्रोस्थेटिक और इक्विपमेंट्स नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं। यानी फ्यूचर स्पोर्ट्स का मकसद सिर्फ कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा, इसका मकसद होगा पार्टिसिपेशन। अब एक और टर्म आपने सुन रखी है और वो है सस्टेनेबल स्पोर्ट्स। हाँ जी, फ्यूचर में एनवायरमेंट भी स्पोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा। स्टेडियम सोलर एनर्जी से चल सकेंगे, इको फ्रेंडली मटेरियल से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स का मकसद होगा कि इस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे। यानी फ्यूचर का चैंपियन सिर्फ फास्ट नहीं, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। वहीं एक और स्पोर्ट होगा जिसे लोग बहुत पसंद करेंगे, वो है स्पेस स्पोर्ट्स। अब थोड़ी इमेजिनेशन की बात हम करें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये स्पेस स्पोर्ट्स क्या होगा। अगर इंसान मून या मार्स पर कॉलोनीज बनाता है तो वहां पर स्पोर्ट्स कैसे होंगे? कम ग्रेविटी में बास्केटबॉल कितना डिफरेंट होगा? हाई जंप कितना?

0: हाई हो सकती है यानी ये साइंस फिक्शन लगता है लेकिन कुछ डेकेड्स पहले वीडियो कॉल्स भी फैंटेसी ही लगती थी अब एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खत्म हो जाएंगे शायद हाँ या शायद नहीं कुछ कह नहीं सकते हम लेकिन हाँ फुटबॉल हो क्रिकेट हो या स्विमिंग और भी दूसरे गेम्स उस तरह की पॉपुलैरिटी को कायम कर पाए ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी बट मुझे लगता है इनमें चेंजेस जरूर आएंगे फिर भी जैसे मैंने कहा कि 100% ह्यूमन स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी टेक्नोलॉजी उन्हें मॉडर्न बना सकती है लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन्स आने के बाद भी आज भी लोग बुक्स पढ़ते हैं उसी तरह नए स्पोर्ट्स आने के बावजूद भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी ऐसा मुझे लगता है वैसे टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को बदल रही है और बदलेगी भी लेकिन इंसानी जज्बा मेहनत और कॉम्पिटिशन की रूह को कभी भी रिप्लेस करना मुश्किल ही होगा फ्यूचर के स्पोर्ट्स स्मार्ट जरूर होंगे लेकिन उनका दिल हमेशा इंसानी पैशन ही रहेगा चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों पे जा सकते हैं देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107 लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने कराम, आज की दुआ वो अजीम दुआ है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजाना सोना चांदी के बराबर करार दिया है, बल्कि ये भी बताया कि ये उससे भी ज्यादा कीमती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए शद्दाद, जब तुम देखो कि लोग सोना और चांदी जमा कर रहे हैं तो तुम इन कलिमात को जमा कर लो। और फिर आपने उन्हें ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस-सबात फिल अम्र, ए अल्लाह, मैं तुझसे दीन पर साबित कदमी चाहता हूँ, वलअज़ीमत अला रुश्द, सीधी राह पर चलने का मजबूत इरादा, वमूजिबात रहमतिक, वआमाल जो तेरी रहमत के मुस्तहिक बना दे, वअज़ाइम मग़फ़िरतिक, वो तौफीक जो तेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, वशुक्र निअमतिक, तेरी नेमतों पर शुक्र, وحسن عبادتك بهترین عبادت وقلبا سلیما پاکیزہ دل ولسانا صادقا سچی زبان واسألک من خیر ما تعلم, وہ ساری بھلائیاں جو تو جانتا ہے میں وہ مانگتا ہوں, واعوذ بک من شر ما تعلم, और मैं पनाह मांगता हूँ हर उस बुराई से जो तू जानता है, वअस्तग़फिरुका लिमा तअलम, और मैं तुझसे उन गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जिन्हें तू जानता है, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू गैब का सबसे बड़ा जानने वाला है। सामने कराम, जिस तरह सोना चांदी दुनिया को संवारता है, उसी तरह ये दुआ दुनिया कब्र और आखिरत तीनों को संवारती है, और इसी वजह से इस दुआ को खजाना सोना चांदी के बराबर करार दिया गया है।

0: आज हम डिकोड करेंगे सिप, ये कैसे काम करता है, ये क्यों पावरफुल है और कैसे एक छोटी सी अमाउंट भी फाइनेंशियल फॉर्च्यून में तब्दील हो सकती है।
1: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना।

लमारा इसी नाम से FM 107। तो दोस्तों कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट एवरेजिंग की। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं, प्राइस लो होती है, और कम यूनिट्स जब प्राइसेस हाई होती हैं

मौका देते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, अपनी SIPs को जिंदगी के खास गोल के साथ अलाइन करना, जैसे एजुकेशन, ट्रैवल या रिटायरमेंट। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से, SIP असल में है क्या। तो भाई SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि मैंने बताया, ये एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे मिसाल के तौर पे 500 या 1000 रियाल इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए कि हर महीने एक बीज बोया जा रहा है जो वक्त के साथ एक जंगल में तब्दील हो जाता है। ये सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर के प्रिंसिपल पर काम करता है और आपको धीरे धीरे लेकिन यकीनन दौलतमंद बनाने में मदद करता है। इसका एक और फायदा क्या है, वो ये कि आपको मार्केट टाइमिंग की टेंशन्स नहीं होती। SIP के जरिए आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर डाउन चली जाए, और वक्त के साथ आपको कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है। लेकिन एक बात है, मैं SIP इतनी बार बोला है कि अब आप थक गए होंगे सुन सुन के। फिर भी लोग SIP को गलत तरीके से समझते हैं। लोग समझते हैं कि अगर आप अपनी सारी सेविंग SIP में डाल दें तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 महीने में मार्केट ने जो हालत देखी है, उसके बाद लोगों का सिप पर भरोसा हट सा गया है।

चलें बात करते हैं 100 माइनस एक्स रूल की। हम अक्सर इस रूल की बात करते हैं कि भाई 100 एक्स माइनस रूल, ये सिंपल और स्मार्ट है। अगर एक्स आपकी एज है, मान लीजिए 30 साल, तो एक्स परसेंट यानी 30% आपकी सेविंग सेव एसेट्स में होनी चाहिए। सेव एसेट्स वो होते हैं जहां एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, जैसे एफडीज यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लेकिन उम्मीद है कि एफडी ना हो, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, प्राइवेट फंड, गोल्ड या रियल एस्टेट। ये एसेट्स फिक्स्ड रिटर्न नहीं देते, लेकिन इक्विटीज की तरह वोलेटाइल भी नहीं होते। बाकी 100 माइनस एक्स यानी 70% अगर आप 30 साल के हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। हाउ टू बैलेंस इक्विटी? इक्विटी के अंदर भी आपको अच्छा स्प्रेड चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप।

निफ्टी में लेकिन इक्विटी के अंदर। 50% लार्ज कैप, 50% मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं, ये होता है असली बैलेंस। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो भाई अक्सर लोग बात करते हैं बहुत ज्यादा सेफ होने का मसला। अक्सर लोग पूछते हैं अगर सेफ असेट्स इतने सेफ हैं तो फायदा क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने सारे पैसे एक एफडी में डाल देते हैं जो सिर्फ 6-7% रिटर्न देती है और आप 20-30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो टैक्स के बाद असली रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। दूसरे लफ्जों में

कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अब ये समझते हैं कि सारा पैसा SIPs में डालना भी अकलमंदी नहीं है। चलिए समझते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो क्या होता है। भाई दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहले सिनेरियो की बात करें तो आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप

रुपए का। आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐप खोलते हैं और वहाँ 5 लाख दिखाई देता है, आप खुश हो जाते हैं, वाओ। और भाई फिर मार्केट क्रैश होता है या करेक्ट होता है, और ये तो होगा ही क्योंकि मार्केट का नेचर है ऐसा ही। मार्केट कभी हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। अगर आप 5, 10 या 20 साल का चार्ट देखें तो ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट फुल ऑफ वॉलेटिलिटी होता है। तो आपका 5 लाख रुपए गिर कर 3.5 लाख या 3 लाख या शायद 2.5 लाख तक आ सकता है, 50% करेक्शन। साइकोलॉजिकली ये पेनफुल लगता है, लेकिन ये असली लॉस नहीं है, ये नेशनल लॉस है। नेशनल का मतलब है कि आपने अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बेचे नहीं हैं, आप अभी भी उनको होल्ड कर रहे हैं। वैल्यू अभी कम दिख रही है, लेकिन ये टेम्पररी है, आखिर में वो 2.5 या 3 लाख फिर से ग्रो करेगा, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख तक भी जा सकता है लॉन्ग रन में। तो हाँ, आपका हार्ट रेट मार्केट के साथ ऊपर नीचे भी होता है, इसलिए ये समझना जरूरी है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपना पोर्टफोलियो डेली मैट चेक करें, महीने में एक बार या हर 3 महीने में एक बार चेक जरूर करें और अपनी हार्ट बीट नॉर्मल रखें। वहीं दोस्तों दूसरे सिनेरियो की बात करें, जब आपको वाकई पैसे की जरूरत होती है, अब आता है रियल स्केरी सिचुएशन। मान लीजिए आपने 2010 में SIP शुरू किया, आपका बच्चा उस वक्त 5 साल का था, आपको पता था कि 2025 के आसपास जब वो 20 साल का होगा आपको कॉलेज के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो आपने 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किए उम्मीद के साथ कि 15 साल में आपको 12% एवरेज रिटर्न मिलेगा। आपने कैलकुलेट किया कि 2025 तक आप अपना टारगेट अमाउंट अचीव कर लेंगे, और गैस कीजिए 2024 तक आपने वाकई कर लिया। आपको बहुत अच्छा फील भी हुआ, हर महीने धीरे धीरे रुपी बाई रुपी आपने डिसिप्लिन के जरिए दौलत बनाई। लेकिन फिर अक्टूबर नवंबर 2024 आया और मार्केट गिरना शुरू हो गया। आपने सोचा ठीक है, ऐसा होता है, कोविड के टाइम भी हुआ था और मार्केट जल्दी रिकवर भी हो गया था, लेकिन इस बार मार्केट गिरता ही जा रहा है हर महीने, और अब आप नर्वस हो जाते हैं क्योंकि आपको पैसे जल्दी चाहिए, आपको मार्च में कॉलेज एडमिशन फी देनी है। तो भाई जो नेशनल लॉस आप इग्नोर कर रहे थे

वजह से बैलेंस जरूरी है ताकि आपकी पोर्टफोलियो में सेफ एसेट्स और इक्विटी एसेट्स दोनों हों। चलिए जी अब नजर डालते हैं कि हाउ दीज एसआईपीज वर्क्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये जानिए कि अब आता है असली मैजिक, कंपाउंडिंग की पावर। सोचिए कि आप हर महीने 2000 रुपए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल के बाद अगर एवरेज रिटर्न 12% हो तो आपका 4.8 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट 17 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। ये है कंपाउंडिंग। आपके पैसे रिटर्न्स कमाते हैं और फिर वो रिटर्न्स भी और रिटर्न्स कमाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का एर्थ वंडर कहा था और एसआईपी इसको आपके लिए ऑटोमेटिकली काम में लाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: ये बात इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पर नहीं, शुरुआत कब की उस पर होती है। अगर आप 25 साल के हैं और 1000 महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस इंसान से बहुत आगे होंगे जो 35 साल की एज में शुरू करता है, चाहे वो डबल इन्वेस्टमेंट करे। याद रखें, SIP में वक्त आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बैलेंस रखें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ इसलिए कि स्मॉल कैप्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं उनमें सब कुछ डाल देना गलत है, और सिर्फ लार्ज कैप में ही रहना क्योंकि सेफ लगता है ये भी गलत है। मिक्स बैलेंस होना चाहिए। आइए ये भी बता देता हूँ कि गोल्ड का क्या रोल है इस बैलेंस में। गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है। जब मार्केट गिरता है गोल्ड अक्सर स्टेबल रहता है या फिर ऊपर जाता है। यह आपके पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी से बचाता है। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है। तो अगर आप SIPs में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा पोर्शन गोल्ड में भी होना चाहिए, चाहे फिजिकल हो, गोल्ड ETFs हो या सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स। ये होता है स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। गोल्ड का रोल एक स्मार्ट

स्मार्ट हेज है। लॉन्ग टर्म डेटा के मुताबिक गोल्ड और इक्विटी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जब इक्विटी ऊपर जाता है गोल्ड भी अक्सर ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है गोल्ड इतना नहीं गिरता, कभी कभी तो थोड़ा ऊपर भी चला जाता है। इसलिए मार्केट क्रैश के वक्त गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है, यानी जब इक्विटी गिरती है गोल्ड स्टेबल रहता है या थोड़ा बढ़ता है। 2008 क्राइसिस और 2020 कोविड क्रैश में भी ऐसा ही हुआ था। मार्केट 30-50% गिरा लेकिन गोल्ड के दाम बढ़ गए। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने 2007 में 10,000 रूपए SIP निफ्टी इंडेक्स में शुरू किया, 2020 तक 18 लाख रूपए इन्वेस्ट हुआ जो 60 लाख रूपए बन गया, लेकिन कोविड क्रैश में ये 60 लाख रूपए 40 लाख रूपए बन गया, एक थर्ड का लॉस हुआ। अगर आपने 5,000 रूपए निफ्टी और 5,000 रूपए गोल्ड 20 ETF में इन्वेस्ट किया होता तो पोर्टफोलियो 59 लाख रूपीज तक बढ़ता, थोड़ा कम, लेकिन क्रैश में सिर्फ 10% लॉस ही होता, यानी 59 लाख रूपीज से 54 लाख रूपीज, जबकि पूरी इक्विटी 40 लाख रूपए तक गिरी। सिर्फ 3 लाख रूपए कम रिटर्न के बदले आपने 70% वोलेटिलिटी कम की। गोल्ड लॉन्ग टर्म में 10-12% रिटर्न देता है और सबसे जरूरी बात, बुरे वक्त में पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, टाइम होराइजन के मुताबिक पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले, अगर पैसे 3 साल के अंदर चाहिए तो इक्विटी से परहेज करें। शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल होता है, सेफ असेट चूज करें जैसे गोल्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अगर इक्विटी लेना हो तो सिर्फ लार्ज कैप या निफ्टी फंड्स। सजेस्टेड मिक्स में 80% गोल्ड, 20% निफ्टी। वहीं अगर पैसा 3-10 साल में चाहिए जैसे एजुकेशन, शादी, हाउस, डाउन पेमेंट वगैरह, कार वगैरह, सजेस्टेड मिक्स में 50% गोल्ड, 50% इक्विटी। इक्विटी 50% लार्ज कैप में, 50% मिक्स्ड कैप में। वहीं अगर गोल 10 साल से ज्यादा है या 10 प्लस साल दूर है जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह, तो 15-30 साल बाद सजेस्टेड मिक्स में 70-80% इक्विटी, 20% में गोल्ड। इक्विटी 30% लार्ज कैप, 30-40% मिड कैप और 30-40% स्मॉल कैप। वहीं दोस्तों, बात करें अगर रीबैलेंसिंग की कि रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका क्या, तो मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 80% इक्विटी 20% गोल्ड से शुरू हुआ, 10 साल बाद इक्विटी आउट परफॉर्म करता है, रेशियो बन जाता है 86:14। आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए इक्विटी बेचकर गोल्ड में डाल दें, रेशियो वापस 80:20 हो जाता है। ये है रीबैलेंसिंग। हर साल जरूरी नहीं, 5-10 साल में एक बार काफी है। मकसद, रिस्क एक्सपोजर को कंसिस्टेंट रखना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमने बात क्लियरली समझ ली है। आपने सारे पैसे SIPs में डालना नहीं चाहिए, SIPs से बिल्कुल दूर रहना भी गलत है। आपको चाहिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जब आपके रिस्क को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना हो। गोल्ड भी एक पावरफुल बैलेंसिंग रोल अदा कर सकता है अगर वाइसली यूज किया जाए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, बैलेंस बनाएं और लॉन्ग टर्म सोचिए। ये ही तरीका है इन्वेस्टमेंट्स को मास्टर करने का। तो दोस्तों, SIP सिर्फ एक और इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये एक आदत है। एक आदत सेविंग की, ग्रोइंग की और रिस्पॉन्सिबिली ख्वाब देखने की। आपको अमीर होने के लिए SIP शुरू करने की जरूरत नहीं, लेकिन अमीर बनने के लिए SIP शुरू करना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक लेंस पर छोटे कदम बड़े नतीजे। तो भाई, जब अगली बार आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, SIP को जरूर याद रखें। तो भाई, इसी के साथ दोस्तों, सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक अर्लिंग। एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: मूवी हंसी वाली बहुत हो यार, हम प्रियदर्शन की मूवी देख लेंगे हंसने के लिए, लेकिन कुछ अलग सा दिखाओ। तो मैंने सोचा कि यार हॉलीवुड की मूवी का रिव्यू अगर हो जाए तो कैसा लगेगा। नहीं तो इस हफ्ते हम हॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करेंगे इस शो में, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक,
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: मेरा नाम है फजील। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना जो थोड़ी सी डरावनी है, और सबसे पहले मूवी के मूड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस मूवी के हाइप को लेकर, यानी कि इस मूवी का हाइप कैसा था और ऑडियंस क्या सोच रही थी इस मूवी को देखने के बाद या ट्रेलर देखने के बाद, कि क्या भाई देखना है या नहीं देखना है, और हाइप कैसी रही है, एंड देन कितने रेटिंग इसको मिला। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रेटिंग 5 में 3 मिल रही है, 2 मिल रही है, तो शायद जाऊं शायद ना जाऊं। लेकिन अगर ऑडियंस कह रही कि मूवी बड़ी अच्छी है भाई साहब, वो क्रिटिक्स ने कह दिया ऐसा, क्रिटिक्स ने वैसा कह दिया, कोई बात नहीं आप देखो, तो भाई अब ऑडियंस कह रही है, ऑडियंस से बढ़कर कोई क्रिटिक क्या ही होगा। तो हम इन सब बारे में बात करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्शन के बारे में फन फैक्ट है उस पर भी डिस्कस करेंगे। देन वी गोना डिस्कस अबाउट डायरेक्टर का विजन क्या है इस मूवी को बनाने के लिए, फिल्मिंग की लोकेशन क्या थी, हम बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या रही एक्टर को जब इस मूवी को बनाया गया, और फिर सिनेमाटोग्राफी और साउंड, जैसा कि मैं कहता हूँ ये दिल और दिमाग है किसी भी मूवी का। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार ये मूवी है किस पर, एक स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी मोड़ी बातें, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस कि यार क्या रही परफॉर्मेंस एक्टर की, फिर क्रिटिक्स का क्या कहना है और वर्डिक्ट उस मूवी के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम इनसाइड इस मूवी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। वेल, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इनसाइडियस कहते हैं, कुछ लोग जैसे अमेरिका में इनसीडियस चलता है। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस मूवी के मूड और एटमोसफेयर को लेकर बात करना।
2: Looks like there's something stuck in here.
0: दोस्तों इस मूवी का मूड बहुत ही ज्यादा स्केरी, सीरियस और डर से भरा हुआ है। जब आप फिल्म देखना शुरू करते हो तो आपको पहले ही सीन से एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और अकेला लगता है, जिससे ऑडियंस के अंदर एक गहरी टेंशन बनती है। डायरेक्टर ने इसमें आम हॉरर मूवीज की तरह फालतू के सस्ते वाले, हल्के वाले डरावनी चीजें नहीं डाली कि एकदम से आवाज जो है वो बढ़ा दो, पहले शांति रखो फिर आवाज गेट की मचा दो, नहीं वो सब नहीं, या फिर स्क्रीन पर एक बड़ा चेहरा एकदम से आ जाए डरावना सा तो वो लोग डर जाए, ये सब हरकतें नहीं करी हैं डायरेक्टर ने। इसमें भयंकर सीन डाले हैं भाई, फालतू के सस्ते स्केयर्स नहीं डाले हैं, जैसे कि अचानक कोई बिल्ली सामने आ जाए, हवा से पर्दा हिल जाए, ये सब हरकतें बहुत पुराना हो गया। ये बॉलीवुड में मिल जाएगा, कोई देख लो हॉरर मूवी आ रही है पक्का, मैं बता रहा हूँ, बिल्ली सफेद कपड़ा वाली कोई औरत, ये सब दिख जाएगा भाई। लेकिन इसकी जगह इस फिल्म में धीरे धीरे डर को बढ़ाया जाता है, पहले हल्की हल्की चीज है, फिर ये बढ़ता ही चला जाता है, ये आहट वाला एकदम बना दिया इन लोगों ने। लेकिन बहुत ही यूनिक है मूवी का सेकंड हाफ, बिल्कुल अजीब और सपने जैसा लगता है, क्योंकि कैरेक्टर्स एक बिल्कुल अलग अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं, जिसे द फर्दर बोला गया है। वो जगह बिल्कुल काली, धुंधली और डर से भरी हुई है, जहां बुरी चीज है ना वो आपको दिखती है, बुरी रूह जो वो दिखेगी आपको। पूरा माहौल इतना दबाव वाला, इतना प्रेशर वाला है कि आपको लगता है कि आप भी उस घर के अंदर के हिस्सों में हैं, घर के अंदर मौजूद हैं या घर के अंदर फंस गए, है ना। आपको सांस लेने में भी डर लगता है, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी मूवी देख लेते हैं या कोई सीन ऐसे हो जाता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, होता है ना कभी कभार आप किसी एक कमरे में रहते, एक लंबी सांस लेते के, ये आप करते ना इस मूवी में, आप ये एक बार जरूर करेंगे, लेकिन उस इंटेंसिटी से देखो। ये नहीं कह रहे फजील ने पहले बताया तो मैं ना इस बार नहीं करूंगा, मैं देख लेना, ये हरकतें मत कर लेना। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार कुछ नया सा तो है।
2: Ever since she was born, it's been just the two of us.
3: Hi.
4: Hi.
2: We were really happy.
5: Get some sleep.
2: Until I started having these dreams.
0: पूरा माहौल प्रेशर से भरा होता है, सांस लेने में तकलीफ होगी। फिल्म का हर एक सीन आपको डराने के लिए ही बना है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा कुछ अजीब चल रहा होता है। मूवी का अंधेरा और धुंधला लुक आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होने देता और आप पूरी फिल्म के दौरान अपनी सीट से चिपके रहते हैं। ये मूवी एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में काफी देर तक रहती है और आपको रात को सोने नहीं देती। वेल, आपको अगर याद हो, आपने जब बाहुबली देखी थी तो उसका कुछ म्यूजिक ना आपके साथ रह गया होगा। आप काफी लंबे वक्त तक वो मूवी का म्यूजिक आपके दिमाग में रहा होगा और आपको गुनगुनाते भी होंगे। उसका ऑरा जो है ना, वो आपके साथ चला जाता है। इसमें आपको वही फील होने वाला है। And now let's talk about the hype. इस मूवी का हाइप क्रेज कैसा रहा? Insidious मूवी के आने से पहले मार्केट में इसका हाइप बहुत ज्यादा था। आमतौर पे वेस्ट में ज्यादा इसका हिसाब किताब था। इवन इंडिया में भी लोग अब अंग्रेजी मूवी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर पे हॉलीवुड हॉरर। उसके अलावा यहाँ पर भी अच्छा खासा क्रेज था, अच्छी खासी बुकिंग एडवांस में हो गई थी। हॉरर मूवीज देखने वाले लोग इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसके डायरेक्टर थे जेम्स वैन और राइटर थे वॉनेल, और ये दोनों बहुत ही जाने माने फेमस फ्रेंचाइजी जो हैं वो हैं, या कहें फेमस लोग हैं जो आमतौर पे मूवी जब बनाते हैं लोग समझ जाते हैं कि भाई इनकी मूवी देखनी है। ठीक है, 100 मूवी आपने अगर देखी हो तो बहुत ज़्यादा उसमें खून खराबा था, एक्शन भयंकर भरा हुआ था, हिंसा थी, एक तरह वायलेंस था उसमें, तो ये एक्चुअली वहाँ से आते हैं। इसलिए सब लोग देखना भी चाहते थे इस मूवी को, और ये टीम बिना किसी खून खराबे के एक सीधी सादी भूत वाली फिल्म जो है या हॉरर वाली फिल्म जो है वो बनाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि लोग क्या हमारे वाले मूवी से डरते हैं या नहीं। जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों के बीच में डर और क्यूरियोसिटी दोनों बेहद बढ़ गई थी।
2: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
3: Those are not dreams, Gemma. You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one. But you can do something I didn't know was possible. You can bring demons back to the human world permanently.
0: लोग इंटरनेट पे इसके अजीब से म्यूजिक और लाल चेहरे वाले डरावने शख्स को जब देखते थे तो बातें करते थे इन लोगों के बारे में, या जो ट्रेलर उन्होंने देखा है उन ट्रेलर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लग गया था। इवन वेबसाइट पर या ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में भी आप जाएंगे ना तो लोग बहस करने और बातें करने लग गए थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी ट्रेलर को देखने के बाद इतनी बातें हो रही हो। जब इस फिल्म को पहली बार एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो वहां से इतने अच्छे रिव्यूज आए कि लोगों का क्रेज डबल ट्रिपल होने लग गया। हर कोई कह रहा था कि ये पिछले कुछ सालों की सबसे डरावनी मूवी होने वाली है, और ये बात काफी हद तक सच भी हो गई। इस कम बजट की इंडी फिल्म ने बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मों से ज्यादा हाइप क्रिएट किया, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बिल्कुल नया और फ्रेश था। एंड नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, विच इज रेटिंग। यार हमने मूवी तो देख ली, मूवी बढ़िया आला है, जबरदस्त है, मजा आएगा देखने में, लेकिन रेटिंग का क्या? ऑडियंस क्या कहती है? क्रिटिक्स का क्या कहना है? अगर स्टार रेटिंग की दोस्तों बात करें तो इस मूवी को मैं 5 में से 4.5 स्टार्स दूंगा। ये मूवी मॉडर्न हॉरर सिनेमा के लिए एक मिसाल है। ये फिल्म दिखाती है कि बिना बड़े बजट और बिना महंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी एक ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जो लोगों की रातों की नींद उड़ा दे। भाई साहब, इस मूवी को देखने के बाद आपको अपने घर में रहने में डर लगेगा अकेले। तो ये जो सीन होगा ना, ये कुछ वक्त तक चलेगा, लेकिन अगर आप इस मूवी को देखने के बाद एक तो सीरियस इतना होना नहीं है घर पे जाके, बाकी हाँ ये जरूर है आप डरते हैं असल में अकेले रहने में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 2-3 लोगों के साथ ही देखना इस मूवी को। फिल्म का पहला और दूसरा पार्ट इतना सॉलिड है कि आप अपनी आंखें स्क्रीन से हटा नहीं पाते। हालांकि फिल्म का जो आखिरी हिस्सा है जहां कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक या झूठा लग सकता है, लेकिन फिर भी यू नो यही तो मूवी की खासियत है कि कितना रियलिस्टिक दिखाए, और वो रियलिस्टिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा पूरे डर को कम नहीं करता है जब भी आप फिल्म देखेंगे ना।

0: देखनी चाहिए, क्योंकि ये डर का एक अलग लेवल सेट करती है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली रेटिंग के बारे में, हाइप के बारे में, इस मूवी का मूड क्या है उसके बारे में। अब लेकिन थोड़े और डिटेल में आते हैं, जैसे कि इस मूवी को बनाते हुए कुछ प्रोडक्शन के फन फैक्ट्स। प्रोडक्शन के दौरान इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे मजेदार और अनोखे फन फैक्ट्स जो है वो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मूवी को बहुत ही कम बजट में बनाया गया है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं, हॉरर मूवी के लिए बहुत से नकली चीजें लगती हैं, बहुत से मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो अपने गियर्स लेकर आते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है। लेकिन $1.5 million जो है इतने में ये मूवी बन गई। और अब ये तो आपको पता होगा ना कि हॉलीवुड इससे कहीं ज्यादा में बनती है भाई, 3-4 गुना से ऊपर लग जाते हैं। हॉलीवुड के हिसाब से ये बहुत छोटा अमाउंट है। बजट कम होने की वजह से पूरी मूवी की शूटिंग बहुत ही फास्ट करनी पड़ी और पूरी फिल्म की शूटिंग सिर्फ 3 हफ्ते तकरीबन 20-22 दिनों में खत्म हो गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कसिंग कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन के लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। But don't worry, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। एक और बहुत ही मजेदार बात है या कहें फन फैक्ट है कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा और डरावना विलन है, यानी वो लिपस्टिक फेस वाला आदमी, अगर आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा किसकी बातें कर रहा हूं, उसको किसी प्रोफेशनल एक्टर ने नहीं बल्कि फिल्म के म्यूजिक कंपोजर जोसेफ बिशारा ने ही प्ले किया है। तो ये भी एक और यूनिक चीज है, उन्होंने पहले फिल्म का डरावना म्यूजिक बनाया और फिर खुद मेकअप लगाकर लोगों को डराने स्क्रीन पर आ गए। तो उनको बहुत अच्छे तरह से पता था कि म्यूजिक जो मैंने बनाया उस पर एक्टिंग कैसी करनी है, एक्शन कैसा करना है, उस पर ड्रामे कैसे करने हैं, तो वो बाकायदा जानते थे।
3: What happens if I can't control this?
0: इसके अलावा डायरेक्टर जो जेम्स हैं, जानबूझकर इस फिल्म में बिल्कुल खून खराबा नहीं दिखाना चाहते थे। वो क्रिटिक्स को प्रूव करना चाहते थे कि देखो हॉलीवुड में बगैर खून खराबे के 100 मूवी के बाद ये मूवी मैं बनाऊंगा और ये डरावनी बनाऊंगा और अच्छे से डरा कर दिखाऊंगा, और ये साबित करके उन्होंने दिखाया। तो खून खराबा इसमें ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जेम्स का विजन, यानी कि डायरेक्टर का विजन क्या था इस मूवी को बनाते हुए। डायरेक्टर जेम्स वैन का विजन इस फिल्म को लेकर बिल्कुल साफ और अलग था। वो पुरानी हॉन्टेड हाउस वाली फिल्मों के रूल्स को तोड़ना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा आइडिया ये था कि इस फिल्म में घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उस घर में रहने वाले छोटे बच्चे जो है ना वो हॉन्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर फैमिली डर कर घर बदल भी ले तो भी जो डरावनी चीज है ना वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लोगों के अंदर है वो डरावनी चीज है, लोगों के अंदर ही है वो शख्स, वो बुराइयां, क्योंकि जो डरावनी चीजें हैं वो अंदर से आती हैं, तो घर कितना भी बदल लो कोई फायदा है ही नहीं। जेम्स वैन ने इस फिल्म के लिए यूरोप के पुराने हॉरर फिल्म मेकर से इंस्पिरेशन ली थी, जो डर को दिखाने के लिए अजीब रंगों का यूज करते हैं। उन्होंने जानबूझकर फिल्म में लाल रंग को बुराई और डेंजर का सिंबल बनाया। उनका मकसद सिर्फ ऑडियंस को अचानक से डराना धमकाना नहीं था, बल्कि वो ऑडियंस के दिमाग में एक ऐसा डर बैठाना चाहते थे जो फिल्म देखने के बाद जब लोग अपने घर जाएं तो उन्हें अपने ही घर के कोने डरावने लगने लगे। वो डर को बहुत ही नेचुरल और रियल दिखाना चाहते थे ताकि लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े, एक ऐसा इम्पैक्ट जिस इम्पैक्ट से एक्चुअली में इस मूवी की हाइप बने और डर

डायरेक्टर की भी हाइप बने। अगली बार जब इस डायरेक्टर की मूवी आएगी ना तो आप सर्च करेंगे, आप सोचेंगे कि यार फला डायरेक्टर की मूवी मुझे लाजमी देखनी ही देखनी है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इस मूवी को शूट कहाँ किया गया, इनकी लोकेशन यानी कि फिल्मिंग लोकेशन क्या रही। फिल्मिंग लोकेशन की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के आसपास की असली जगहों पर की गई है। शूटिंग बजट कम होने के वजह से कई बड़े सेट्स जो हैं वो नहीं बनाए गए। आमतौर पे ज़रूरी होता है कि जब आप हॉरर मूवी बना रहे हो तो आपको सेट बनाना पड़ता है, बल्कि असली घरों का यूज़ किया गया है इस मूवी में। फिल्म रियल लगे इसलिए फिल्म का जो पहला घर है जहाँ फैमिली शुरुआत में रहती है, जहाँ उनका बेटा कोमा में चला जाता है, ये आप मूवी देखेंगे तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा, वो मिडटाउन लॉस एंजलिस के विक्टोरिया पार्क का एक नाम है, या कहें वो एक एरिया है विक्टोरिया पार्क, वहाँ पर शूट हुई। उस घर का एड्रेस भी डिटेल में यू नो सोशल मीडिया पे पब्लिक डोमेन में हाजिर है, 4350 विक्टोरिया पार्क ड्राइव, हाँ ये है। तो आपको ये सब भी देखने को मिलेगा, मतलब बाकायदा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन आप जब भी कभी आप जाएँ ना लॉस एंजलिस तो आपको वहाँ पर ये घर दिख जाएगा, ये 4350 विक्टोरिया पार्क ड्राइव, नोट कर लो भाई। जब फैमिली उस घर के यू नो डरावनी चीज़ों से, भूत से, हॉरर जो एलिमेंट है वहाँ पर, जब उससे डर कर दूसरे घर में शिफ्ट होती है, तो वो दूसरा घर भी लॉस एंजलिस के ही यू नो एरिया में था, और वहाँ का इलाका है साउथ पॉइंट व्यू स्ट्रीट, वहाँ पर वो घर मौजूद था। तो असली घर है, इन असली घरों के अंदर की तंग गलियाँ, पुराने कमरे फिल्म में डर का माहौल और जबरदस्त बना देते हैं, लाजवाब बना देते हैं। असली लोकेशन पर शूट करने से एक्टर को भी लग रहा कि वो किसी रियल हॉन्टेड हाउस में है, जिससे ना एक्टिंग और ज्यादा नेचुरल आती है और ज्यादा क्लियर हो जाती है एक्टिंग। तो एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हॉरर मूवी में ये होता ही है कि अगर यू नो आप एक्टिंग कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक होनी चाहिए। एक लौता ऐसा यू नो जॉनर है जहां आपको एक्टिंग तो करनी है लेकिन अपने आप को चेंज भी बहुत करना होता है। इस मूवी में एक्टर्स को कोई लेकिन बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन उनका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा था। एक्टर्स को अपने चेहरे पर रॉ पैनिक और असली डर दिखाना था। पैट्रिक विल्सन जो जॉश का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर शुरू में बिल्कुल नॉर्मल और इन सब बातों पर भरोसा ना करने वाला होता है। अरे हॉरर का कुछ नहीं होता, ये उनका मानना था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे वो एक थके हुए और डरे हुए बाप में बदल जाते हैं, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सबसे बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो जोसेफ बिशारा का था, जिन्हें हर रोज घंटों तक चेयर पर बैठना पड़ता था ताकि उनके चेहरे पर वो लाल और काला रंग लगाया जा सके, लंबे नाखून लगाए जा सके, और उनके एक खून खराबा पसंद करने वाले यू नो इंसान या कैरेक्टर का लुक दिया जा सके। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि उन्हें खुद देखकर सेट पर लोग सच में डर जाया करते थे। तो ये तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो गई, लेकिन अब दिल और दिमाग के बारे में बात करते हैं, या कहें आंख और कान के बारे में। सिनेमाटोग्राफी और साउंड, सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, और किसी भी हॉरर की ताकत ऑब्वियसली सिनेमाटोग्राफी और साउंड ही होती है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर्स ने कैमरा को बहुत धीरे धीरे घुमाया है, जिससे ऑडियंस को ऐसा लगता है कि कोई छुपकर घर के कोनों से सब देख रहा है। कैमरा अक्सर अंधेरे कमरों और खाली रास्तों पर रुकता है ताकि आपका ध्यान वहां जाए और आप डरें, अगल बगल देखने की कोशिश करें। जब कुछ ना दिखे और एकदम से जब रोशनी में कोई सामने आए ना, तो डर सच में बनता है। साउंड डिजाइन के बारे में तो जितना बोला जाए वो कम है दोस्तों, वो भी बड़ा लाजवाब है। इस फिल्म का जो म्यूजिक स्टैंडर्ड है ना, वो आम फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं है, है ना। इसमें वायलेंस की ऐसी तेज और अजीब आवाजें यूज की गई हैं जो आपके कानों में चुभती हैं, आपको परेशान करती हैं, डर बढ़ाती हैं, आपके दिल की धड़कन को तेज करती है। बैकग्राउंड में एक पुरानी घड़ी के चलने की आवाज, ये हमेशा आती रहती है उसमें, जो टेंशन को बनाती है। ऑब्वियसली ये बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग है जो डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, साउंड डिजाइनर, ये सब सारी चीज़ें ना सोचते हैं वो रेगुलर बेसिस पे। जब भी कोई

0: यू नो कैरेक्टर सामने आता है, डरावना कैरेक्टर सामने आता है, तो अचानक से बहुत तेज और डरावना म्यूजिक बजता है जो आपको अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देता है। इस फिल्म का साउंड ही इसको आधी से ज्यादा डरावनी फिल्म बनाता है और मुझे तो ये मूवी लाजवाब ही लगी। अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी का यू नो स्पॉइलर फ्री प्लॉट क्या है। स्टोरी की बात करें तो ये एक छोटी स्पॉइलर फ्री यू नो सीन जो है मैं वो बताने वाला हूं। स्टोरी की बात करें तो एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री कहानी जो है मैं वो बता देता हूं। जॉश और रेनाई ये अपने बच्चों के साथ एक नए खूबसूरत घर में आते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उनका बड़ा बेटा डेल्टन, जिसका नाम है, वो छत के अंदर वाले कमरे में जाता है और वहां एक अजीब हादसे के बाद बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं पेरेंट्स। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है और वो एक मिस्टीरियस कोमा में चला जाता है। इसके बाद घर में अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं और यू नो कैरेक्टर दिखने लगते हैं। रेनाई डर जाती है और फैमिली घर बदल लेती है। सिंपल, यहां खेल शुरू होता है। जब वो नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन वापस से वही सब रिपीट होने लगता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि प्रॉब्लम घर में तो थी ही नहीं, वो प्रॉब्लम जो है वो उनके बेटे में है। उनका बेटा सोते वक्त बहुत अजीब चीजें कर सकता था अपनी बॉडी से, वो भी यूनिक था इस मूवी में। और उसकी बॉडी के साथ जो होता है वो बहुत ही यूनिक हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक अलग दुनिया में चली जाती है। ये इस पे हम और डिटेल में नहीं आएंगे, वरना यू नो फिर वही है, डर जाएंगे। आप कह रहे अभी से बता दिया तो फिर मूवी देखूं ना देखूं। उसके अलावा इसी मूवी में हॉरर कैरेक्टर ऑलरेडी मौजूद है जो कि उसी के बॉडी में शामिल होना चाहती है। जॉश अब अपने बेटे को बचाना चाहता है और उसे डरावनी दुनिया से बाहर ले जाना चाहता है। तो ये खेल है, अब इसी खेल के अराउंड सारी मूवी चलती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकता, ऑब्वियस सी बात है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन तो सही था, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी थी। परफॉर्मेंसेस के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही लाजवाब कमाल का काम किया है। पैट्रिक विल्सन और रोज ने पति पत्नी का रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि उनका डर और दुख बिल्कुल असली लगता है। जब उनका बच्चा बीमार होता है और घर में कैरेक्टर आते हैं तो उनके चेहरे की थकान और परेशानी देखकर ऑडियंस को उनसे हमदर्दी हो जाती है। पहला पड़ाव यहाँ तो पार हो गया इस मूवी का। फिर पर इस फिल्म में, या कहें इस फिल्म की सबसे बड़ी जो जान है वो है लिन शे, जिन्होंने एलिसे नाम की साइकिक मीडियम, यानी कि जो हॉरर कैरेक्टर है ना घर में, उसको भगाने वाले का रोल प्ले किया गया है। तो उनका कैरेक्टर बहुत ही अजीब पर साथ ही साथ बहुत प्यारा और हिम्मत वाला भी है। जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर उनका डराने का तरीका भी अलग है। छोटे बच्चे सिमकिंस ने भी डेल्टन के रूप में अच्छा काम किया, जो पूरी फिल्म में लगभग सोया रहता है, पर मासूमियत डर को और बढ़ा देती है। जब मासूम लोग ज्यादा डरते हैं ना, तब तो फिल्म जबरदस्त और लगने लगती है ना, तो फिर लगता है कि यार इस मासूम के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो अपने को और ज्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे को ऐड किया है ना इस फिल्म में डायरेक्टर ने, बहुत स्मार्टली किया है। बाकी सभी की एक्टिंग इस मूवी में लाजवाब है और रियल लगती है। उसके अलावा क्रिटिक्स का क्या कहना है इस मूवी को लेकर, उस पर भी जरा नजर डाल देते हैं। क्रिटिक्स ने इस मूवी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं और ये रॉटन टोमेटोज बहुत ज्यादा लोगों को पता भी है, वहां पर 67% स्कोर किया है। ज्यादातर बड़े क्रिटिक्स ने जेम्स वैन की तारीफ की, उन्होंने पुराने तरीके से सस्पेंस बनाकर लोगों को डराया है। क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म का पहला आधा हिस्सा इतना डरावना है कि आप सांस नहीं ले पाते, आपको सच में जो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग हैं ना उनको डर लगेगा। उन्होंने साउंड डिजाइन और एक्टर्स की एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। कुछ मेन स्ट्रीम क्रिटिक्स को फिल्म का आखिरी हिस्सा थोड़ा कम पसंद आया। उनका मानना था कि कई बार जब फिल्म एक दुनिया से दूसरी दुनिया चली जाती है तो वो थोड़ी सी अजीब और कम डरावनी लगने लगती है, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। लेकिन इस छोटी सी शिकायत के बावजूद सभी क्रिटिक्स इस बात पर सहमत थे कि इंसीडियस ने हॉरर जॉनर को एक नई जिंदगी दी है। उन्होंने इसे एक मास्टर क्लास बताया जो दिखाती है कि बिना फिजूल के या खून खराबे के बड़े बजट के भी एक परफेक्ट बेहतरीन डरावनी मूवी बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद हमने क्रिटिक्स के बारे में भी बात करी कि क्रिटिक्स का क्या कहना है इस मूवी में. एक दो एलिमेंट अगर छोड़ दिया जाए या स्क्रिप्टिंग में छोड़ दिया जाए, और ऑब्वियसली यार हॉरर मूवी में कुछ तो नया करना ही पड़ेगा, उस नई चीज को लेकर आए क्रिटिक्स ने, उनका काम ही यही है कि क्रिटिसाइज करना है, तो उन्होंने अपनी तरह से क्रिटिसाइज किया. लेकिन अब फाइनली बात क्या है, इस मूवी को देखना है नहीं देखना है, वर्डिक्ट क्या है. दोस्तों बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में. वेल वर्डिक्ट देखिए, इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, सस्ते तरीकों से नहीं डराती है और डायरेक्टर ने बहुत आला दर्जे का काम किया. बिना खून खराबे के दिखाया, सिर्फ एक खाली घर, अजीब आवाजें और डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक से ऐसा माहौल बनाया है कि आपको पूरी फिल्म में डर लगेगा. मूवी का अल्टीमेट वर्डिक्ट यही है कि इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, सबसे बेहतरीन और डरावनी फिल्मों में से एक है. कहानी भी है, बाकी जो हॉरर वाली फिल्में होती हैं वो हमेशा घर हॉन्टेड होता है, घर में कोई प्रॉब्लम होती है, पर इस फिल्म का नया ट्विस्ट यही था कि इसमें घर में नहीं बल्कि एक छोटा जो बच्चा है वो ही उसी में प्रॉब्लम है. उसके अलावा कम बजट बड़ा कमाल, कमजोर क्लाइमेक्स जरूर था लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है ऑडियंस को फिल्म का आखिरी हिस्सा थोड़ा कम डरावना और नाटक जैसा लगा, जहां हीरो अलग दुनिया में चला जाता है, लेकिन ये छोटी सी कमी फिल्म की शुरुआत से भयानक डर को कम नहीं करती है, लाजवाब रखती है. फाइनल टेक तो यही है, ये फिल्म हॉरर जॉनर के लिए एक मास्टरपीस है. इसका डराने का तरीका थोड़ा अलग है, वायलिन की आवाज आपको फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहेगी. अगर आप ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो आपको सच में डरा सके तो ये मूवी आपके लिए है. इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. ये फिल्म के बारे में हमने बात करी और रिव्यू ऑफ द वीक में अब हम अगले हफ्ते से थर्सडे को मिलेंगे. मूवी का रिव्यू जो है थर्सडे को होगा, लेकिन इन सब के बीच के टाइमिंग चेंज हो गई, थर्सडे को मिलेंगे है ना, फ्राइडे को नहीं आएंगे, ट्यूसडे को क्या होगा, इन सब के बीच आदमी सेम रहेगा, फजील इधर ही रहेंगे. रिव्यू ऑफ द वीक आपको यहां पर मिलता रहेगा, FM 107 पे मिलता रहेगा. फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107.
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
5: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं. ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है. ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं. अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं. इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के. ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है. हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है. अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं. ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है. हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है. No, no, no, no.
2: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
7: FM 107.
2: Log into our website.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें। आज ही राबता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतरी टेबल टेनिस स्टार राशा लगराइबी के बारे में। राशा लगराइबी कतर की उभरती हुई टेबल टेनिस स्टार हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी पहचान बना ली है। इस साल की इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में राशा ने अंडर 11 कैटेगरी में दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी बनकर कतर के लिए एक तारीखी कामयाबी हासिल की। ये मकाम कतर की टेबल टेनिस की तरक्की और नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का सबूत है। रशा की ये कामयाबी यूथ कंटेंडर और स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का नतीजा है। ये टूर्नामेंट्स दोस्तों 31st कतर इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप सीरीज का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपनी एज कैटेगरी में बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला किया। हर मैच में कीमती रैंकिंग पॉइंट्स हासिल करते हुए रशा ने वर्ल्ड रैंकिंग्स की पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। रशा की कामयाबी पर कतर टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमाद अहमद अल हमादी ने भी फख्र का इजहार किया। उन्होंने रशा की मेहनत, लगन और बेहतरीन परफॉर्मेंस को सराहा और कहा है कि ये कामयाबी कतर के लिए बहुत अहम है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफएम 107 पे इस्तकबाल है आपका और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम आपसे बात करते हैं हर हफ्ते। और इस हफ्ते है बात एजुकेशन स्कैम के बारे में, एजुकेशन फ्रॉड के बारे में। आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं ये फ्रॉड, और इसकी वजह है बच्चे पढ़ाई के लिए फोन, टैबलेट्स और इंटरनेट का यूज करते हैं। स्कैमर्स फेक एजुकेशनल वेबसाइट्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज, स्कॉलरशिप ऑफर्स और लर्निंग एप्स बनाकर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, गारंटीड एग्जाम सक्सेस, फ्री स्टडी मटेरियल्स या ऐसी स्कॉलरशिप्स का एड दिखाते हैं जो सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इन ऑफर्स को लेने के लिए बच्चों से रजिस्टर करने को कहा जाता है और उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड। इतनी ही जानकारी काफी है फ्रॉड करने के लिए। कुछ फेक वेबसाइट स्टडी मटेरियल या एग्जाम प्रेप के लिए पहले पेमेंट भी मांगती है। बहुत बार ये वेबसाइट्स कोई एजुकेशनल सर्विस नहीं देती, इसके बदले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती हैं, पैसे ठग लेती हैं। ये डिवाइस में हार्मफुल सॉफ्टवेयर डाल देती हैं। स्कैमर्स फेक ईमेल्स या मैसेजेस भी भेजते हैं जो देखने में लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। इन मैसेजेस में स्टूडेंट्स को एक लिंक पर क्लिक करके अपना स्कूल अकाउंट अपडेट करने या आइडेंटिटी वेरीफाई करने को कहा जाता है। जैसे ही लिंक खुलता है, स्कैमर्स को पर्सनल इन्फो या ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। ऐसे स्कैम से आइडेंटिटी थेफ्ट, पैसे का नुकसान और बच्चे फैमिली दोनों को स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है। कैसे बचें इन स्कैम से या फ्रॉड से? बच्चे सिर्फ वही वेबसाइट और एप्स यूज करें जो स्कूल, टीचर्स या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंड की हो। दूसरा तरीका है कोई भी ऐप डाउनलोड करने या क्लास के लिए पे करने से पहले पेरेंट से वेरीफाई करवाएं। तीसरा, अननोन वेबसाइट पर कभी भी पासवर्ड, पर्सनल इन्फो या फिर पेमेंट डिटेल्स शेयर ना करें। वेबसाइट का एड्रेस यानी कि यूआरएल ध्यान से चेक करें कि वो ऑफिशियल स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की है या नहीं। अगर कोई ईमेल या मैसेज सस्पिशियस लगे तो लिंक पर क्लिक ना करें और बड़ों को रिपोर्ट करें। इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल नए जमाने के नए फ्रॉड कुछ इतने यूनिक और ट्रिकी होते हैं कि उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्रॉड अवेयरनेस के एपिसोड में, जहां पर नए जमाने के और नए फ्रॉड के बारे में हम बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से तैसी। स्कैम अलर्ट।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, आज की दुआ है एक नबी की जबान से निकली हुई, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने फिरौन और उसके जाबिर लश्कर के मुकाबले में अल्लाह ताला की पनाह मांगी थी। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की है जब वो जालिमों के जबर और काफिरों के तसल्लुत में थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौम الظالمين वनजिना बिरहमतिक मिन अल कौम अल काफिरीन। ये दुआ दरअसल ईमान वालों की तर्जमानी करती है जो सबसे ज्यादा अपनी दुनियावी सलामती से पहले दीन के तहफ्फुज की फिक्र करते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौम الظالمين, ए हमारे रब, हमें जालिमों का शिकार न बना, न ऐसा कि वो हम पर गालिब आकर हमें हमारे दीन से हटाएं, और न ऐसा कि हमारी कमजोरी को देखकर दूसरों को गुमराह करें और कहें अगर ये हक पर होते ना तो हम उन पर मुसल्लत न होते। वनजीना बिरहमतिका मिन अल-क़ौम अल-काफिरीन, ए रब, अपनी वसी रहमत से हमें काफिरों के जुल्म और तसल्लुत से नजात दे। समीन, इस दुआ के अंदर कई अजीम सबक पोशीदा हैं। एक तो ईमान का तकाजा तवक्कुल है, यानी मोमिन की असल ताकत अल्लाह पर भरोसा है, न कि जाहिरी वसाइल। दुआ और तवक्कुल साथ साथ होने चाहिए। दुआ करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी तकमील है। मजीद, असल खतरा दीन का नुकसान है, इसीलिए अंबिया और सालेहीन सबसे ज्यादा दीन के बिगड़ने से पनाह मांगते थे, और इसी तरह बलाओं के आने से पहले दुआ करना बेहतर है। यानी मोमिन का शेवा यही है कि वो मुसीबत की तमन्ना नहीं करता लेकिन आने पर साबित कदम रहता है। और इसी तरह ये दुआ हमें ये सिखाती है कि इंसान अपनी निजात अल्लाह की रहमत ही से मांगे, क्योंकि वही मजलूमों का सबसे बड़ा मददगार है। रब्बना ला तजअलना فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين। ظالموں کے مقابلے میں اصل سہارا اللہ کی پناہ اور رحمت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا دل کی گہرائی سے پڑھیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ان شاء اللہ کل مزید ایک نئی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक

0: स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ। शो का नाम है जूनियर जनाब, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन छोटी सी उम्र के बड़े बड़े चैंपियन से जिनकी उम्र नहीं देखी जाती। भाई हैं ये बच्चे लेकिन करते बड़े बड़े काम हैं। भाई आज हम मनवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी यंग अचीवर से जिनका जुनून है क्रिकेट। जी हाँ, देसी बच्चा है ना, तो क्रिकेट तो भाई हम लोगों की वेंस में दौड़ती है। जी बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हमारी मेहमान है हादिया, जो कि सिर्फ 14 साल की हैं, लेकिन टैलेंट और एनर्जी इनमें प्रोफेशनल लेवल की है भाई, कमाल की। जब दूसरी बच्चियां डॉल्स और ड्राइंग्स का शौक रखती हैं तो वहां पे हादिया के बारे में अगर बोलूं तो भाई ये पिच पर चौके छक्के मार रही होती हैं। मतलब ये कि भाई कभी कभी फील्डिंग पे भी खड़ी होंगी तो बॉल के पीछे भी भाग रही होती हैं। और भाई मुझे बड़ा शौक हो रहा है इनको देखकर कि एक दफ़ा देखूं तो सही कि सिक्सर्स कैसे लगाती हैं और चौके कैसे लगाती हैं। तो ज़रा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और डेडिकेशन। वाह भाई हादिया, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू यू। भाई क्रिकेट की फील्ड पर वो सिर्फ खेलती नहीं, अपनी मेहनत और जज्बे को भी साबित करती हैं और आज आई हैं हमारे साथ हमें इंस्पायर करने। तो भाई इससे पहले कि मैं और कसीदे खींचूं इनके, मैं चाहूंगी कि ये खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, हमें हमारी अपनी हॉबीज के बारे में बताएं, हमें अपनी दिलचस्पियों के बारे में बताएं, हमें ये बताएं कि ये कितने साल की हैं, क्या करती हैं। क्रिकेट के अलावा भी कुछ शौक होगा ना, तो उसे वो भी चीजें इनसे पूछ लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हैं आप?
2: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, स्टेडियम जैसी फील आ रही है?
2: जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत।
1: देखिए हमारे पास ऑडियंस नहीं है वो वाला शेयर करने वाला। अच्छा ये बताएं हादिया कि आपकी कुछ और क्रिकेट के अलावा हॉबीज वगैरह हैं?
2: क्रिकेट के अलावा थोड़ा बहुत आर्ट में इंटरेस्ट है, मेरे घर में पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं।
1: और पिकासो टाइप की पेंटिंग है?
2: पिकासो के लेवल पे तो फिर मुश्किल ही है।
1: चल नहीं भाई, इतना भाई कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए। देखिए मैं जो हूँ ना और आगे का सोच रही हूँ, पिकासो से भी आगे का। अच्छा भाई ये बताएं कि मैंने आपकी उम्र सही बोली ना, 14 इयर्स। चलिए भाई ये बताएं कि ये जो क्रिकेट का शौक है, वैसे तो मैंने लड़कों में जुनून देखा है, कुछ हद तक मैंने लड़कियों में भी देखा है। मेरी अपनी बहन क्रिकेट टीम की जो है ना, नेशनल टीम की, पाकिस्तान में उसने खेला था, तो वो थी क्या कहते हैं कैप्टन। हाँ जी, तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे शौक चढ़ा, किससे इंस्पायर हुई है? भाई
2: मैं क्रिकेट पाकिस्तान में खेला करती थी बहुत, तो उधर भी मैं अपने स्कूल के टीम में खेला करती थी। और जैसे रोड पे खेलना मेरा जैसे स्ट्रीट में बाहर जाके सब मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके सब क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी कभार बॉल गाड़ी पे लग जाती, इस पर डांट पे पिटती थी, लेकिन खैर
1: वो बात छोड़ दें, पुरानी बातें छोड़ दें,
2: वो फास्ट में। मुझे इसकी इंस्पिरेशन बिल्कुल अपने मामू से आई होगी, वो बहुत खेला करते थे, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का, वो भी अपने दोस्तों के साथ जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए सब ये वो। तो उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे इंस्पायर किया, तो फिर जब भी वो जाते थे मैं उनको कहती थी मुझे भी लेके जाए, मैं भी खेलूंगी आपके साथ।
1: मामू के गले की घंटी जैसे इनको चलता था क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बताएं कि मतलब किस एज में आपने शुरू किया होगा, अंदाजन अगर आपको याद पड़ता है, होश वाली हो, तो किस एज में आपने शुरू किया था?
2: प्रोबेबली जब मैं 6-7 साल की थी।
1: अरे वाह, बहुत छोटी थी। अरे वाह गुड। अच्छा देखें ये मामू से इंस्पायर्ड होकर अम्मी ने कहा बेटा जाओ मेरी जान छोड़ो मामू के साथ, अम्मी को क्या पता ये वाकई में सीरियस ले लेंगी क्रिकेट को।
2: जी
1: इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक।
0: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स,

0: इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
1: अच्छा ये बताएं कि अम्मी अबू सपोर्ट करते हैं इस चीज को?
2: बिल्कुल.

0: अभी मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन भी बनी हूँ.
1: अरे वाह, नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड. अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसा फील याद है कि जब आपने, एक तो होता है ना नॉर्मली गली मोहल्ले में खेलना, एक होता है दूसरों के सामने खेलना, उसका प्रेशर कुछ और होता है. तो वो जब पहली दफा दूसरों के सामने खेला था तो क्या क्या फीलिंग थी?
0: बिल्कुल, बहुत थोड़ा बहुत डर था.

0: डिपेंड कर रही होती है।
1: सही सही। अच्छा आप की बातों से मुझे चल रहा है कि आप बैटिंग में अच्छी हैं, पता नहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है। आपको आपको खुद पर्सनली बैटिंग पसंद है कि बॉलिंग पसंद है?
0: मुझे पसंद तो बॉलिंग है।

0: बॉलिंग में प्रैक्टिस चाहिए होती है उसकी, थोड़े जो वेज होते हैं बॉलिंग करने के वो सब मुझे बहुत शौक है कि मैं सारे सीख।
1: अच्छा ये बताएं कि बीइंग एक पेट्रियोटिक होकर बात करते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको अपनी क्रिकेट टीम में कौन सा प्लेयर आप कहती हैं भाई मुझे ऐसा बनना है?
0: प्रोबेबली मैं सबसे ज्यादा नाम तो सुना ही बाबर आजम का है पाकिस्तान टीम से, तो आई वुड प्रोबेबली से हिम।
1: अच्छा सही
0: कैप्टन भी बन चुके हैं।
1: सही। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर औकात होता है ना स्कूल में भी कभी कभी ये चीज आ जाती है, और अक्सर औकात रिलेटिव्स में भी ये चीज देखी जाती है कि वो कह देते हैं कि भाई लड़कियां जो है ना क्रिकेट, लड़की कोई और स्पोर्ट ले लड़कियां, आपको ऐसे सुनने में आया है और आपने से कैसे डील किया उस चीज से जब ये फेज आता है ना, कोई ये फ्रेज आता है किसी से कि उसको बाउंसर कैसे मारेंगे आपके भाई, ये फ्रेज आए ना कि भाई लड़कियां ये गेम नहीं खेलती।
0: मेरी फैमिली में एक है, एक उनको बहुत शौक था

0: सही नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर आपको ये सवाल सुनने को मिले तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं, आप कैसे डील करती हैं इसको?
1: मैं उनको अपनी अचीवमेंट्स बता के बता सकती हूँ कि मैं आई कैन परस्यू दिस एंड ये मेरे लिए इट्स अ गुड थिंग फॉर मी. सो दे डोंट रियली हैव अ से इन व्हाट.
0: सही, मतलब वो बस ही चुप हो जाते हैं. सही,
1: जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं ये सब कर चुकी हूँ, इतना आगे मैं जा चुकी हूँ क्रिकेट में, ऑलरेडी क्रिकेट मुझे इतना आगे लेके जा चुका है, तो फिर वो और क्या कहे.
0: सही, चुप हो जाते हैं. मतलब चुप करना आता है लोगों को. अच्छा ये बताएं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर जाएं बाहर, अपनी अपनी पाकिस्तान टीम से बाहर निकल कर देखें, तो आपको कौन सा क्रिकेट प्लेयर जो है वो इंस्पायर करता है, कोई है या नहीं है? जैसे मैं कहूँ भाई, मैं एक ज़माने में जब क्रिकेट देखा करती थी तो मैंने तो शुरू से एक ही चीज़ थी मेरे दिमाग में, ब्रायन लारा. ओ भाई ब्रायन लारा, ओ भाई. पाकिस्तानी टीम में एक था हमारा शोएब अख्तर साहब, एक इमरान खान साहब, तो उनको देख देख कर ना वो एक हमारा तो एक अलग ही था. तो आपको अगर मैं इंटरनेशनल टीम में पूछूँ तो आपको कौन इंस्पायर करता था?
1: इंटरनेशनल टीम में सबसे ज्यादा आई वुड से हुलग रहा तब होता था जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा था, तो उसमें इंडियन टीम में मुझे विराट कोहली को देख के मुझे उसका आता था कि ये बहुत अच्छा.
0: ओके, अच्छा उनका फैशन सेंस भी बड़ा अच्छा सा है. ये भी एक बात है होता है, पर्सनैलिटी होती है. स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट

0: ये गेम्स को हम वीकेंड्स पे रखती हूँ और मैं स्कूल में भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ जब भी मुझे कोई फ्री जैसे आर्ट का लेसन मिल गया या पीई तो ऑफ कोर्स पीई मैं हमेशा अपना क्रिकेट करती हूँ और अभी हमारा टूर्नामेंट भी आने वाला है इसलिए अगर कोई लाइब्रेरी लेसन या कोई टीचर एब्सेंट हो तो हमेशा मैं ग्राउंड पे भाग जाती हूँ कि मैंने क्रिकेट प्रैक्टिस करनी है
1: इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक

0: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मोटिवेशन का राज क्या है। एक होता है ना भाई स्टडीज में मोटिवेशन का एक राज होता है, एक होता है नहीं भाई अपने पैशन को फॉलो करना, उसका एक अलग ही मोटिवेशन होता है, उसका एक अलग माइंडसेट होता है उसके लिए। तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती है करियर के पीछे भागने के लिए?
2: के मुझे नेशनल लेवल्स पे जाना है, मुझे नेशनल टीम में होना है।
1: ओके ओके गुड गुड गुड, इंसान को अपना माइंड क्लियर रखना चाहिए ना। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है कि बड़े होकर आपका शौक

0: है कि क्रिकेटर ही बनूं, मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है. गुड, विच इज गुड. इंसान को इतना तो अपने दिमाग में प्लान ए होना चाहिए कि मुझे ये करना है. प्लान बी क्या है?
1: प्लान बी, मैंने अपने सब्जेक्ट्स में साइंसेस लिया है, तो फिर उस डॉक्टर की.
0: अरे भाई वाह, अच्छा साइंस भी लिया हुआ है. ये भी मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो दिस इज टफ भाई, दिस इज टफ, दिस इज इंस्पायरिंग. ये नहीं कह सकता बच्चा कि भाई मैं साइंस ले रहा हूँ तो मैं बोरिंग इंसान हूँ. अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा, मैं मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत आती हैं, चाहे वो स्टडीज के पास से हो, चाहे वो गेम के लिहाज से हो. तो ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट कभी आई है कि जब आपने कहा नहीं भाई ये छोड़ो, मैं अब जो ना क्रिकेट छोड़ देती हूँ, छोड़ो जाने दो?
1: जी हुआ था एक बार, हम एक ही दिन में दो मैचेस हार गए थे, तो उसके बाद हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये तो हमने इतना बुरा कैसे खेल लिया, हमने तो सही से प्रैक्टिस ही नहीं की है वो. लेकिन उसके बाद हमने तो, लेकिन हमें टाइम बहुत कम मिला था उस ट्रेनिंग के लिए, और फिर भी हम लोग कुछ ही ओवर से हारे थे, तो फिर उससे हमने थोड़ी मोटिवेशन ली कि लाइक
0: देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट
1: टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम.
0: अच्छा एक बात बताएं, जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कोई एक पीस ऑफ एडवाइस होता है ना कि आप भाई किसी चीज में कोई एक एक एक आप बात कहना चाहें उनसे कि अच्छा ये चीज ऐसे कर लें या ये चीज ऐसे हो जाए, कोई एडवाइस?
1: Probably के obviously never give up, तो
0: good good
1: never
0: good,
1: give up.
0: ठीक है.
1: जैसे मैं भी साइंसेस लेके अपने क्रिकेट के पैशन दोनों को मैनेज कर रही हूँ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल.
0: चलें ठीक है, एक और मुझे मेन बात बताइएगा कि आपके लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एज अ क्रिकेटर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी, मैं आपसे पूछूं कि कोई कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना जो आप कहती हैं भाई उंगलियों पे इंसान गिनता है, ये चीजें होनी ही होनी चाहिए पॉजिटिव वे में, टू बी अ गुड क्रिकेटर, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप किन किन चीजों को वो करती हैं, पोल करती हैं कि भाई ये चीज होनी चाहिए?
1: डेडिकेशन, कमिटमेंट होनी चाहिए, और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी ऑफ कोर्स, स्केड्यूलिंग, आप कैसे अपने दोनों चीजों को मैनेज कर रहे हैं, पूरे स्टडीज को भी और एक्स्ट्रा करिकुलर को भी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि ऐसा ना हो कि आप एक चीज में बहुत सक्सीड कर रहे हैं लेकिन दूसरे में आप नीचे जा रहे हैं.
0: आपको बैलेंस करना पड़ता है और वो बैलेंस आपको खुद ढूंढना पड़ता है.
1: जी
0: अच्छा, ये बताइएगा कि कभी कोई ट्रॉफी वगैरह जीती है टूर्नामेंट में?
1: जी हमने कतर के आई थिंक ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स या बहुत सारे स्कूल्स थे, तो उसमें हम लोग सेकंड आए थे.
0: वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि कभी टीवी या न्यूज़पेपर वगैरह में अपना नाम देखा है अभी तक?
1: मैं पहले भी एक रेडियो सेशन में गई हुई हूँ. तो
0: अरे वाह, सेलिब्रिटी चल रही है. अच्छा लगा आपको?
1: जी,
0: इट गिव्स यू मोटिवेशन,
1: न्यू एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस के लिए भी ज्यादा वो था.
0: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड. ठीक है भाई, और आपका तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आप भी एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे भाई, हम छोटी मोटी बातें नहीं करते. अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर आपको T20 में खेलने का मौका दे दिया जाए तो आपको क्या लगता है कितना स्कोर करेंगी? सच सच बताना, सच सच आपको लगता है कितना स्कोर कर जाएंगी? जितना इंसान को खुद पता होता है ना अपना, उतना किसी मैचेस देखती है ना, देखती है ठीक है, तो कभी कभी हमारे मुंह से निकलता है ना, अरे भाई मैं होता ना तो मैं तो वैसे ही इतना स्कोर कर लेता है, तो बच्चों की तरह खेल रहे हैं. तो आपको क्या लगता है उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है कि अगर मैं होती ना मैं इतना स्कोर कर जाती थी?
1: T20 में 20 ओवर्स में 200 रन तो बनते ही हैं, ये इतना स्कोर तो बनता ही
0: 200
1: है, इतना तो 20 ओवर्स में इतनी सारी बॉलों में बनता ही है.
0: चलो भाई आई बैक आउट, मैं तो वो शख्स हूँ जो पहली बॉल में आउट हो जाता है. बड़ी कोशिश की है मैंने क्रिकेट खेलने की लेकिन ना भाई मुझसे ना हो पाया. अच्छा भाई ये बताइएगा कि क्रिकेट के अलावा कोई और फेवरेट गेम है आपकी?
1: फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का भी मुझे बहुत शौक है, वॉलीबॉल का भी शौक है मुझे, फुटबॉल भी मैं बहुत खेला करती थी अपने दोस्तों के साथ.
0: मतलब मल्टीपल गेम्स खेलने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चाहिए.
1: और बैडमिंटन में भी मैं अपनी पूरी क्लास के साथ कॉम्पिटिशन में सेकेंड फर्स्ट आई थी.
0: चलिए भाई हादी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आई, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना टाइम दिया. उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह किसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे आपको देखें और खुश हों कि भाई फाइनली शी अचीव्ड इट. तो भाई हमारी तरफ से हम स्टूडियो से चाह रहे हैं इजाज़त, और हम दुआ करते हैं कि बाकी जितने बच्चे अगर उनके आंखों में कोई ख्वाब है तो वो भी पूरा हो. साथ ही याद रखें कि

0: बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल करें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता। मी साइनिंग आउट और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और अचीवर को लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स,
3: स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स,
2: जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
4: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
6: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से
7: FM 107
6: पर दोहा वाले कबीर के साथ।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: News at 7 PM only on FM 107 Dil Se Desi।
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का जम्हूरिया तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर दाखला और दाखला सिक्योरिटी फोर्स लखवियों के कमांडर ने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रांसीसी वज़ीर दाखला से मुलाकात की। नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस हलाकतों की तादाद 633 तक पहुंच गई है जबकि 3000 अफराद ताहल लापता हैं। गजा की पट्टी के तिब्बी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 10 शहदा और 18 जख्मियों को मुंतकिल किया गया। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ और अब समाप्त कीजिए मुफस्सल नशरिया।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां हर रोज की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास होता है, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सब को एक दूसरे के और भी करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी, और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं जो उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तालीम, करियर और

0: किया है। आपका नाम मुसीफा सकीना है और आपका ताल्लुक भटकल कर्नाटका इंडिया से है और इन्होंने अपनी तालीम मैसूर से हासिल की है। बैचलर ऑफ कॉमर्स मुकम्मल करने के बाद इन्होंने टीचिंग के शोबे से अपने प्रोफेशनल सफर का आगाज किया। 2016 में शादी के बाद कतर तशरीफ ले आई और यहाँ तालीम और एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ इदारों में काम किया। चंद साल अपनी फैमिली को वक्फ करने के बाद इन्होंने दोबारा प्रोफेशनल जिंदगी शुरू की और आजकल हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में सेक्रेटरी टू द चीफ ऑफ मेडिसिन एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ मुसीफा साहिबा को कंटेंट क्रिएशन का भी शौक है, जहां वो सोशल मीडिया पर फूड रिव्यूज, व्लॉग्स और अपने तजुर्बात जो है उनको शेयर करती रहती हैं। तो आइए दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। मुसीफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसी हैं आप? खैरियत से हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह। आप
0: सुनाएं,
1: आप कैसे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आज आपने थोड़ा वक्त निकाला हमारे लिए।
1: ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने आप के जरिए किसी और को भी इंस्पायर करूं और मैं अपने आप में भी यू नो खुशनसीब समझती हूं कि मुझे ये मौका मिला।
0: थैंक यू सो मच। तो आइए अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं वक्त जाया करे बगैर और जो सवाल जवाब का हमारा सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगी?
1: अगर 3 अल्फाज में बयान करना है तो मैं कहूंगी मेहनती, पॉजिटिव और कंपैशनेट कहूंगी, क्योंकि जो भी मैं करती हूँ दिल से करती हूँ और हर दिन यही कोशिश करती हूँ कि कुछ नया सीखूं।
0: क्या बात है भाई। आज अगर कोई आपसे पूछे कि दोहा आपके लिए क्या है तो आप क्या कहेंगी?
1: दोहा मेरे लिए सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि ये मेरा दूसरा घर है। यहाँ मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, मेरी फैमिली बनी है और यहाँ मैंने अपने सपनों को दोबारा जीना शुरू किया है।
0: क्या बात है भाई। दोहा में आपके लिए एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन जो है वो कैसा होता है?
1: ऑफ कोर्स वीकेंड्स फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कहीं ब्रेकफास्ट पे गए एंड ये विंटर्स में बीच या फिर पार्क का चक्कर लगाया और फिर दिन के एंड पे किसी अच्छी जगह पे डिनर। तो यही जो छोटे छोटे सिंपल मोमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिलैक्सिंग होते हैं।
0: क्या बात है। अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं तो इनके हवाले से कुछ प्रोग्राम रहता है?

0: को बिजी रखते हैं ताकि अच्छे से वीकेंड भी गुजरे, बोर भी ना हो.
1: क्या बात है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है. और लेजर टाइम जो है अपनों के साथ ही गुजारा जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं और आपको और करीब से जानने की कोशिश भी करते हैं.
0: इंशाल्लाह.
1: आपकी पैदाइश भटकल कर्नाटका में हुई और तालीम मैसूर में. इस सफर को तय करने में कोई मसला हुआ?
0: हर शहर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है. जैसे भटकल ने वैल्यूज दी, मैसूर ने एजुकेशन और कॉन्फिडेंस दिया. चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स आए, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत बनाया.
1: ओके. तो ये जो स्विच था या एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी हुई आपको?
0: नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जब छोटी थी तभी हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई थी मैसूर. सो इन दैट वे नहीं.
1: ओके. ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग प्रोफेशन का इंतखाब कैसे किया गया या कैसे हुआ?
0: एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं जब बचपन से ही मेरा ख्वाब था कि मैं टीचर बनूं. और जब भी मैं स्कूल से आती थी तो मैं इमीडिएटली अपने बैकयार्ड में जाती थी और लिटरली पौधों को पढ़ाती थी. मुझे नॉलेज शेयर करना बड़ा पसंद था. तो फिर यही बच्चों के साथ भी रहना मुझे बहुत पसंद था. तो शायद इसलिए टीचिंग नेचुरली मेरी पहली चॉइस बनी.
1: शादी के बाद 2016 में आप दोहा तशरीफ ले आईं. ये फैसला कैसा था या कितना मुश्किल था?
0: एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा डर भी था, क्योंकि नया मुल्क, नई जिंदगी और नई जिम्मेदारियां. लेकिन मुझे ये यकीन था कि यहाँ एक अच्छी शुरुआत होगी.
1: क्या बात है भाई, अच्छी शुरुआत होगी. और क्योंकि हमारा मुल्क दोहा है ही इतना खूबसूरत और हर किसी के लिए सब कुछ है, तो आसानियां अपने आप पैदा होती चली जाती हैं. ये इसमें ये बताएं कि भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दोहा का पहला इम्प्रेशन आपके लिए क्या था और कैसा लगा?
0: जैसे मैं एयरपोर्ट से निकली, मुझे लाइक टू बी

0: ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल लगा, इसे देखकर मैं काफी इंप्रेस्ड हुई थी।
1: और वो कैसा इंप्रेशन था पहला इन सारी चीजों के साथ साथ?
0: इट वाज लाइक क्या बोलते हैं, अच्छा था।
1: आप पहली बार मिडिल ईस्ट तशरीफ लाई थी या इससे पहले जाना हुआ था किसी और मुल्क में?
0: नहीं नहीं, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम।
1: हाँ ओके। शुरू के दिनों में एक नए मुल्क और एक नए कल्चर में एडजस्ट करना कैसा रहा?
0: शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को समझा, कल्चर को अपनाया और फिर दोहा मेरी अपनी जगह बन गई।
1: तो यहाँ पर कोई और ऐसी बात जो शेयर करना चाहती हैं? भाई नया मुल्क, नए कल्चर, और जैसा कि हमारा कतर जो है कल्चर के हिसाब से अगर बात करें तो अपनी रूट से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि हर
0: जी इसीलिए उतनी डिफिकल्टीज नहीं हुई, आसान था। बट थोड़े वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इट वाज इजी, बट मुश्किल नहीं था।
1: ऑलराइट, क्या कभी आपने सोचा कि ये डिसीजन सही है या नहीं?
0: कभी कभी मुश्किल वक्त में ऐसा जरूर लगा, लेकिन जब आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि ये मेरे जिंदगी के बेहतरीन डिसीजंस में से एक है।
1: ओके, जान सकता हूँ इसमें क्यों ऐसा लगता है आपको, कोई वजह खास इसके पीछे?
0: हम अपनी फैमिली से दूर आ रहे होते हैं, से वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वहाँ और यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली को मिस कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल अलग दुनिया है, बट नॉट एवरी टाइम, कभी कभी।
1: ऑलराइट, हर किसी की जिंदगी में कुछ सख्त दिन आते हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, और फिर उसके हिसाब से आपने अपना करियर भी फॉलो करना होता है, मदरहुड का भी मसला होता है, अगर नौकरी सामने हो तो उसको मसला ही कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है और फिर वो ब्रेक लेना और उससे कमबैक करना। तो दोहा में नर्सरी टीचर के तौर पर करियर शुरू करना कैसा तजुर्बा था आपके लिए?
0: जैसे मैंने कहा कि मुझे बच्चों के बच्चे बहुत पसंद है, तो बच्चों के साथ काम करना बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, उनकी मासूमियत और प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
1: क्या बात है भाई, टीचिंग से ऑफिस सेक्रेटरी तक का सफर कैसे तय हुआ और क्या इसके पीछे वजह थी?
0: मैं हमेशा नए स्किल्स सीखना चाहती थी, अभी भी चाहती हूँ, कुछ भी नई अपॉर्चुनिटीज आए तो मैं उसको एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ। इट्स नॉट जस्ट के मैं अपने कम्फर्ट जोन पे रहूँ, मुझे कम्फर्ट जोन से आगे जाना पसंद है, तो इसी वजह से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैंने अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और अभी धीरे धीरे ग्रो भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो ये जो स्विच था, इसमें आपने कोई परेशानी महसूस की?
0: नहीं नहीं, इट वाज एक्चुअली इजी फॉर मी, उतना कुछ वो नहीं था। हाँ ये था कि मैंने टीचिंग छोड़ दिया, वो थोड़ा बुरा लगा कि मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद था, बट फिर जब मैंने अपना स्विच किया वहाँ पे भी बच्चे ही थे क्योंकि मैंने स्कूल में ही काम किया, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट।
1: ऑलराइट, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सरवर मिर्जा आपके साथ, बस मैं यूं गया और यूं वापस आया, देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: Absolute cinema.
4: ये है वो रिएक्शन के लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
7: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
8: माहिरीन की राय पर।
7: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
8: हेल्थ गाइड,
7: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
8: इलाज और एहतियात तक।
7: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
8: दिल से देसी,
7: याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: लाइक इमोशनली एंड लाइक जैसे एक माँ अपने बच्चों को छोड़ के जाती है तो वो कभी नहीं वो कर सकती राइट कि कैसे मेरे पीछे मेरे बच्चे कैसे रहेंगे उनका कैसा होगा. लेकिन कॉन्फिडेंस सपोर्ट जो मुझे मिला है अपनी फैमिली के थ्रू फ्रेंड्स के थ्रू और जो मेरी मेहनत उस वजह से मैंने अपनी दोबारा पहचान बना सकी हूँ.
1: क्या बात है भाई. मेडिकल कॉर्पोरेशन में आज क्या रोल आपके लिए कितना खास है और क्यों क्यों ये जरूरी है थोड़ा हमें बताएं.
0: ये मेरे लिए सिर्फ एक जॉब ही नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे फख्र है कि मैं एक हेल्थ केयर सेक्टर का हिस्सा हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के साथ मैं काम करती हूँ. ये अपने आप में एक फख्र की बात है.
1: तो आपने कभी अपना कोई डिपार्टमेंट चेंज भी किया है, मतलब अगर मेडिकल के हवाले से ही बात करें कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी कभी काम किया है, ऐसा का हुआ है?
0: नहीं, मैं पूरा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन संभालती हूँ. इसमें डिफरेंट सब डिविजन है, लाइक 13 डिपार्टमेंट संभालती हूँ.
1: ओके, तो थोड़ा सा
0: तो इट्स अ ह्यूज,
1: उसमें मतलब वक्त ज्यादा लगता होगा ऑब्वियसली.
0: या क्योंकि स्टार्टिंग तो उतना नहीं था बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई एंड इन अ वे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड ये मैं कहती हूँ कि ये मुझे अपने आप को बिजी भी रखता है.
1: ओके, तो मुसीफा जी ये बताइए क्या किसी स्टूडेंट या कलीग या पेशेंट ने आपकी जिंदगी पर कोई गहरा असर डाला?
0: जी हाँ, बहुत से लोगों ने मेरी जिंदगी पर अपना असर छोड़ा है. टीचिंग के दौरान जब कोई स्टूडेंट सालों बाद मुझे याद करता है, ये कहता है कि मैम आप पे मैंने सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन भी सीखा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है. एंड आज जब भी कोई कलीग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करता है या कहता है कि मेरी वजह से उनका काम आसान हुआ तो दिल से लाइक दिल को सुकून मिलता है. एंड मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हम जिंदगी में लोगों को सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि अपने रवैये या इंसानियत से भी याद रहना है. अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए या फिर उनका दिन थोड़ा भी बेहतर हो जाए तो मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत काम आई.
1: क्या बात है भाई. फैमिली और काम, इसने आपकी सोच और प्रायोरिटीज को किस तरह बदला है?
0: मदर बनने के बाद मेरी सोच जो है पूरी तरह से बदल गई. पहले मैं ये समझती थी कि करियर मेरे लिए प्रायोरिटी है लेकिन जब बेटियां पैदा हुई तो मैंने समझा कि जिंदगी सिर्फ एक प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के नाम नहीं है. फैमिली के साथ वक्त गुजारना या फिर बच्चों की परवरिश और उनके हर छोटे लम्हे का हिस्सा बनना भी उतना ही जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सपने छोड़ दिए बल्कि मैंने सीखा है कि बैलेंस कैसे किया जाता है. आज मैं हर रोल को एक इक्वली इम्पोर्टेंट समझती हूँ. एक माँ हो या फिर एक वाइफ, एक एम्प्लॉई और अभी जो कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ. मैं ये भी मानती हूँ कि जब अगर घर पे सुकून होता है तभी हम इंसान जो है अपने करियर में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं.
1: कंटेंट क्रिएशन के हवाले से आपने बात करी तो ये इसको शुरू करने का ख्याल आपको कैसे आया?
0: कंटेंट क्रिएशन सच कहूँ तो कभी प्लानिंग के साथ शुरू नहीं हुआ. Okay. बस ये था कि मुझे हमेशा से वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करना बहुत पसंद था, मेमोरीज को कैप्चर करना और अपनी लाइक एवरीडे लाइफ को क्रिएटिव तरीके से रिकॉर्ड करना बहुत ही पसंद था. तो जस्ट लाइक दिसंबर से मैंने अपनी ये सोच को ये सोचा कि ये मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए. इसी तरह इंस्टाग्राम पेज शुरू किया तो आज मैं फूड रिव्यूज करती हूँ, लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाती हूँ, कभी कभी मोटिवेशनल कोट्स भी शेयर करती हूँ और फिर कभी अपने दिल की बातें भी शेयर करती हूँ.
1: ओके.
0: तो मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन सिर्फ क्या कहते हैं व्यूज या फॉलोअर्स का नाम नहीं है, ये मेरी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन वर्जन है ऐसे कह सकती हूँ. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं लोगों को कनेक्ट कर सकती हूँ और अगर मेरी एक वीडियो भी किसी का दिन बेहतर बनाए या फिर मोटिवेट करे तो मुझे लगता है कि ये मेरा मकसद पूरा हो गया है.
1: क्या बात है. इसमें और

0: ये जानना चाहता हूँ कि इन मुख्तलिफ चीजों में सबसे अच्छा आपको खुद क्या लगता है, फूड रिव्यू करना या दूसरी चीज?
1: मुझे ऑनेस्टली हर तरह का कंटेंट बनाना पसंद है, क्योंकि हर फॉर्मेट मेरी पर्सनालिटी का एक अलग हिस्सा दिखाता है. लेकिन अगर आप किसी एक चीज को चूज करनी है तो मुझे लाइफस्टाइल व्लॉग्स और ये जो मोटिवेशनल कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे अपनी रियल लाइफ के मोमेंट्स और फैमिली आउटिंग हो या ट्रैवल हो या फिर सिंपल एवरीडे एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है. और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती. कभी कभी एक कप कॉफी या फिर फैमिली ड्राइव या फिर एक छोटी सी अचीवमेंट में भी बहुत खास होती है. एंड और जब मैं कोट्स या फिर लाइफ लेसन शेयर करती हूँ तो वो मेरी अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस इंस्पायर होते हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग जब मेरे वीडियोस देखें, रील्स को देखें, वो रिलेट करें और उन्हें पॉजिटिविटी के साथ महसूस हो.
0: वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है. तकरीबन अब आपको 10 साल दोहा में हो गए हैं माशाल्लाह.
1: और अल्हम्दुलिल्लाह
0: हमारा दोहा जगह ही ऐसी है कि एक बार कोई आ जाए तो फिर जाने और छोड़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ सबके लिए सब कुछ है और बहुत कुछ है, ये हम सभी जानते हैं. तो दोहा की कौन सी जगह आपकी फेवरेट है, अगर मैं जानना चाहूँ फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए या दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए, क्या कहना चाहती हैं?
1: दोहा की फेवरेट जगह, दोहा में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अगर फेवरेट्स की बात करूं तो कतारा है, पर्ल है, बीचेस हैं यहाँ पे माशाल्लाह, और कॉर्निश मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ इवनिंग वॉक्स या फिर बीच के पास बैठना, बारबेक्यू या फिर सनसेट देखना बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है. दोहा कि एक बात मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कि यहाँ हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है. बच्चों के लिए पार्क्स है, फैमिलीज के लिए ब्यूटीफुल लाइक पब्लिक स्पेसेस है, और वीकेंड एक नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. मेरे लिए सिर्फ आउटिंग ही नहीं, ये मेमोरीज बनाना और वक्त अच्छा गुजारना होता है.
0: क्या बात है भाई. आपने दोहा में अपना सोशल सर्किल कह लें या दोस्त कैसे बनाए? जिम्मेदारियां हैं, काम अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, बट वहीं हमें जरूरत पड़ती है कि अपना लेजर टाइम जो है वो किसी ना किसी के साथ गुजारें, उनके साथ बैठें, मिलें, बात करें. तो आपने दोहा में अपना सोशल सर्किल और दोस्त किस तरह बनाए?
1: जब मैं पहली बार दोहा आई तो नेचुरली किसी को नहीं जानती थी. जो भी थे मेरे अपने कजिन्स थे या फिर मेरी बहन थी, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी. फिर धीरे धीरे वर्क प्लेस की कोलीग्स के साथ दोस्ती हुई. फिर थोड़े जो स्कूल के पेरेंट्स थे या फिर कम्युनिटी इवेंट्स थे, और फिर अब जो सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं. मुझे लगता है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ मिलना काफी नहीं होता, उन्हें निभाने के लिए सिंसियरिटी और रिस्पेक्ट भी जरूरी है. आज दोहा में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो फैमिली की तरह बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है.
0: बिल्कुल, ये किसी नेमत से कम नहीं जब दूसरे मुल्क में हों और साथ में ख्याल करने वाले मौजूद हों जो हर अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़े होते हैं. इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या बात हो सकती है, और इससे ज्यादा हम क्या ही मांग सकते हैं. वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपको दिल से खुश किया या इमोशनल किया, या कुछ ऐसी याद आप अपने प्रोफेशन के हवाले से या पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ शेयर करना चाहती हैं इसके ऊपर?
1: मेरी जिंदगी का सबसे इमोशनल और प्राउड मोमेंट वो था जब मैंने अपने करियर ब्रेक के बाद HMC ज्वाइन किया. वहाँ जब जॉब मिली, 3 साल से ज्यादा घर पर रहने के बाद दोबारा प्रोफेशनल लाइफ शुरू करना आसान नहीं था मेरे लिए. तो मुझे अपने आप पर दोबारा यकीन बनाना था.

0: और दुआओं के साथ मेहनत करते रहे तो अल्लाह जरूर बेहतरीन वक्त लाता है।
1: सुभान अल्लाह, बिल्कुल सच्ची बात है। और लगन और मेहनत और कोशिश और दुआ हमेशा करते रहना चाहिए। बड़ी प्यारी बात कही आपने। अगर आप अपने दोहा के सफर को एक क्रिएटिव टाइटल दें तो वो क्या होगा? कंटेंट क्रिएशन आप करती हैं, प्रोफेशनली आप स्ट्रॉन्ग हैं, फैमिली में भी माशाल्लाह टाइम गुजारती हैं, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपने दोहा के सफर को एक क्रिएटिव टाइटल दें तो वो क्या होगा?
0: मैं अपने सफर का टाइटल रखूंगी ड्रीम्स दुआ एंड डिटरमिनेशन माई दोहा जर्नी, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये सफर सिर्फ करियर का नहीं था, इसमें नए सपने थे, बहुत सी दुआएं थी, चैलेंजेस भी थे और उन सब को मेहनत और डिटरमिनेशन के साथ प्यार करने की कहानी भी थी। और फिर दोहा ने मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए बल्कि मुझे एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाया है।
1: बिल्कुल, और ये हम सभी के साथ है जो दोहा में रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ फाइनल क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं। दोहा को अगर आप एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगा?
0: अपॉर्चुनिटी।
1: वाह वाह वाह, चलिए इसके पीछे क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ शायद इस वजह से दोहा में रहते हुए।
0: जी, क्योंकि शहर ने दोहा ने मुझे सिर्फ लाइक हर दफा एक नई शुरुआत का मौका दिया, चाहे वो टीचिंग हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या कंटेंट क्रिएशन। सो आई वुड से अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है, हर किसी की जिंदगी जिस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं वैसे गुजरती है। हाँ, हमारी अपनी कोशिश रहती है कि शायद हम इस तरह गुजारें, फिर हम उठते हैं, गिरते हैं, अल्लाह ताला से फिर मांगते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये इसके इर्द गिर्द कोशिश और कामयाबी के इर्द गिर्द ही हमारी जिंदगी घूमती रहती है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मगर वहीं जब कोशिश करना रुक जाए तो फिर परेशानी का सबब बनती है जिंदगी भी। तो अगर आप अपने 2016 वाले खुद को कुछ मशवरा देना चाहें, आप यहाँ तशरीफ 2016 में लाई, फैमिली के साथ फिर प्रोफेशनल करियर का भी आगाज हुआ, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आप अपने आप को कुछ मशवरा देना चाहें तो वो क्या होता, शायद इससे कुछ बेहतरी के लिए, शायद जो आपने आज तक यहाँ सीखा है इसमें कुछ बेहतरी के लिए?
0: मैं अगर 2016 की मुसीफा को कहना चाहती हूँ तो यह है कि खुद पर भरोसा रखो, और चैलेंजेस तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं मजबूत बनाने के लिए आएगा। सब्र करो और सीखते रहो, कभी अपने सपनों को मत छोड़ो और अल्लाह के प्लान को हमेशा तुम्हारे प्लान से बेहतर समझो।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई। चलिए, तो जो वर्किंग मदर्स या यंग लेडीज शादी के बाद दोहा तशरीफ ला रही हैं और जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, माशाल्लाह दूर दूर से हमसे लोग कनेक्टेड हैं और इस वक्त आपकी बात भी सुन रहे हैं, आपकी कहानी सुन रहे हैं, आपसे खुद को रिलेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या कहना चाहती हैं, उनको क्या सीख देना चाहती हैं?
0: मैं उन सबसे यही कहूंगी कि शादी या मदरहुड कभी भी आपके सपनों को एंड नहीं हो, लाइक नहीं होता। जिंदगी का हर फेज अपनी ब्यूटी लेकर आता है और हो सकता है कुछ अरसे के लिए आपको करियर से ब्रेक लेना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अपने स्किल्स को अपडेट रखिए, सीखना मत छोड़िए और फिर सबसे जरूरी बात, खुद पर यकीन रखिए। और हर औरत जो है अपनी कहानी की एक हीरो होती है।
1: क्या बात है भाई, करियर, फैमिली और अपने शौक को बैलेंस करने का आपका जो फॉर्मूला है, जो नुस्खा है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। माशाल्लाह इतनी ज्यादा आप एक्टिव रहती हैं, इतनी ज्यादा आप चीजों में मुब्तला हैं और बीइंग अ मदर, तो ये इसका क्या फॉर्मूला है थोड़ा बताइए और किस तरीके से आप मैनेज करती हैं इसको?
0: मेरे लिए बैलेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है बल्कि प्रायोरिटीज को समझना है। मैं प्लानिंग करती हूँ, फिर अपना जो स्केड्यूल है मैनेज करती हूँ और हर रोल को उसका हक देने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिन फैमिली को वक्त ज्यादा देना पड़ता है, कुछ दिन ऑफिस को और कुछ दिन कंटेंट क्रिएशन को। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम खुद को

0: और अपनी मेंटल पीस का भी ख्याल रखे तो हम हर रोल और भी बेहतर तरीके से निभा सकते हैं।
1: क्या बात है। इसी से मुतालिक एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है जो आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्योंकि इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि लोग हमसे कनेक्टेड हैं और अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, तो फैमिली के हवाले से अगर मैं बात करूं कि हर किसी की जिंदगी में फैमिली का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, भले ही वो वालदेन हो या, और अगर मैं लेडीज की बात करूं तो फिर हस्बैंड हो, फिर उसके आगे फैमिली एक्सटेंड होती रहती है। तो आपकी फैमिली का, आपके वालदेन का, के शोहर का यहाँ आने के बाद कितना सपोर्ट रहा है, क्योंकि उसके उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है, ये हम सब जानते हैं, तो उनका कितना इसके अंदर सपोर्ट रहा है, क्या उन्होंने सपोर्ट किया है, और शुरुआत से अगर मैं जानना चाहूँ तो वालदेन ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं।
0: जी अगर वालदेन की बात आई तो जब मैंने अपने ब्रेक के बाद जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो क्या वो मेरे बच्चों को संभाल रहे थे उस हवाले से उन्होंने बहुत बहुत ही ज्यादा, हालांकि मेरे पापा इंडिया में थे और मेरी मामा उनको छोड़ के आना पड़ा, तो उस चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि मेरी मामा यहाँ आई और मेरे एब्सेंस में मेरे बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखा। सो या एंड इन अ वे मेरे हस्बैंड भी अच्छे सपोर्टिव थे। जब मैंने अपना करियर वापस से शुरू किया तो उन्होंने ऐसा अपना ड्यूटी भी ऐसा स्केड्यूल किया कि मॉर्निंग मैं जा सकूं, फिर वो आफ्टरनून शिफ्ट लेते थे या फिर नाइट शिफ्ट, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला है।
1: जब ही आप माशाल्लाह इस कामयाबी पे हैं और बगैर फैमिली की सपोर्ट के वाकई कुछ मुमकिन ही नहीं होता। आखिर में मुशीफा जी ये जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगी, दोहा ने आपको ज्यादा बदला या आपने दोहा को बदलने की कोशिश की है?
0: मैं यकीन से कहूंगी कि दोहा ने मुझे ज्यादा बदला है। जब मैं यहाँ आई थी मैं सिर्फ एक यंग टीचर थी, आज मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एक माँ हूँ और फिर एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और सबसे ज्यादा बढ़कर एक कॉन्फिडेंट और मैच्योर इंसान हूँ। इस शहर ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी है, मुझे गिरकर उतना सिखाया है और मुझे अपनी पहचान बनाने का एक हौसला दिया। और अगर मेरी जर्नी किसी एक इंसान को भी इंस्पायर करे कर सकती है तो वो क्या कहते हैं, कभी अपने सपनों से हार ना माने तो मुझे लगेगा कि मैंने भी दोहा को अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा दिया है।
1: वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा मुसीफा आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी और अपने जज्बात और अपनी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ इससे सीखा होगा, हासिल हुआ होगा और मोटिवेट हुए होंगे इंशाल्लाह ताला कि उनके साथ भी इसी तरीके से आगे खैर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: यू आर वेलकम।
1: तो दोस्तों ये थी मुसीफा सकीना हमारे साथ, जिन्होंने अपनी कहानी, अपनी जिंदगी के वो मराहिल, अपनी जिंदगी की परेशानियां हमारे साथ शेयर करते हुए ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया इन सारी चीज़ों को। और परेशानियां कहने का मकसद ये है कि वो जो चैलेंजेस लाइफ के हैं उन पे इन्होंने काम किया और किस तरीके से फैमिली की सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट, कलीग्स की सपोर्ट, और वो पूरी कहानी वो लुब लुबाब जब कहना चाहिए जब सामने आया तो पता चला कि किस तरीके से कामयाबी आपके पीछे भागती है जब हम मेहनत करते रहते हैं। तो आप सब से भी बस इतना ही कहना है कि जिंदगी के हर सफर में और हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर ही नहीं लिखता, कहानी आप लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए, सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और

0: कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।
2: मेरे लिए ट्रम्पेट बजने चाहिए इस शो में, तो भाई तिरकधात नहीं, तिरकधात तो ट्रम्पेट नहीं हुआ। एनीवे यू गेट द आइडिया राइट, थोड़ा सा वेलकम शेलकम होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये शो है और बहुत ही इलेक्ट्रिफाइंग ऑक्टिव एनर्जी निकलती है भारी भारी शब्दों के साथ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। देखो जी, टॉप 10 का मसला इतना है कि आपके बिना ये शो मुमकिन नहीं है, और आपके पास जो है हमारी इंटरनल जनता भी आती है। जो हमारे ऑफिस में डिस्कशन होता है, लिटरली ऐसा होता है कि पता नहीं कोई सा बिल पास करने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल वैसी बातें होती हैं, कौन सा गाना क्या है, कहाँ पे आना चाहिए, और ये गाना तो मुझे लगता है फिर नंबर 1 पे आना चाहिए, फिर कोई कह देगा ना जी ना ये नंबर 1 पे को नहीं है, फिर नीचे से लिस्ट को जो हम शुरू करते हैं बताना, तो साथ साथ मेरी भी दिल की धड़कन तेज हो रही होती है, बिकॉज आई नो के

कुछ लोगों का जो गाना फेवरेट हो सकता है वो हो सकता है कि नंबर वन पे ना हो के नंबर पांच छह पे हो, बट इट इज ऑल अबाउट द शो. सो हो सकता है जो गाना अभी 10 से शुरू हो रहा हो वो आगे जाके नंबर वन पे पहुंच जाए, यू नेवर नो. ये सारी की सारी लिस्ट में जितने भी गाने हैं आज से जितने भी शोज हुए हैं दे आर बेस्ड ऑन यूट्यूब व्यूज, स्ट्रीम लाइंस, जितने भी स्ट्रीमिंग पे चलते हैं गाने, और इसके बाद इसकी रिप्लेबिलिटी और इसके हुक का या फिर किसी पोर्शन का फेमस हो जाना, वायरल हो जाना या फिर डांस स्टेप, बहुत सारी चीजें हैं जो एक गाने को लिस्ट में बना के रखती हैं. एंड आज की लिस्ट भी तैयार है. तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, हमसे जरूर जरूर जुड़े रहिएगा. एंड लेट्स बिगिन. तो हम लेडर चढ़ते हैं वैसे ही 10, 9, 8, 7 और फिर विल गो फर्दर अप टूवर्ड्स द टॉप ट्रैक ऑफ द वीक. तो शुरू करेंगे नंबर 10 से. नंबर 10 पे है बूहे बारियां. ये गाना भाई, ये गाना ऊपर जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गाना ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा. आदित्य रिखारी जो साहब हैं उनका कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो एकदम से हिट हो के एकदम से नंबर वन हो जाए, मगर इवेंचुअली ये गाना ऊपर जाता है और वायरल जरूर होता है. रोजा कोहली के साथ इस बार उन्होंने काम किया है, रोशनी वाले भी हैं उनके साथ में. गाना जो है बूहे बारियां, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक. द सॉन्ग हैज अ स्टोरी लाइन और स्टोरी लाइन के साथ साथ जो वीडियो है वो बेहद खूबसूरत है. जो बूहे बारियां है उसकी एक जो जो क्या कहते हैं उसको, हुक को कैसे समझाऊं मैं, रिप्लेबिलिटी है, मतलब आप सुनेंगे तो आपके जहन में अटक जाएगा इस गाने का हुक. ये वैसा गाना है, कुछ लाइंस है जो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बोलेंगे यार ये क्या बात लिखी है, क्या बात लिखी है. तो लिरिकली भी विजुअली भी ये गाना एक नंबर है. और ऊपर से देखते रिखारी का जो गाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है और बड़ा ही कमाल का है. उनकी वॉइस का टेक्सचर, क्योंकि मैं इस आवाज़ की दुनिया में कहीं ना कहीं अपने आप को सिटीजन मानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ पे जज करने का थोड़ा तो मुझे हक है. तो उस थोड़े से हक से मैं यही मानता हूँ कि आदित्य की जो आवाज़ है वो एक ऐसा टेक्सचर है जो अगर 10 लोग भी ट्राई करना चाहें तो कॉपी नहीं कर पाएंगे. इट्स अ वेरी डिस्टिंग्विश आवाज़ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. सो गाना नंबर 10 है बूहे बारियां, आदित्य रिखारी ऑफ कोर्स विद रोचक कोहली एंड रोशनी वालिया. सुन के देखिए. ऑलराइट, अब गाना नंबर 9 की बारी है. गाना नंबर 9, ये गाना जो है अचानक से बीच में आया है, बीच में आके पूरी लिस्ट को हिला के रख दिया है. ये गाना जिस मूवी का है, जिस एक्टर का है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं एंड अब तो जग जाहिर है मैं इनका फैन हूं, इमरान हाशमी. आवारापन 2 रिलीज हुई, ये गाना रिलीज नहीं हुआ था मूवी से पहले, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, नथिंग वाज हैपनिंग, एंड देन गाना धीरे धीरे सुनने में आया. इट वाज आई थिंक इन द ट्रेलर और समथिंग, शायद ऑडियो रिलीज हुआ था, कुछ तो हुआ था, बट इट वाज राइट बिफोर द रिलीज, आई थिंक एक दिन पहले. फिर उसके बाद जब मैंने मूवी में इस गाने की पोजिशनिंग देखी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि गाना मूवी में आ कब रहा है. ऐसा तो नहीं है कि हीरो हीरोइन जो है वो रोमांस कर रहे हैं, अचानक से वो गाना चला और उन्हें सीधा पहाड़ों पे ले गए, क्योंकि वो बड़ा ऑड लगता है. बट द पोजिशनिंग ऑफ द ट्रैक वो बहुत परफेक्ट है. आवारापन 2 में ये गाना ऐसी जगह पे आता है जहां पे इसके लिरिक्स फिट बैठते हैं, जहां पे इसकी वाइब फिट बैठती है. इट इज नॉट आउट एंड आउट अ क्लब नंबर, लेकिन ये क्लब में बच रहा है. और ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब चीजें ऑपोजिट होती हैं और फिर भी खूबसूरत लगती है. गाना बहुत ही प्यारा है एंड इट रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. एक ब्रांड का भी ऐसा ही गाना था, इसी जॉनर का गाना था, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट इट फिट्स परफेक्टली. एंड जिन्होंने, जो दो लोग हैं जिन्होंने डांस किया इस गाने पे, ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड, और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे कि फाइनली इट्स नाइस टू सी योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन. तो नए नए आर्टिस्ट को मौका मिलता है तो अच्छा लगता है. एंड ये गाना एकदम बढ़िया है. गाने का नाम है मेरा पिया घर आया, ओए गा दिया, अलग गा दिया, अलग गा दिया. तो इसीलिए इसके अलग होने की वजह से और इसके वेटेज की वजह से, बिकॉज इट हैज जस्ट बीन रिलीज, तो आवारापन 2 से पिया घर आया इज एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. महफिल अब जरा आगे बढ़ते हैं गाना नंबर 8 की तरफ. गाना नंबर 8, मैंने इसकी तारीफ पिछले हफ्ते करी थी और पिछले हफ्ते हमारी लिस्ट में शामिल हुआ था. दर्शन रावल ये वो आदमी है जिसकी अपनी दुनिया चल रही है, पैरेलली ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, बॉलीवुड वाले गवाएं कि ना गवाएं. दर्शन रावल का स्टारडम इन द सिंगिंग वर्ल्ड इज डिफरेंट, जैसे अरमान मलिक के साथ है. वो शायद आपको बॉलीवुड में ज्यादातर गाने आजकल ना गाते हुए सुनाई दें, बट व्हेन ही इज डूइंग समथिंग, उनका कोई भी काम, कोई

0: भी निशाना खाली नहीं जाता, वैसी दर्शन रावल के साथ भी है। बॉलीवुड ने इन्हें गुजराती गानों के लिए बहुत यूज किया है, विच इज ओके, मगर दर्शन रावल व्हेन ही डज हिज ओन वर्क अपनी कंडीशन पे, तो वो नजर आता है कि ये बंदा बिना किसी कंस्ट्रेन के काम कर रहा है। होता ना कि क्रिएटिव आदमी को कल्ले कल्ले छोड़ दो, फिर देखो आपको कैसा मटेरियल देता है वो। तो जो कंटेंट निकल के दर्शन रावल से आता है जब वो सोलो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं या कोई सोलो एल्बम या गाना निकालते हैं, तो बात ही कुछ और होती है। एंड बरसात लगदी इज वन ऑफ दो सॉन्ग्स जिसमें पता लग रहा है कि हार्ट एंड सोल लगाई है दर्शन रावल ने। ट्रैक इज अमेजिंग, और जिसका भी वीडियो को आइडिया था ना कि जहां भी वो बैठे हैं बारिश हो रही है उसको मेरी तरफ से 2100 की सलामी। पहले मुझे लग रहा था काफी ऑड सा है, फिर मैंने लिरिक्स को सुना एंड द लिरिक्स एक्चुअली मैचेस विद द विजुअल थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द वीडियो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो में ऐसा है कि दर्शन रावल जहां बैठे हैं वहां बारिश हो रही है और बैकग्राउंड में चल रहा है वो हुक लाइन, बरसात लग दी है। आए क्या भाई, बहुत बढ़िया हुक बनाया, बहुत बढ़िया हुक बनाया। इज ऑल्सो वेरी गुड विद मेकिंग नाइस हुक्स जो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे अटक से जाएं। मुझे कोई वो नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा अगर ये गाना बॉलीवुड वाले ले लें, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड। मगर वही है, फिर तनिष बागची इस गाने कुछ और ही बना देंगे मगर एज अ सोलो ट्रैक दर्शन रावल हैज डन एवरीथिंग टू इट, और बहुत बहुत खूबसूरत गाना है एंड डेफिनेटली अपनी जगह डिजर्व करता है एट नंबर 8 पोजीशन। यू नेवर नो, ऊपर भी आ सकता है, बट लेट्स सी। सो ये है बरसात लग दी है दर्शन रावल की आवाज में। ऑलराइट, सो ये कुछ गाने हैं, कुछ क्या, तीन ही गाने मैंने आपको बताए, 10, 9, 8, और उसके बाद हम इस लेडर पे ऊपर चढ़ेंगे। सो गाना नंबर 10 रहा बोहेबारियां, आदित्य रिखारी और रोचक खोली, साथ में रोशनी वालिया। नंबर 9 पे है आवारापन 2 से पिया घर आया, और नंबर 8 पे है बरसात लग दी दर्शन रावल और साथ में सिमरन चौधरी। ब्यूटिफुल ट्राई एट नंबर 8, वापिस आएंगे, जाना नहीं आपने। स्टैचू, स्टे ट्यून्ड।
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

0: 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. मैं दो हवाला कबीर FM 107 पे and this is Top 10 this week. अभी 10 9 8 तो हो लिया भाई. अब बढ़ेंगे गाना नंबर 7 की तरफ. गाना नंबर 7 उस शख्स का है जिनका मैं हमेशा से फैन रहा हूं, जिनसे मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं लगाई कि अरे कुछ अटपटा सा कर दो यार. मगर जब भी आवाज सुनते हैं इनकी तो पता लग जाता है कि हाँ ये मंझा हुआ कलाकार है. मैं बात कर रहा हूँ आतिफ असलम साहब की. आतिफ असलम अपने करियर के उस मुकाम पे हैं जहां पे वो गाना अगर दो भी डालेंगे साल भर में तो चल जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज स्टिल हमिंग वो सारे गाने जो आतिफ असलम ने दिए हैं अपने फैंस को ओवर सो मैनी ईयर्स. वो कहीं भी गाते हैं, वो कोक स्टूडियो में जाके गाते हैं, वो ऐसी गाना निकाल दें सिंगल चलना ही चलना है. इतने अच्छे फेम के बाद भी फैंस के बारे में सोचना और एल्बम निकालना, ये दिखाता है कि आर्टिस्ट को कितनी पड़ी है, आर्टिस्ट कितना मेहनती है, आर्टिस्ट अपने काम के लिए कितना पैशनेट है. एंड दैट इज समथिंग आई रियली रियली लव्ड अबाउट इट. उन्होंने एल्बम निकाली अभी रिसेंटली, उसका गाना नंबर 7 पे मैं प्ले करने वाला हूँ. गाना है सच्चे वादे.
2: सच्चे वादे क्यों तोड़ते मोड़ते तुम जल्दी.
1: इस पूरी एल्बम में बहुत से गाने हैं और हर गाना एक अलग एक्सप्रेशन को दिखाता है. अगर आप ऊपर से नीचे तक गाने को सुनेंगे तो एक

0: पूरी जर्नी है। कुछ गाने आपको लगेंगे थोड़े से सैड हैं, मगर काफी मीनिंगफुल हैं। एक गाना ऐसे थोड़ा सा लगता है कि क्लब बैंगर भी बनाया है, जो कि बहुत अच्छी कोशिश है। एक गाना ऐसा जहां पे आतिफ असलम आपको थोड़ा सा हिप हॉप करते हुए भी नजर आएंगे, विच इज वेरी यूनिक, पर अगर फिट होता है उनकी आवाज में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड अबव ऑल, एल्बम का जो कवर आर्ट है ना, वो बड़ा बड़ा मैटर करता है। कई मरतब आर्टिस्ट जब एल्बम कवर आर्ट बनाते हैं तो उसमें वो आलस दिखा देते हैं, उन्हें सोचता है अरे क्या पड़ी लोगों को कवर आर्ट की, लोगों को इवेंचुअली गाने ही सुनने हैं ना। पर जब आर्टिस्ट कवर आर्ट में भी मेहनत करे तो पता लगता है भाई इसने बहुत सोचा है। तो कवर आर्ट बहुत शानदार है उसमें। पहली बात तो मुझे लगता है शायद पहली मरतबा किसी आर्टिस्ट ने गानों के नाम उर्दू में लिखे हैं, पूरी की पूरी एल्बम में उर्दू में लिखे हैं। जिनके जो फॉन्ट है पूरा, वो जो लैंग्वेज है वो पूरी उर्दू में लिखे हैं। एक एक जो पूरी ट्रैक लिस्ट है वो उर्दू में है। आई डोंट थिंक उनसे पहले किसी ने किया तो मुझे बताइएगा, बिकॉज मैंने नहीं देखा पर्सनली, तो मेरे लिए तो पहली बार था भाई। और मुझे यूनिक लगा कि यार इतना भी सोचा, ये बड़ी सिंपल और बड़ी इफेक्टिव चीज लगी मुझे जो आतिफ असलम ने करी। तो ये गाना डेफिनेटली डिजर्व दिस पोजिशन, नंबर 7 पे है गाना आतिफ असलम की आवाज में। डेफिनेटली अ वेरी वेल डिजर्विंग ट्रैक और बहुत बहुत अच्छा गाना है। तो सुन के देखिए जी, मौज करा देंगे। अब बढ़ते हैं गाना नंबर 6 की तरफ, क्रिटिकल पोजीशन। यहां से गाने या तो सरक जाते हैं या फिर पूरी तरह से लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। मगर जिस गाने की बात मैं कर रहा हूं, ये मुझे नहीं लगता कि लिस्ट से इधर उधर जाने वाला है। आई रियली डोंट थिंक सो। ये गाना वो है जो अभी रहेगा, ये आते जाते वाला गाना नहीं है, ये रहेगा। इस गाने के हिट होने की जो वजह हैं उनमें शामिल है इसकी हुकलाइन, इसकी कोरियोग्राफी, लिरिक्स एंड हम एबिलिटी, कहता हूं मैं कि आप लगातार से हम कर सकते हैं। तो गाना है बन जा तू मेरी आए, चरणप्रीत भाई क्या गा दिया भाई ने, भाई आग ला दी। तो चरणप्रीत भाई का ये गाना है, साथ में बादशाह भाई ने रैप किया, रैप भी बहुत बढ़िया किया है। इस गाने ने ना सिर्फ वायरलिटी पाई है, वायरल तो हुआ ही है, मगर इसके हुक स्टेप ने, इसके डांस स्टेप्स ने लोगों के करियर बनाया है भाई। दिव्या गोयल जो कोरियोग्राफर हैं, उनका करियर रॉकेट हो गया भाई। जगह जगह जगह वो परफॉर्म कर रही हैं, लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, उनके डांस स्कूल को बहुत प्यार मिल रहा है। और साथ में जो आसी हैं, जिन्होंने जो मास्क पहन के अक्सर परफॉर्म करती हैं गानों में, उनको टूर्स मिल रहे हैं, वो इधर उधर जा रही हैं, परफॉर्मेंस कर रही हैं विद बादशाह भाई एंड चरणप्रीत। काफ़ी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की है उन्होंने इस गाने का, तो उन्हें काम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये गाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैकेज है। नॉट जस्ट दैट कि गाना बहुत बढ़िया, गाना तो है ही बढ़िया, मगर इसने ना सब कुछ दे दिया सारे आर्टिस्ट को। और जिसने ऑफकोर्स जो बनाया चरणप्रीत ने गाना, मुझे उनके लिए डर भी लग रहा है। कई मरतबा आपको जैसा काम कर देते हैं ना, वो लगता है अरे बाप रे इससे बढ़िया तो मैं नहीं कर सकता, ये वो वाला सीन हो गया उनके लिए। और जब आर्टिस्ट होते हैं आप और कुछ ऐसा कंटेंट आप प्रोड्यूस कर देते हैं, तो एक तो दो चीज होती है, एक तो लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बन जाती है कि भाई अगला गाना इससे बढ़िया होना चाहिए। और इस प्रेशर में गलतियां भी होती हैं, मगर एक अच्छी बात भी होती है। अच्छी बात ये होती है कि जब आप कुछ बहुत ही बढ़िया कर देते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आपके पास वक्त होता है दूसरे काम को डिलीवर करने का, क्योंकि लोग आपके पहले काम के दीवाने होते हैं। तो सब्र आ जाता है कि चलो ठीक है यार, चरण भाई ने ये गाना बहुत बढ़िया दिया है, बन जा तू मेरी, अभी मैं वेट कर सकता हूं उनके अगले गाने का। एंड वेट कराना इज फाइन, बिकॉज अभी उनको अपना ही बनाया हुआ बेंचमार्क तोड़ना होगा अगर इससे बढ़िया गाना बनाना है। तो अब समझ रहे हैं गाना कितना कितना वेट रखता है। तो इसलिए गाना अभी तक लिस्ट में शामिल है और बहुत टाइम से शामिल है। गाना बढ़ जा तू मेरी बादशाह एंड चरणप्रीत इज एट नंबर 6 ऑन द लिस्ट। ओके, अब जरा बढ़ते हैं गाना नंबर 5 की तरफ। यहां पे मैं थोड़ा बायस्ड हूं, आई हैव द राइट कि एक गाने के लिए मैं बायस्ड हो सकूं, और मैं हूं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का गाना है ढांडा न्योली वाला। नॉट जस्ट कि वो रैप करते हैं इसलिए ओ लोग सोचेंगे ओ रैप करता ना इसलिए इसको रैप आर्टिस्ट चाहिए, नहीं, नथिंग लाइक दैट। लिरिक्स पे भी अगर आप ध्यान देंगे ना ढांडा भाई की, तो लिरिक्स इतने पावरफुल हैं, इतने मैजिकली वो लिखते हैं यार, लगता है ये आदमी ने सोचा कैसे। इतनी सिंपल सी लाइन है इस गाने में आती है जो नंबर 5 पे जगाने, इसमें लाइन है कि बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी,
1: बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी।
0: उन्होंने कोई खतरनाक शायरी नहीं कर दी, अ वेरी सिंपल थॉट। और इस गाने में जो वो थॉट आया है और जिस पॉइंट पे आया है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल साउंड करता है। एंड उनके लिरिसिज्म की तो मैं क्या तारीफ करूं, ही कैन पॉप।

0: वीकेंड हिप हॉप, और जब ये परफेक्ट फ्यूजन मिलता है, क्योंकि कई मरतबा होता है कि एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा रैप कर सकता है मगर गा नहीं सकता, एक आर्टिस्ट गा सकता है लेकिन अच्छा रैप नहीं कर सकता, तो रिदम एंड पोइट्री और पॉप म्यूजिक दोनों अलग अलग रहते हैं, मगर जब एक आर्टिस्ट इन दोनों को फ्यूज करता है और अच्छे से एक साथ फ्यूजन कर पाता है तो बहुत शानदार गाना बनता है, और उनका हर गाना रिसेंटली हिट है, इंक्लूडिंग दिस वन विच इज ऑन द लिस्ट। तो नंबर 5 पे है जगाने, डांडा न्योली वाला, सुन के देख लो जी।
1: FM 107 Top 10 Number 7।

0: FM 107 Top 10.
1: ओके सो अब हमें पड़ाव चढ़ना है 4-3-2-1 का, तो ये करने से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं. तो गाना नंबर 10 रहा बोहे बारियां, रोचक कोहली और रोशनी वालिया और साथ में आदित्य रेखारी द आर्टिस्ट. उसके बाद नंबर 9 पे है मेरा पिया घर आया आवारा पंटू से, और फिर नंबर 8 पे है बरसात लग दिए दर्शन रावल और सिमरन चौधरी. फिर नंबर 7 पे है सच्चे वादे आतिफ असलम की आवाज़ में. नंबर 6 पे है बढ़ जा तू मेरी बादशाह चरण प्रीत. नंबर 5 पे है जगाने. अब जी जगह बनाएं क्योंकि अब वक्त है गाना नंबर 4-3-2-1 का. तो गाना नंबर 4 जो है वेरी क्रिटिकल पोजीशन अगेन. गाना नंबर 4 पे एक कदम नीचे आके एंट्री मारी है आवारापन.

0: बहुत पावरफुल इमोशनल गाना है ये, बहुत पावरफुल. लोगों ने इस गाने को शुरुआत में बहुत हल्के में लिया, कहने लगे कि ये आवारापन वाली वाइब है ही नहीं, ये तो सैयारा वाली वाइब लग रही है और फलाना फलाना फलाना. मगर सईद कादरी साहब ने जो लिखा है इस गाने को जिस तरीके से, वो बेहतरीन है यार. मगर कोई कैसे कह सकता है कि गाना अच्छा नहीं है. ये 6 मिनट का गाना है, टोटल 6 मिनट का, लेकिन इतना ब्यूटिफुली गाया है सुबोध भाई ने, कमाल का परफॉर्म किया है. और लिरिक्स पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो इतने पावरफुल लिरिक्स आपको रिसेंटली मिले भी नहीं होंगे. सो वे जुनून आवारापन 2 का गाना इज एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट. सुन के देखो. फटाफट बढ़ते हैं गाना नंबर 3 की तरफ, क्योंकि आप टॉप 3 की तरफ आ चुके हैं. गाना नंबर 3, 2 और 1, इनमें बहुत सिमिलरिटी है, पता लग जाएगा आपको. गाना नंबर 3 जो है, लेटेस्ट एंट्री मगर नॉस्टैल्जिक एंट्री. तो फिर आओ, पार्ट 2 आवारापन 2 से इस लिस्ट में शामिल होता है.
1: तो फिर आओ, मुझे
0: ये गाना भी रिलीज हुआ मूवी के साथ ही, और वो भी इंट्रो ट्रैक है. इमरान हाशमी ऑन द बाइक और काला कुर्ता पहने हुए जा रहे हैं और ये गाना पीछे चलता है. तो फिर आए यार, कैसे ने जगह बनाई अपनी एक बार फिर से, रिलीविंग एवरीथिंग अगेन. 19 साल पहले की याद इस गाने से डेफिनेटली आती है. गाना तो फिर आओ पार्ट 2 इज एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट. अब ऊपर के जी 2 गाने कौन से होंगे. नंबर 2 पे है अगेन अगेन अगेन आवारापन 2 से अरिजीत सिंह की आवाज में, एंड ये गाना भी बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. रिसेंटली इस गाने ने वापस पिक किए अपने व्यूज, शुरुआत में थोड़े डल हुए थे हिट होने के बाद, फिर वापस अभी पकड़ लिया है. अरिजीत सिंह ने शॉर्ट स्टोरी, इसके लिए कोई पैसे नहीं चार्ज किए, एंड ही डिड इट फॉर फ्री. और ये आवारापन जो मूवी का एक तरीके से टाइटल ट्रैक है, ये गाना है एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट. डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स. लोगों की उम्मीदें ऐसी होती है ना, हमें तो भाई गाना चाहिए भाई, कुछ नया और अच्छा मिल रहा है तो सुन लिया करो. सईद कादरी साहब ने इस गाने को भी लिखा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक्स. और अरिजीत सिंह ने गाया, मतलब इस पे कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या. तो गाना नंबर 2 यही है, ये आवारापन एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट. अब बढ़ते हैं द टॉप ट्रैक दिस वीक, जिसने अपनी जगह बनाई हुई है, जो अपना थ्रोन छोड़ने को तैयार नहीं है. ये वो गाना है जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि इस गाने में रिकॉल वैल्यू है, इस गाने में नॉस्टैल्जिया है, इस गाने में यादें हैं, इस गाने में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं जो 19 साल से लेकर अभी तक आपको बांध के रखती हैं. ये गाना है तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज, जिसका दूसरा वर्जन इतना कमाल का लगा मुझे, मजा आ गया यार. आवारापन 2 से तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज इज एट नंबर 1, कंटिन्यूज एट दिस पोजिशन एंड डेफिनेटली किल्स इट आउट ऑफ द ब्लॉक. सो ये गाना डेफिनेटली अपनी जगह डिजर्व करता है द टॉप ट्रैक ऑफ दिस वीक. तो ये थी टॉप 10 लिस्ट हमारी, और अगर आप भी इसमें कुछ गाना को इंक्लूड करना चाहते हैं या बाहर निकालना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, प्लीज हम तक जरूर पहुंचाएं. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar के अलावा आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, दोहा वाला कबीर, और कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR. यू कैन फाइंड मी ऑन TikTok एंड Instagram. एंड ऑन दैट नोट, मिलते हैं जी बाकी शोज में, मुलाकात होती रहेगी. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मां सलाम. FM 107

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488880

0: 6 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों. 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है. और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है. मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं. आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है. FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए.

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: FM 107 Top 10 Number 3

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, घर हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे हमारी फेवरेट जगह होती है कि नहीं। यहाँ हम अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, फैमिली के साथ मेमोरीज क्रिएट करते हैं और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। हमारा एक कंफर्ट जोन होता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर की छोटी छोटी आदतें एनवायरनमेंट पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? लाइट्स बंद करना, पानी बचाना, वेस्ट कम करना, चीजों को रीयूज करना, ये सब सिंपल से काम है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी बदल कर रख दें, मतलब ये कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर चले जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कभी ना अपनी डेली लाइफ की रूटीन में एक छोटी सी एडजस्टमेंट करना ही काफी होता है। तो भाई, आज का इको स्विच में हम बात करने लगे हैं इको फ्रेंडली होम रूटीन्स की, यानी घर की ऐसी आदतें जो एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करें और जिंदगी को भी बेहतर बनाएं। तो भाई चलो, पहले तो ना हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, घर में रोजाना बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो रिसोर्सेज यूज करती ही हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, पानी का वेस्ट, खाने का वेस्ट, प्लास्टिक और अननेसेसरी पैकेजिंग का ज्यादा यूज। अच्छा, ऐसी चीजें फेंक देना जो दोबारा काम में आ सकती हैं, रीयूज की जा सकती हैं। कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि हम बिजी हैं। लेकिन अगर हर घर में छोटी छोटी इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाना शुरू कर दी जाए तो इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। साथियों, देखिये, घर को ग्रीन बनाना मुश्किल नहीं होता, नो मैं नहीं मानती, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो भाई, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन, अगर घर में इको फ्रेंडली रूटीन्स फॉलो की जाए तो उसके आइडियाज मैं आपको देती हूँ कि क्या हो सकते हैं। पहली चीज ये कि एनर्जी सेविंग रूटीन बनाएं। घर से निकलते वक्त या सोने से पहले एक क्विक चेक करें, क्या लाइट्स बंद हैं अननेसेसरी, क्या अननेसेसरी अप्लायंसेस चल रहे हैं। ये छोटी सी आदत एनर्जी बचाने में मदद कर सकती है, आपका बिल भी बचेगा भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पानी की कदर करें। देखें, ब्रश करते वक्त या डिशेस वॉश करते वक्त या क्लीनिंग के दौरान पानी को बेवजह ना चले रहने देना। पानी एक कीमती रिसोर्स है और हर बूंद की अहमियत है भाई। तीसरी चीज, खाने का वेस्ट कम करें, मील प्लानिंग करें और जितनी जरूरत हो उतना ही खाना बनाएं। बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें ताकि वो वेस्ट ना हो, उसे वापस से अच्छे तरीके से रीयूज किया जा सकता है। और फिर रीयूज और रिपेयर को तरजीह दें। किसी चीज के खराब होने पर फौरन ये काम ना करें कि उसको फेंक दें और उसकी बजाय कोई नई चीज ले आए, ये करें कि उसको रिपेयर करवाएं और रिपेयर हो सकती है तो उसे रीयूज करें। भाई, पुराने जार्स, बॉक्सेस और कंटेनर्स को नए काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में रिसाइकलिंग हैबिट बनाएं। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब आइटम्स अलग अलग आप चाहें तो आदत डाल सकते हैं कि इनको अलग अलग रखा जाए। बच्चों को भी रिसाइकलिंग और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाएं। साथियों, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए तो एक फैमिली अगर अपनी डेली रूटीन में सिर्फ कुछ चेंजेस ले आए ना, मतलब ये कि सुबह नेचुरल लाइट का यूज करे, शॉपिंग के लिए रियूजेबल बैग्स रखे, फूड वेस्ट कम करे और रात को अननेसेसरी डिवाइसेस स्विच ऑफ करे, तो भाई ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल होम रूटीन बना सकते हैं। कुछ फैमिलीज ने घर में सिंपल रूल्स बनाए हुए होते हैं, मैंने देखा है, जैसे कि रूम से निकलते वक्त लास्ट पर्सन लाइट चेक करेगा या शॉपिंग के वक्त रियूजेबल बैग्स जरूर साथ रखे जाएंगे। देखिए, ऐसी छोटी छोटी आदतें आहिस्ता आहिस्ता लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपने घर की रूटीन में एक ऐसी आदत चूज करें जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो, चाहे वो पानी बचाना हो, एनर्जी सेव करना हो या वेस्ट कम करना हो। और हमें बताएं आपके घर में कौन सी इको फ्रेंडली हैबिट पहले से फॉलो हो रही है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, ग्रीन होम बनाने के लिए बड़े चेंजेस नहीं, छोटी छोटी अच्छी आदतें जरूरी होती हैं। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। हम बात करेंगे कतरी टेबल टेनिस स्टार राशा लगराइबी के बारे में। राशा लगराइबी कतर की उभरती हुई टेबल टेनिस स्टार हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी पहचान बना ली है। इस साल की इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में राशा ने अंडर 11 कैटेगरी में दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी बनकर कतर के लिए एक तारीखी कामयाबी हासिल की। ये मकाम कतर की टेबल टेनिस की तरक्की और नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का सबूत है। राशा की ये कामयाबी यूथ कंटेंडर और स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का नतीजा है। ये टूर्नामेंट्स दोस्तों 31st कतर इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप सीरीज का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपनी एज

का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर स्पोर्ट्स की। क्या खेलों की दुनिया बदलने वाली है? देखिए, आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जहां बच्चे शायद इस टॉपिक पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, और ये टॉपिक है फ्यूचर स्पोर्ट्स का। क्या आपने कभी सोचा है?

स्पोर्ट्स कैसा होगा? क्या फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं? या आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेलों की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी? चलिए मिलकर इस मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी का रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आज से कुछ साल पहले तक रेफरीज और एम्पायर्स के फैसले फाइनल समझे जाते थे, लेकिन आज हम VAR, गोल लाइन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कैमरास का इस्तेमाल देख रहे हैं। फ्यूचर में AI और एडवांस सेंसर्स मैचेस के हर सेकंड को एनालाइज कर सकेंगे। प्लेयर्स की स्पीड हो, फिटनेस हो, हार्ट रेट हो, परफॉर्मेंस हो, रियल टाइम मॉनिटर किए जा सकेंगे। यानी स्पोर्ट्स सिर्फ टैलेंट का नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी का भी गेम बन जाएगा। अब आपको क्या लगता है, जो एथलीट्स हैं वो कैसे होंगे? स्मार्ट होंगे? मैं कहूंगी आने वाले टाइम में स्मार्टर होंगे। फ्यूचर के एथलीट्स बहुत ज्यादा फिट और प्रिपेयर्ड होंगे। वेयरेबल डिवाइसेस उन्हें बताएंगे कि कब ट्रेनिंग करनी है, कितना रेस्ट करना है और किस चीज से इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। इमेजिन कीजिए, एक फुटबॉल प्लेयर को मैच से पहले AI सिस्टम बता रहा हो, आज आपका राइट लेग जो है वो ज्यादा स्ट्रेस में है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम रखिए। इस तरह इंजरीज कम और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है ना? क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या रोबोट्स स्पोर्ट्स खेलेंगे? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। कहने को तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आज भी रोबोट फुटबॉल कॉम्पिटिशंस और ड्रोन रेसिंग इवेंट्स मौजूद हैं, होते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं कि रोबोट लीग्स भी पॉपुलर एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानी इमोशंस, पैशन और क्रिएटिविटी की वजह से ह्यूमन स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस हमेशा से रहेगी। लोग सिर्फ हार या जीत देखना नहीं चाहते, वो प्लेयर्स की कहानियां, उनकी स्ट्रगल्स भी देखना चाहते हैं। वैसे ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी काफी ब्राइट होगा। एक जमाना था जब वीडियो गेम्स सिर्फ हॉबी समझी जाती थी, आज ई स्पोर्ट्स दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है। प्रोफेशनल गेमर्स स्टेडियम्स भर देते हैं और मिलियन लोग ऑनलाइन टूर्नामेंट्स देखते हैं। फ्यूचर में भी हो सकता है कि ई स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बराबर पॉपुलैरिटी हासिल कर ले। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज भी कॉम्पिटिटिव गेम्स को करियर ऑप्शंस के तौर पर देख सकती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स हर किसी के लिए होगा, ये भी एक अपने आप में दिलचस्प सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को ज्यादा इंक्लूसिव बना रही है। वर्चुअल रियलिटी की मदद से लोग घर बैठे ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए एडवांस प्रोस्थेटिक और इक्विपमेंट्स नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं। यानी फ्यूचर स्पोर्ट्स का मकसद सिर्फ कॉम्पिटिशन ही

0: अब एक और टर्म आपने सुन रखी है और वो है सस्टेनेबल स्पोर्ट्स. हाँ जी, फ्यूचर में एनवायरमेंट भी स्पोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा. स्टेडियम सोलर एनर्जी से चल सकेंगे, इको फ्रेंडली मटेरियल से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं. इंटरनेशनल इवेंट्स का मकसद होगा कि इस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे. यानी फ्यूचर का चैंपियन सिर्फ फास्ट नहीं, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है. वहीं एक और स्पोर्ट होगा जिसे लोग बहुत पसंद करेंगे, वो है स्पेस स्पोर्ट्स. अब थोड़ी इमेजिनेशन की बात हम करें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये स्पेस स्पोर्ट्स क्या होगा. अगर इंसान मून या मार्स पर कॉलोनीज बनाता है तो वहां पर स्पोर्ट्स कैसे होंगे? कम ग्रेविटी में बास्केटबॉल कितना डिफरेंट होगा? हाई जंप कितनी हाई हो सकती है? यानी ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन कुछ डेकेड्स पहले वीडियो कॉल्स भी फैंटेसी ही लगती थी. अब एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खत्म हो जाएंगे? शायद हाँ या शायद नहीं, कुछ कह नहीं सकते हम. लेकिन हाँ, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या स्विमिंग और भी दूसरे गेम्स, उस तरह की पॉपुलैरिटी को कायम कर पाए ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, बट मुझे लगता है इनमें चेंजेस जरूर आएंगे. फिर भी जैसे मैंने कहा कि 100% ह्यूमन स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी. टेक्नोलॉजी उन्हें मॉडर्न बना सकती है लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन्स आने के बाद भी आज भी लोग बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरह नए स्पोर्ट्स आने के बावजूद भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी, ऐसा मुझे लगता है. वैसे टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को बदल रही है और बदलेगी भी, लेकिन इंसानी जज्बा, मेहनत और कॉम्पिटिशन की रूह को कभी भी रिप्लेस करना मुश्किल ही होगा. फ्यूचर के स्पोर्ट्स स्मार्ट जरूर होंगे लेकिन उनका दिल हमेशा इंसानी पैशन ही रहेगा. चलिए आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों पे जा सकती है. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Absolute Cinema।
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
6: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
5: गेम ऑन,
6: वॉल्यूम अप।
5: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
6: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
5: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FM 107 पे इस्तकबाल है आपका और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम आपसे बात करते हैं हर हफ्ते। और इस हफ्ते है बात एजुकेशन स्कैम के बारे में, एजुकेशन फ्रॉड के बारे में। आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं ये फ्रॉड, और इसकी वजह है बच्चे पढ़ाई के लिए फोन, टैबलेट्स और इंटरनेट का यूज करते हैं। स्कैमर्स फेक एजुकेशनल वेबसाइट्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज, स्कॉलरशिप ऑफर्स और लर्निंग एप्स बनाकर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, गारंटीड एग्जाम

0: के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। इन ऑफर्स को लेने के लिए बच्चों से रजिस्टर करने को कहा जाता है और उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड। इतनी ही जानकारी काफी है फ्रॉड करने के लिए। कुछ फेक वेबसाइट स्टडी मटेरियल या एग्जाम प्रेप के लिए पहले पेमेंट भी मांगती है। बहुत बार ये वेबसाइट्स कोई एजुकेशनल सर्विस नहीं देती, इसके बदले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती हैं, पैसे ठग लेती हैं। ये डिवाइस में हार्मफुल सॉफ्टवेयर डाल देती हैं। स्कैमर्स फेक ईमेल्स या मैसेजेस भी भेजते हैं, जो देखने में लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। इन मैसेजेस में स्टूडेंट्स को एक लिंक पर क्लिक करके अपना स्कूल अकाउंट अपडेट करने या आइडेंटिटी वेरीफाई करने को कहा जाता है। जैसे ही लिंक खुलता है, स्कैमर्स को पर्सनल इन्फो या ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। ऐसे स्कैम से आइडेंटिटी थेफ्ट, पैसे का नुकसान और बच्चे फैमिली दोनों को स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है। कैसे बचें इन स्कैम से या फ्रॉड से? बच्चे सिर्फ वही वेबसाइट और एप्स यूज करें जो स्कूल, टीचर्स या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंड की हो। दूसरा तरीका है कोई भी ऐप डाउनलोड करने या क्लास के लिए पे करने से पहले पेरेंट से वेरीफाई करवाएं। तीसरा, अननोन वेबसाइट पर कभी भी पासवर्ड, पर्सनल इन्फो या फिर पेमेंट डिटेल्स शेयर ना करें। वेबसाइट का एड्रेस यानी कि यूआरएल ध्यान से चेक करें कि वो ऑफिशियल स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की है या नहीं। अगर कोई ईमेल या मैसेज सस्पिशियस लगे तो लिंक पर क्लिक ना करें और बड़ों को रिपोर्ट करें। इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल नए जमाने के नए फ्रॉड कुछ इतने यूनिक और ट्रिकी होते हैं कि उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्रॉड अवेयरनेस के एपिसोड में, जहां पर नए जमाने के और नए फ्रॉड के बारे में हम बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र पर जा रहे हैं, चाहे वो कारोबार के लिए हो, छुट्टियों के लिए हो या अहले खाना से मिलने के लिए हो, अगर सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो एक खुशगवार सफ़र भी परेशानी में बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि सफ़र से पहले और सफ़र के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको शुगर है यानी डायबिटिक हैं आप, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है या दिल का कोई मसला है, तो सफ़र से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। अपनी तमाम ज़रूरी अद्वियात मुनासिब मकदार में साथ रखिए। दवाएं हमेशा हैंड बैग पर रखिए ताकि आसानी से दस्तियाब हों। और अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हों तो ज़रूर वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात हासिल करें। अपना मेडिकल रिकॉर्ड, नुस्खा और एमरजेंसी राबता नंबर अपने साथ रखिए। सफ़र के दौरान पानी मुनासिब मकदार में पीते रहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। कोशिश करें कि ताज़ा और साफ सुथरा खाना खाएं। ज़्यादा तली हुई और गैर मायारी जगहों से खाना खाने से परहेज़ कीजिए। फल खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लीजिए। अगर आप कई घंटे जहाज, बस या गाड़ी में सफ़र कर रहे हों तो हर एक से दो घंटे के बाद उठकर चंद मिनट आप वॉक कीजिए। टांगों और पैरों की हल्की एक्सरसाइज कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे। मुसलसल बैठे रहने से टांगों में सूजन या खून जमने का खतरा ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद या फिर हामला ख़वातीन में। सफ़र का असल लुत्फ तभी है जब आप सेहतमंद रहें। थोड़ी सी मनसूबाबंदी के साथ आप सफर को महफूज और खुशगवार बना सकते हैं।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? जेनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
3: तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आज मेरे खास बहुत ही खास शख्स हैं आज मेहमान जो मेरे साथ बैठे हैं। इनको थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, लाइक 2-3% पर आज पूरी तरह से जान जाएंगे और बड़े ही खुश मिजाज है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस अखलाकी तौर पर इतने अच्छे तरीके से मिलता है। तो वेलकम नरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
4: थैंक यू

0: Thank you, Kabir. We are great and really nice meeting you after a long, long time.
1: Likewise, sir. And Kavya, thank you so much for coming. जिंदगी को इधर से उधर जिया है, आपने बताया कि एमपी से फिर दिल्ली फिर यहाँ, काफी कुछ देखा है अपनी लाइफ में, तो ये जो नई जनरेशन है इनसे डील करना कितना मुश्किल कितना आसान?
0: These things comes in deal with these kids. Means I, you know, I started looking back my days when I was in there.
1: थोड़ा आसान था ना?
0: हाँ, जब मैं इनके उम्र में था तो आसान क्या था, मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे, मतलब
1: क्या करोगे यहाँ?
0: ये आज के बच्चे मतलब आई रिमेम्बर जब हम किड्स थे तो व्हाट एवर पेरेंट्स सेड दैट वाज द बॉटम लाइन,
1: उसके ऊपर कुछ नहीं,
0: उसके ऊपर कुछ नहीं. ये बच्चे से ऐसा लगता है कि नो व्हाट दे सेड इज द बॉटम लाइन.
1: हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा आंखों का डर जो है वो पहले हुआ करता था,
0: हमें जब डर होता है इन बच्चों की आंखों का कि ये ना गुस्सा हो जाए. पहले डर होता था कि पेरेंट्स गुस्सा ना हो जाए.
1: हाँ, अभी उल्टा उल्टा सीन है,
0: अभी तो बिल्कुल उल्टा सीन है, उल्टा सीन है.
1: तो काव्या प्लीज माइक पे आ जाओ. तो वो काव्या मुझे बताओ कि घर में कन्विंस करना किसे आसान है, पापा को या मम्मी को, किसे कन्विंस करना आसान?
2: पापा, ही इज वेरी इजी टू कन्विंस. इफ आई से समथिंग एंड इफ ही सेज नो, आई जस्ट हैव टू बेग टू थ्री मोर टाइम्स एंड ही विल से ओके ओके बेटा गो.
1: अरे तो मम्मी मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट है.
2: इफ आई बेग अ लॉट ऑफ टाइम्स शी विल गिव मी वन स्लैप.
1: अरे रे, तो ये आपने ही फैसला किया होगा मैं गुड कॉप प्ले करूंगा, ऐसा कुछ है?
0: हां, ऐसा तो नहीं है कि गुड कॉप बैड कॉप, बट आई थिंक या ऐसा होता है, नेचुरली ऐसा होता है कि बैड कॉप हो जाता है गुड कॉप हो जाता है. एंड मुझे लगता है कि वो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस किड्स आर रियली डिफिकल्ट टू हैंडल.
1: हां वो तो है,
0: एटलीस्ट कई सारी ऐसी डिमांड्स होती हैं व्हिच एज यू सेड ना कि हम थोड़ा सा मैं थोड़ा इजी हो गया, तो एटलीस्ट फ्रॉम हर साइड वो कंट्रोल में होता है, अदरवाइज दे विल बी लाइक फ्री बर्ड, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, उड़ती पतंग कोई.
1: हां, कुछ कुछ पापा को कुछ सिखाया, कुछ नया टर्मिनोलॉजी या कुछ मीम शेयर करते, कुछ है ऐसा?
2: या लाइक see right now there's something called trending like brain rot. So like basically it's like English but like you the letters right, you make a different whole word, like a whole different word from it. So like I always teach him dialects.
1: Share karo glo tum warna dum dum awaaz aayegi tumhari. Ha, ab batao kya kar
2: rahe ho. Sigma and all that. So I teach him that.
1: Acha seekh rahe hain, bas seekh rahe hain. Kuch memes wagera, you come across some memes and you do you show him or share?
2: Yeah, I do actually. But he never replies or sees those.
1: Kya Narendra?
0: Are main abhi main kya batau? मुझे इन बच्चों की टर्मिनोलॉजी कई बार अपने फ्रेंड से जो बातें करते हैं ना, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लिटरली मतलब या ब्रो दिस
2: इज आवर लैंग्वेज, व्हाट
0: एवर, पता नहीं क्या बात करते हैं, मतलब इट्स हार्ड, मतलब इनका कोड लैंग्वेज एक डिफरेंट लेवल का ही है.
1: अगर अगर उसमें डीप चले जाओगे ना तो आपको लिटरली लगेगा कि कुछ और फॉर्म ऑफ इंग्लिश है, बट देन अगेन यू हैव टू लर्न. अभी क्या कभी कभी होता है ऐसा कि मम्मी पापा को ही ब्रो बोल देते, तो इट हैपेंस?
2: या एक्चुअली व्हेनेवर आई वांट टू call my father, I'm like, bro, papa.
0: It's so true. मतलब I never remember कि मैंने कभी अपने father को yo, bro, papa, मतलब and they are like, one way it's good also, at least they don't have that fear. But I think that's a kind of a big generation gap as well. मतलब हमारे अंदर कभी वो even till today means. If my father is sitting right in front of me, I barely see in his eyes.
1: Correct.
0: हमारे बच्चे तो मतलब yo bro, what's up? Like that.
1: वैसे नरेंद्र, आपने कभी कोशिश करी है काव्या को कुछ दिखाने की अपने era से, some probably movies or some cartoons or anything? Have you tried to influence her in a way?
0: बहुत बहुत मतलब वो बहुत ही ज्यादा कन्विंस करके जब कभी दिखाना चालू करते हैं तो ऐसी कुछ मूवीज हैं कि हाँ उसमें कई बार लाइक मिस्टर इंडिया वंस अपॉन अ टाइम आई वाज ट्राइंग टू मींस फॉर सर कि मिस्टर इंडिया देखो यू विल लाइक, तो पहले तो मतलब शी वाज लाइक नो नो नो आई डोंट वांट टू वॉच व्हाट काइंड ऑफ मूवी इट इज, स्लोली शी स्टार्टेड लाइक इट. तो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो इट्स जस्ट अ जनरेशन गैप कि प्रॉब्ली ये अभी हमारे लेवल के जो मूवीज थे या जो सीरियल थे उनमें ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी इजी अवेलेबल टू देम.
1: और हर सेकंड नया कुछ आ रहा है,
0: हर कुछ नया आ रहा है. आई थिंक यू माइट आल्सो बी कोरिलेटेड. हमारे टाइम पे हम संडे का वेट करते थे चित्रहार देखने के लिए, हमारे पसंद के गाने हमें
1: सड़कें खाली होती थी.

0: सड़कें खाली होती थी और संडे का इंतजार होता था मूवी देखने के लिए. ये बच्चों को तो जो भी देखना है इंस्टेंटली यूट्यूब में अवेलेबल है. मतलब हमारे लिए द बिगेस्ट गजेट वाज सलोरा टीवी होता जिसमें शटर होता था, बड़ा बॉक्स, शटर खोलते थे बंद करते थे, उसके चैनल होते थे. वी कुड नॉट थिंक मोर देन 10 और 12 चैनल्स. मतलब वो टाइम से हम अभी ये
1: टाइम, वो भी प्रॉपर सिग्नल अगर आ जाए तो, बहुत
0: प्रॉपर सिग्नल आ जाए. और ये बच्चे तो मुझे तक कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे उसको कि कभी ऐसा भी जमाना था कि बॉक्स ऐसा टीवी होता था.
1: कभी देखा कभी तुमने, हैव यू सीन दोस बॉक्स वाले टीवी?
2: नॉट रियली, बट आई वांट टू से समथिंग टू पापा, लाइक पास इज अ पास, नाउ यू हैव लाइक एवरी
1: कुछ दिखाई है मतलब कुछ VCR तो बिल्कुल भी नहीं. Have you any idea? Like, do you know what VCR was?
2: No.
1: अच्छा ओके है ना, ये बड़ा मुश्किल है
0: यार, तो अभी दिखाना भी मुश्किल है,
1: बहुत मुश्किल है यार ना. बट यू शुड एक्चुअली सी, मतलब अगर आज के जमाने में काफी, ये एडवाइस नहीं है, जस्ट bro wali advice. If you ever get to see a VCR, na, it was cool back then. It was really, really cool. You know, the sound of the cassette going inside the VCR player was really, really cool. Like, if it still exists na aaj ki tareekh mein, to hit ho jata thoda, to agree karte hain Narendra.
2: Yeah, but iPhone 17 is cool.
1: Haan, demand aa gayi kya?
0: Demand aa gayi hai.
1: Acha, aa chuki hai. Wow, re Narendra ji.
0: Matlab, main bataya na, ye bachche humse एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 100 कदम आगे हैं.
1: तो कैसे मतलब गैजेट से दूर रहते हैं, टाइम सेट है क्या, हाउ डू यू टैकल दिस?
0: एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट, कबीर, टू बी ट्रू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप देम अवे फ्रॉम द गैजेट. द रीजन बिहाइंड, अभी इनका स्कूल पैटर्न देख लें आप, जितना असाइनमेंट है सारा कुछ आपका गैजेट्स में आता है. दे हैव टू उसके बाद यू आर बिजी समवेयर एल्स, क्लास फिनिश ही, बच्चों ने तुरंत यूट्यूब खोल
2: लिया.
1: हर मान ली पापा ने, वो पहले ही हर मान चुके हैं इस बात में.
0: मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि असल में हम चाहें भी इनको डिस्कनेक्ट करना, तो मतलब आई विल बी रियली हैप्पी टू फाइंड आउट दोज वेज. कहते हैं कि बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, बट हम भी शायद थोड़े से उसमें इंक्लाइंड हो गए कि हम भी आधे घंटे टकटाने के बाद ना हमारे भी हाथ
2: Like papa's friend is
1: why
2: pilot?
1: Not ships then? I mean, you can travel through ships as well, no? Why do you need to become a pilot?
2: Because I like the clouds.
1: Because
2: I love the clouds.
1: Very nice. So, influence raha hai is cheez pe, kyunki mama baba aksar chahte hai na ki matlab main thoda sa dheere dheere dikka deke us taraf le jaun. Have you tried that?
0: Nahi.
1: Kabhi
0: nahi. Nahi. Matlab you mean to say you are asking ki iska pilot ki taraf? Nahi, actually mujhe lagta hai ki ye naturally aaya hai, because abhi she is not that old. बट मुझे लगता है कि ये एक इन्फ्लुएंस
1: रुझान उस तरफ आता ना.
0: हाँ, कि गजेट्स के थ्रू ये देखते हैं उस तरीके के वीडियोस. शी इज वेरी गुड इन डांसिंग, तो मतलब व्हेनेवर शी फाइंड आउट न्यू प्लेस, शी ट्राई टू टेक दैट एज अ बैकग्राउंड और उस पे अपने वीडियोस बनाना एंड ऑल. तो आई थिंक दैट हैज केम नेचुरली. और उसका मुझे लगता है कि एक पर्सनली मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका एक बेनिफिट भी है कि बच्चे जो उन्हें पसंद है, जो उनकी हॉबी है, उसमें उनको एक मीडियम मिल रहा है जहाँ वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज भी ले
1: खुद ही जान सकते हैं.
0: बिकॉज अभी मुझसे अगर वो पायलट के बारे में डिटेल पूछेगी तो प्रॉब्ली आई मे नॉट बी एबल टू टेल हिम दैट मच ऑफ डिटेल. बट वो इंफॉर्मेशन सेक्टर आज की डेट पे इजिली एक्सेसिबल है, तो वो एक बेनिफिट भी मुझे लगता है कई बार. तो इसीलिए इंक्लिनेशन बस ये होता है कि अति सर्वत्र वर्जिते जो हम बोलते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा ना देखें, उसको कंट्रोल करें, उसपे एक स्ट्रगल है. बाकी तो उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी बहुत है ना,
1: तो हर चीज का होता है. तो
0: आई थिंक शी इज,
1: आर यू ऑन सोशल मीडिया बाय द वे?
0: नो, आई एम वेरी लो.
2: वेल, पापा इज नॉट, आई एम ऑन इंस्टाग्राम queen.kavya2000.
1: क्या बात, इज शी रियली एक्टिव? आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया?
2: यस आई एम.
1: ओके, अच्छा मम्मी एक्टिव है? मम्मी, शी इज,
0: मम्मी मोर देन मी, बट
1: मोर देन यू.

0: लेस देन हर.
1: अच्छा ऐसा समवेयर इन बिटवीन. दोनों को ऐड किया मम्मी पापा को प्रोफाइल.
2: या
1: अच्छा वर यू लाइक स्टार्टिंग में लाइक स्केयर्ड लिटिल थोड़ी एंक्शियस की शुड आई ऐड देम और नॉट लाइक.
2: नो नॉट रियली
1: देयर आर किड्स
2: बिकॉज़ लाइक the thing is I'm not even supposed to have Instagram.
1: Absolutely self awareness.
2: Yeah, so it's just like I just added my parents.
1: But do they comment?
2: Yeah they do.
1: Acha okay
2: they
1: nice.
2: Do a few videos.
1: Nice.
2: Not papa but mama does.
1: Papa ko bhi force nahi hai comment papa karo yaar.
2: But yes. Papa uses Facebook.
1: कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो वेस्ट हम लोग पहले कहते थे कि यू नो वेस्टर्नाइज हो रही है चीजें. अभी एक स्लीप ओवर का कल्चर आया. कभी काव्य की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि स्लीप ओवर्स के लिए कभी have you,
2: recently I just asked mama for a sleepover.
1: And then what happened?
2: And then she's like no.
1: ओके ये रिक्वेस्ट अब तक नहीं पहुंची है.
0: नहीं मुझ तक पहुंचती है लेकिन स्पेशली स्लीप ओवर का जो एरिया है जो अथॉरिटी है दैट्स लाइज विद हर मम्मा.
1: अच्छा
0: तो वही डिसाइड करती हैं कि स्लीप ओवर करना है नहीं करना है. बिकॉज मैं बताया कि वो गुड कॉप के चक्कर में कई बार होता है कि नहीं भाई स्टडीज छोड़ के स्लीप ओवर करने जाना है. तो एटलीस्ट शी कंट्रोल्स दैट कि यू हैव फिनिश्ड दिस दिस दिस देन ओनली यू आर अलाउड टू स्लीप ओवर. सो डिसिप्लिन साइड शी टेक्स केयर वेल. तो मैं उन सब मामलों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता.
1: लाभ देते हैं वो अलग से.
0: हां
1: तो काव्य कुछ कंडीशंस रखी थी मम्मी ने या स्ट्रेट नो.
2: नो शी सेड दैट यू कैन गो टू स्लीप ओवर लाइक विद योर क्लोज फ्रेंड्स द वंस दैट वी नो बट नॉट जस्ट लाइक स्कूल फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट. एंड आई कांट जस्ट गो टू एनीवनस हाउस विदाउट नोइंग.
1: ऑब्वियसली दैट्स लाइक द सेम फर्स्ट थिंग. बट लाइक डिड शी कंप्लीटली डिनाइड योर रिक्वेस्ट या फिर कुछ कंडीशंस रखी हैं नो यू कैन गो आफ्टर यू डू दिस.
2: No, she said that you can go after we get to know her parents well, you know, like she said it like that.
1: Okay.
2: But she,
1: तो कोई घर पे आना जाना होता है बच्चों का काफी दूसरे
0: yes,
1: बच्चों
0: yes,
1: का?
0: Yes, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं डेफिनेटली उनका she goes for sleepover, वो आते हैं sleepover, वो चलता रहता है ठीक है. उसमें क्या है थोड़ा they also because कई कतर में जैसे कुछ मंथ ऐसे होते हैं आप बाहर ज्यादा कुछ जा नहीं सकते. तो आई थिंक दैट इज अ गुड टाइम आउट कि स्लीप ओवर कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ. तो दैट्स अ गुड टाइम आउट फॉर देम. सो
1: एक टफ क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है. मैंने आपसे पहले भी बहुत सारे पेरेंट्स से पूछा स्पेशली फादर्स यू नो आप वैसे सोशल है आर यू एंटी सोशल और सोशल
0: या
1: सोशल इनफ. कई बार होता है बच्चों की वजह से आपको दोस्ती करनी पड़ती है. ऐसा हुआ है आपके साथ आप क्या करें मतलब खड़े में बात करनी पड़ेगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल वो हुआ है लेकिन आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल. हाँ और मेरी दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है.
1: अच्छा ओके फिर ठीक है.
0: बिकॉज वो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट आई लाइक इट मीटिंग न्यू पीपल. आपको दूसरे पेरेंट्स के चैलेंज सुनने में आते हैं और जब आप दूसरे के साथ भी सुनते हैं कि वो भी यही चैलेंज फेस कर रहे हैं देन यू फील लाइक हमारे साथ ही बस प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ. तो सॉल्यूशन कब आएगा व्हेन द सॉल्यूशन विल कम ग्लोबली एक्सेप्टेंस होगा.
1: पहले लगता होगा कि सॉल्यूशन का कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा हो सकता है और नहीं मिलता किसी को नहीं मिलता. बट देयर आर पेरेंट्स हु रियली रियली स्कैर्ड यू नो यार अब कैसे दोस्ती मतलब मैं ऐसे कैसे दोस्ती कर लूं सामने आ गए तो बात तो करनी पड़ेगी.
0: Good job.

0: ऑनेस्टली आई लव बर्गर.
1: अच्छा.
0: एंड फ्राइज.
1: घर की तरफ आओ ना, बाहर का खा लिया तुमने, घर पे क्या पसंद है? कुछ घर का बनाया पसंद है? घर का डोसा ही पसंद है.
0: इडली.
1: इडली. और कुछ मम्मी कुछ स्पेशल बनाती है जो हो सकता है कि तुमने?
0: आलू पराठा.
1: आलू पराठा, क्या बात है. आलू पराठा तो हम सबके
2: यस खून में बसा हुआ है.
1: खून में बसा हुआ है वो तो होना.
2: स्पेशली दिल्ली वालों के तो खून में आलू पराठा बसा हुआ है.
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन एफएम 107.
1: अच्छा कभी पीटीएम जब होती है स्कूल में, are you like often scared?
0: Yeah, I'm very scared.
1: अच्छा?
0: I'm super nervous.
1: Do you have a memory you'd like to share? PTM में कभी कुछ हुआ है?
0: Yeah, I actually do because I remember in grade 2, from the KG 1, KG 2, grade 1, I never got any complaints. Grade 2, I think was term 1 time and my father, he was talking with my teacher.
1: Ah, okay.
0: My teacher. She complains so much about me. She does. She talks too much. She doesn't pay attention. She doesn't do her homework. She doesn't write.
1: Kya baat hai.
0: I got so annoyed. I'm like.
1: चुप हो जाओ.
0: Yeah, exactly.
1: तो आप सामने थे, आपके जहन में क्या चल रहा था एकदम से जब आया होगा ये धक्का?
2: हाँ, मतलब उस समय तो किसी भी पेरेंट्स को अजीब ही लगेगा कि सुनने में यार आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहे हैं. But yes, I think PTM is really eye-opener that as a parents, कहाँ आप lag कर रहे हैं, कहाँ आपको improve करना है, कहाँ आपको ध्यान देना है. Because if I look for my childhood, पढ़ना किसी को पसंद नहीं था.
1: और my time पे PTM से होता था कि माँ बाप खुद बोल गया था इसे पीटते रहना.
2: हाँ, पीटते रहना. Direct instruction रहती थी, पीटते रहना. और मतलब घर पे तो बता ही नहीं सकते थे कि पिटाई हुई है, बताएंगे तो ऊपर से तो और पड़ती थी. तो बट आई थिंक धीरे धीरे एजुकेशन इवॉल्व हो रही है. बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है. आई थिंक टीचर से नहीं डर रहे हैं बच्चे, ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है. आई फील सो. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर फ्यू ऑफ माई टीचर्स, अभी भी नाम याद आता है तो उनकी छड़ी याद आती है और उनका पीटना याद आता. पढ़ाना तो उनका याद ही नहीं है, सिर्फ याद ये है कि वो पीटते बहुत ज्यादा थे. मतलब वो
1: पनिशमेंट जीरो.
2: या दैट वाज डिफरेंट टाइम. तो अभी ये पीटीएम का ये डेफिनेटली बेनिफिट है.
1: बेनिफिट तो है, अभी थोड़ा चेंज हो गया ना.
2: एज अ पेरेंट आपको कहां बच्चों को ध्यान देना है, कहां क्या सपोर्ट देना है, थोड़ा सा
1: पेरेंट्स मोर ओपनली डिस्कस्ड राइट. पहले थोड़ा सा था कि साइड में चले बात करते
2: हैं. राइट.
1: काफी क्लास में पनिशमेंट्स मिलती है, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट्स डू पीपल गेट राइट नाउ? मैं जानना चाहता हूं.
0: ओके, सो बेसिकली इन साइंस पीरियड वी हैव दिस सुपर स्ट्रिक्ट टीचर.
1: ओके,
0: इफ यू टॉक you'll get sent out of the class.
1: Achha, this is the and then minimum.
0: If you don't do notes, coordinator.
1: Okay.
0: If you talk back or like be like, no, I don't want to do this, headmaster. And one kid actually went to the headmaster. Like the whole class got so scared. Like we just started doing something. We opened our books and started.
1: सोचे इतनी सी बातों देखे दिल बहल रहा. उस टाइम में तो वहीं में टुकड़ाई है, वहीं बुलाई है. दूसरा ऑप्शन नहीं है. हेडमास्टर को तो बात ही नहीं जा रही है.
2: Right.
1: अच्छा, what sort of things do you like to watch on internet? क्या तुम्हारा इंटरनेट स्पेस क्या कहता है?
0: Okay. So I follow few people. I'm subscribed to them and I watch them. Uh-huh. One is like Mr. Beast. He's like a content creator.
1: Yeah, okay.
0: He's like super worldwide.
1: Yeah, I know. Uh-huh.
0: And then I just watch Darman. He tells
1: the Darman stories.
0: Yeah. I just watch that.
1: And there are many similar channels jo usi line pe chal rahe hain, magar wo Darman ke channels aur wo actors bhi repeat hote hain, you kind of connect with them.
0: Yeah, you know their name and
1: okay. So content to bahut badhiya chal raha hai inka. आपने बैठ के देखा है कुछ इनके साथ?
2: मैं कभी कभी डॉरमैन, आई थिंक डॉरमैन आई सॉ.
1: डॉरमैन वो भी इंडियन अमेरिकन इंडियन कैनेडियन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
0: इट्स या अमेरिकन इंडियन
1: कैनेडियन.
2: सो उसका दो तीन वीडियो मैंने देखे हैं. उसके थोड़ा इमोशनल वीडियोस होते हैं,
1: सीख देने वाले होते हैं.
2: हां, एम्पैथी.
0: पापा, यू वॉच लाइक वन वीडियो एंड दैट टू यू हैवंट कंप्लीटेड इट एंड देन द ओनली थिंग यू वॉच इज क्रिकेट एंड सम
2: अगर मैं कुछ देखना चाहता हूँ ना, दीज किड्स डजंट गिव मी रिमोट.
0: नो, ही टेक्स हिज फोन टू द बाथरूम, ही इज लिसनिंग सम रैंडम.
1: तो कहाँ जाएगा काम आदमी?
2: हाँ, बाहर का टीवी ये लेके बैठे हुए तो अभी कहाँ बाथरूम में ही देखने को टाइम मिल रहा है, तो वहीं पर मोबाइल पे देख रहा हूँ.
1: आपका क्या आइडिया रहता है कि कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि बेडरूम में टीवी होना चाहिए नहीं?

0: होना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन?
1: नहीं नहीं, बेडरूम में टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बेडरूम में टीवी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट एक ही रूम में टीवी है तो सारे लोग बैठ के वहाँ, कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि कोई कॉमन ऐसा मूवी लगा रहे हैं जो हम सारे बैठ के देख रहे हैं, तो एटलीस्ट दैट आल्सो गिव्स अस अ चांस टू सिट टुगेदर. अदरवाइज एवरीवन गोस सेपरेटली वाचिंग देयर गैजेट्स, दैट्स आल्सो नॉट.
0: तो ये कॉमनली जो कॉमनलिटी है आप लोगों के बीच में, कौन सी चीज एक साथ बैठ के देखी जा सकती है? What do you watch?
2: That's kind of difficult to answer because we have nothing in common.
0: Have you watched anything together? Like,
2: yeah, we actually have Mr. India.
1: Mr. India.
2: But my brother, and he
1: Spider-Man.
2: Spider-Man.
1: Ek recent movie thi, yes. Spider-Man, that we all watched together.
0: Ah, okay.
1: Yeah, uske alawa to, matlab, like, I watch watching sports. वो कभी अगर लाइव मैच आ रहा है तो दैट टाइम आई गेट नो नाउ टुडे इज माय टर्न आई एम नॉट लला.
2: द थिंग इज वी डिवाइडेड इनटू लाइक ग्रुप्स.
0: अच्छा ओके.
2: माय ब्रदर एंड माय फादर विल वॉच क्रिकेट स्पोर्ट्स.
0: इज ही एल्डर टू यू?
2: माय ब्रदर नो, ही इज यंगर, वन ईयर यंगर.
0: वन ईयर यंगर, ओके.
2: एंड देन मी एंड माय मॉम विल वॉच लाइक something like Big Boss or something.
0: तो division है तो proper है. आपके आपकी जो characteristics हैं वो कितनी हैं काव्य में? क्या characteristics आप notice करते हैं?
1: काव्य actually काव्य is soft girl actually I would say और कई बार वो समझाने पे समझ जाती. She is not that adamant or rude. My son, अगर वो football आ रहा है तो he'll not let me change channel. वो adamant है. नहीं नहीं पापा, मुझे यही देखना है. मतलब वो चीजें हैं उसमें. और उसके अलावा काव्या एंड मी आर क्वाइट इजी गोइंग.
0: अच्छा, हाँ, वो चीज नोटिस करी है आपने. बट आज के पेरेंट्स को, लाइक योर फेलो पेरेंट्स, ये टर्म नया मुझे पैदा करना पड़ेगा. तो क्या उनको क्या एडवाइस रहती है आपकी? आप देखते होंगे डेली उनको डील करते हो बच्चों से, आपके खुद के दोस्त होंगे कितने सारे माशाल्लाह. व्हाट इज योर आउटलुक एंड आल्सो योर इनसाइट एंड आल्सो योर एडवाइस?
1: एक्चुअली मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मतलब बच्चों को शायद हम पुश तो किसी चीज के लिए नहीं कर सकते. उनकी जो हॉबीज हैं, अगर वो खुद से जो भी कुछ कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज टाइम ऑफ देयर नर्चरिंग.
0: साथ देने के लिए
1: वो उनको हर चीज कराएं, मुझे लग रहा है ये टाइम पे. और लेट्स सी हाउ दे ग्रो. क्या पता किस चीज में उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाए कि उनकी हॉबी ही उनका पैशन बन जाए और वही उनके लिए ब्रेड एंड बटर भी बन जाए. उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपकी हॉबी आपके लिए आपका ब्रेड एंड बटर हो जाए. तो उसमें तो आप एक्सेल कर ही जाएंगे. तो मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा कुछ कर भी सकते हैं इनके लिए. जब थिंग्स एज गोइंग, लेट इट गो. एक अच्छे एटिकेट्स के साथ बच्चे बड़े हो जाएं, आई थिंक दैट विल बी अवर गुड पेरेंटिंग.
0: राइट, एब्सोल्युटली. अच्छा काव्य, सोशल मीडिया पे क्योंकि तुम हुआ, डू यू प्लान टू बी समबडी ऑन सोशल मीडिया समडे? लाइक समबडी?
2: या आई डांस. यस, एक्चुअली लाइक आई डांस, राइट? सो आई जस्ट वांट पीपल टू सी माय डांसिंग.
0: ओके.
2: आई जस्ट वांट टू शो माय डांसिंग cuz लाइक dancing makes me happy, so I just want people to look at
0: it. Do you have a music genre that you follow dance karte waqt, ya phir tum kisi bhi tumhara favorite songs pe hi dance karna pasand hai?
2: Yeah, sometimes my favorite songs or like the songs that I like that are suitable, like you know, I can make steps out of, then I'll just start dancing, you know.
0: Acha waisa hai.
2: Sometimes I freestyle and you know.
0: Nice, okay. Agar Kavya somewhere down the line in the future, if she starts earning, let's say social media se iski sara badhiya chal jata hai, would you have a regret or no? क्योंकि हो सकता है कि she'll blow up someday. अभी इन्हीं सालों में, अभी पढ़ाई करते करते she might blow up. So then what would be your opinion? Or
1: no, I won't have a regret. Means anything whichever she likes and she's excellent.
0: So you would that, actually?
1: Yeah, I'll definitely support. Like, उसको डांस काफी पसंद है. और वो डांस क्लास के लिए खुद से मोटिवेट होकर बोलती, पापा मेरा क्लास है अभी, मेरा क्लास है.
0: हाँ, nice, which is great.
1: I support it, 100% I support it. And in not only me, मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों ही शिखा, दोनों ही सपोर्ट करते हैं इसको. कि मतलब जो इसको खुद से करने का दिल कर रहा है, let her do. और Yeah, as you rightly said, we never know. Actually, ऐसा thought process नहीं है कि वो social media पे या किसी में ऐसा excel.
0: हाँ, वो thought होके होता भी नहीं है.
1: Naturally, जो भी कुछ हो रहा होगा होगा. Overall thought process ये है कि जो उसको अच्छा लग रहा है, मन से जो कर रही है, करने देते हैं उसको.
0: देखा होगा तुमने. तो अच्छी बात है, तुम्हारा तो ये बहुत बेनिफिट है. You can look

0: jokes, but then sometimes it's also kind of cringe.
1: Of course, unka pura hak hai cringe jokes karne ka. Banta hai aapko, banta hai.
0: But then also, he's very funny.
1: Of course. I can see that because aap jitne chill hai, itna bachcho ko support karne ki bahut badi baat hai.
0: Cool as a cucumber.
1: Oye, hoye, hoye. Aap to tareef mein mil gayi aapko bahut sari. Kavyo ko bhi sorry bolna pada hai aapko?
0: Yes.
1: Okay. अच्छा काव्य, तुम्हारी खुद की जनरेशन को कुछ कहना चाहते हो? Do you have a message to your peers?
0: Yeah, I actually do.
1: क्या?
0: So everybody, whoever is Gen Alpha, right?
1: Yes.
0: Gen Alpha. Just be yourself and tell your parents that give me an iPhone 17 and be yourself.
1: Be yourself. But do you express your feelings on stories and all? वहाँ पे डालती हो stories पे?
0: Not really. No.
1: Don't do that. That is cringe. Okay.
0: Yeah, that is very cringe.
2: ये जो word use करते हैं ना Gen Alpha, ये तो मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि Gen Alpha.
1: देखिए इनसे पहले वाले
0: Gen Z हैं. Generation Alpha. Generation.
1: इनसे पहले वाले Gen Z हैं. ये हैं Gen Alpha. है ना, और उनसे पहले भी बहुत सारी जनरेशन आ जाती है, मिलेनियल्स हैं, काफी कुछ है. तो वो ट्री आपको समझ के बैठ के समझना
2: पड़ेगा. लेकिन वो ट्री बनी कब, मतलब व्हेन दिस वाज डिस्कवर्ड? हम तो अपने स्टडी में कभी.
0: राइट नाउ जेन बेटा इज गोइंग.
1: हां, अब तो बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट है अभी जो मामला है. बट क्योंकि हम आखिर तक पहुंच चुके हैं भाई, आप सबसे पहले जानना चाहूंगा कैसा आपका एक्सपीरियंस आप स्टूडियो में आए आज?
2: बहुत अच्छा, मतलब इट वॉज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड
1: लाइकवाइज सर.
2: या मीन्स excellent experience actually. This is first time I'm in any studio.
1: अरे फिर तो बहुत अच्छी बात
2: है. मतलब एक professional meetings तो अलग होती है, मगर एक casual talk और एक calm environment में जहाँ कोई disturb नहीं कर रहा है आपको in between and a candid talk. Of course, it was wonderful and thanks for inviting us for
1: my pleasure.
2: This wonderful.
1: My pleasure. आपको देखिए मुझे पता भी लगता है कि बहुत ही मेहनती और chilled इंसान हैं आप और बड़ा proudful होता है ऐसे लोगों को देखके.
2: Thank you so much.
1: I wish you really all the best. And Kavya, how was your experience?
0: It was really good and like I enjoyed it and like thank you for inviting me and my dad.
1: Of course. And I'm really happy that
0: I had a great time. Yeah, it was very fun.
1: Likewise. But thank you so much to both of you. And इसी तरह से बस जितना भी लोगों ने सुना है आपके ओपिनियंस बने होंगे, तो व्हाट्सएप 666-222-107 है, 666-222-107 सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर. काव्य तुम भी बता दो अपना.
0: ओके सर, queen.kavya2014 ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी
1: नाउ. डू दैट एंड ऑब्वियस साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी है. मास्सलामा.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM107 कतर. दिल से देसी.
4: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है. उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है. Stories of Prophets. Stories of Prophets. जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं. आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें.
3: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
5: दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है. याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है. फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं. सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है. हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर. आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो. फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है P फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें. दूसरा है A, यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर. नंबर 3 है

0: एस जो के है स्क्वीज। हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से एस यानी स्वीप। नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: गेम चेंजर सीजन 2 कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां

0: हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीस एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीस टू हैबिट हदीस टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावश खान और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे मजे में होंगे हदीस टू हैबिट की एक और एपिसोड लेके मैं हाजिर हो गई हूं और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या है आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो है वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल और वक्त में बरकत अक्सर हम सब एक जुमला बहुत ज्यादा बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है मैं बहुत मसरूफ हूं पता ही नहीं चलता दिन कहां गुजर जाता है बहुत सारे काम थे लेकिन कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ है ना क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग दिन भर में बेशुमार काम कर लेते हैं इबादत भी कर लेते हैं अपने घर वालों को वक्त भी दे देते हैं अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं और अपने पेशावराना काम भी एहसन अंदाज में मुकम्मल कर लेते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग पूरा दिन मसरूफ रहने के बावजूद रात को ये महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई खास काम नहीं किया ऐसा क्यों होता है इसका ताल्लुक सिर्फ वक्त की मिकदार से नहीं है बल्कि वक्त की बरकत से है इस्लाम हमें सिर्फ वक्त गुजारना नहीं सिखाता बल्कि वक्त को बामकसद बनाना सिखाता है हमें याद रखना चाहिए कि वक्त अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है माल दोबारा कमाया जा सकता है सेहत भी किसी हद तक वापस हासिल की जा सकती है लेकिन जो वक्त गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता इसीलिए इस्लाम में वक्त की कदर व कीमत बहुत ज्यादा है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात की कसम खाई है फजर की कसम असर की कसम रात की कसम और दिन की कसम ये इस बात की तरफ इशारा है कि वक्त कोई मामूली चीज नहीं बल्कि अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है लिसनर्स आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी मुश्किलात में से एक जो मसला है वो है डिजिटल डिस्ट्रक्शन यानी डिजिटल मसरूफियात हम सिर्फ चंद मिनट के लिए फोन उठाते हैं और फिर अचानक एक घंटा गुजर जाता है एक वीडियो दूसरी वीडियो एक नोटिफिकेशन दूसरा नोटिफिकेशन और फिर हमें एहसास होता है कि हमारा कीमती वक्त कहाँ चला गया बाज़ औक़ात हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि नमाजें ताखीर का शिकार हो जाती हैं कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता घर वालों के साथ बैठने का वक्त नहीं मिलता और फिर हम जहनी दबाव और थकन का शिकार हो जाते हैं हकीकत यह है कि मसला अक्सर वक्त की कमी नहीं होता बल्कि वक्त की तरजीहात का होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी नाजिल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की रहनुमाई भी करते थे इबादत भी करते थे घर वालों के हुकूक का ख्याल भी रखते थे साहबा कराम की तरबियत भी फरमाते थे और उम्मत के मामलात भी संभालते थे इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन तवाज़ुन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि कामयाब जिंदगी वो नहीं जिसमें सिर्फ मसरूफियत हो बल्कि कामयाब जिंदगी वो है जिसमें मकसद हो वक्त का सही इस्तेमाल सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए जरूरी नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी जरूरी है जरा सोचिए अगर हम दिन में सिर्फ 10 मिनट कुरान के लिए

निकाल लें तो एक साल में कितने घंटे बन जाते हैं। अगर हम रोजाना 15 मिनट जिक्र के लिए मख्तस कर लें तो हमारी रूहानी जिंदगी में कितना फर्क आ सकता है। अगर हम रोजाना आधा घंटा अपने बच्चों के साथ गुजारें तो उनकी तरबियत और हमारे ताल्लुकात कितने मजबूत हो सकते हैं। छोटे छोटे वक्त के टुकड़े जब जमा होते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। वक्त की बरकत का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स चंद घंटों में बहुत कुछ हासिल कर लेता है जबकि दूसरा शख्स पूरा दिन लगा कर भी वो नतीजा हासिल नहीं कर पाता। यही बरकत है। बरकत का मतलब है कम वसाइल में ज्यादा फायदा, कम वक्त में ज्यादा खैर और कम मेहनत में बेहतर नताइज। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत अल्लाह ताला के नाम से करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, अपने कामों को तरतीब देता है और फजूल चीजों से बचता है तो अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत अता फरमा देते हैं। इस हफ्ते हम सब मिलकर एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। हम अपने दिनों को ज्यादा मुनज्जम बनाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हम अपना वक्त कहाँ खर्च करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारा जो वक्त है वो जाया हो रहा है, कहाँ जा रहा है। और सबसे अहम बात, हम अपने वक्त को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक मुसलमान के लिए वक्त सिर्फ घड़ी के कांटों का नाम नहीं, वक्त एक अमानत है, वक्त एक जिम्मेदारी है, वक्त एक इम्तिहान है और वक्त एक मौका भी है। मौका नेकियां कमाने का, मौका अपने रब के करीब होने का, मौका अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। तो आइए आज के इस शो में हम मिलकर सीखते हैं कि वक्त में बरकत कैसे हासिल की जाती है, अपनी मसरूफ जिंदगी को कैसे मुतवाजन बनाया जा सकता है और अपने दिनों को किस तरह ज्यादा बामकसद बना सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह आज इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं कि वक्त सबके पास एक जैसा होता है लेकिन उसमें फिर भी फर्क क्यों होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बुजुर्ग अपने घर की बालकनी में बैठे हैं, शाम का वक्त है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है, उनके हाथ में चाय का कप है लेकिन उनकी नजरें कहीं दूर खोई हुई हैं। अचानक उनका पोता आकर पूछता है, दादा बू आप क्या सोच रहे हैं? वो मुस्कुराते हैं, फिर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं सोच रहा हूं कि मेरी उम्र 70 साल हो गई लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि ये 70 साल कैसे गुजर गए, कब गुजर गए। कि जुमला आपने भी यकीनन कहीं ना कहीं सुना होगा। अक्सर लोगों को अपनी उम्र के अख्तिताम पर यह एहसास हो रहा होता है कि उन्होंने जिंदगी कहाँ गुजार दी, कैसे गुजार दी। और अगर हम भी अपनी जिंदगी का जायजा लें तो हमें यह अंदाजा होता है कि अक्सर हमारी जिंदगी इतनी मसरूफियत में गुजर रही होती है और इतनी तेजी से गुजर रही होती है कि हमें नहीं समझ में आता कि इतना वक्त कैसे गुजर चुका है। लेकिन वक्त इतनी बड़ी नेमत है कि हम इसकी जितनी कदर करें उतना कम है, क्योंकि कहा जाता है कि वक्त ही हमारी जिंदगी है। वक्त की कदर के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत खूबसूरत तालीमात अता फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नियमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में पड़े हुए हैं, सेहत और फारिग वक्त। जरा गौर कीजिए, आम तौर पर इंसान उस वक्त किसी नियमत की कदर करता है जब वो उससे महरूम होने लगता है। सेहत मौजूद हो तो हम अक्सर उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब बीमारी आती है
तो सेहत की अहमियत समझ आती है। इसी तरह जब हमारे पास वक्त होता है तो हम उसे मामूली समझ लेते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उम्र गुजर जाती है या जिंदगी का कोई अहम मौका हाथ से निकल जाता है तो फिर एहसास होता है कि वक्त कितना कीमती था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुतनब्बे फरमा रहे कि सेहत और वक्त दो ऐसी नेमतें हैं जो अगर सही इस्तेमाल ना की जाए तो इंसान बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है। आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कितने लोग घंटों मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुरान के लिए चंद मिनट नहीं निकाल पाते। कितने लोग सोशल मीडिया पर तवील वक्त गुजार देते हैं लेकिन वालदेन से बैठकर बात करने के लिए मौका नहीं मिलता। कितने लोग दिन भर मसरूफ रहते हैं लेकिन दिन के आखिर में उन्हें खुद महसूस होता है कि उन्होंने कोई हकीकी और फायदेमंद काम नहीं किया। यही वो धोखा है जिसका जिक्र हदीस में किया गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहता है और इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। फिर अचानक एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है साल कहां गुजर गए। लिसनर्स, एक बहुत खूबसूरत हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को मोहताजी से पहले, अपनी फरागत को मसरूफियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। यह हदीस दरअसल हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने की दावत देती है। इंसान अक्सर ये समझता है कि उसके पास बहुत वक्त है, वो सोचता है कि बाद में इबादत कर लूंगा, बाद में कुरान पढ़ लूंगा, बाद में वालदेन की खिदमत कर लूंगा, बाद में नेक काम शुरू कर लूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी की कोई जमानत नहीं। आज जो मौका हमारे पास मौजूद है जरूरी नहीं कि कल भी मौजूद हो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं कि मौजूदा वक्त को गनीमत जानो, जो नेकी आज की जा सकती है उसे कल पर मत छोड़ो, जो काम अभी हो सकता है उसे गैर जरूरी ताखीर का शिकार न बनाओ। लिस्टनर्स, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो हमें वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंतहाई मुतवाजन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत भी करते थे, लोगों की रहनुमाई भी फरमाते थे, अपने अहले खाना के साथ वक्त भी गुजारते थे, सहाबा कराम से उनकी तरबियत के लिए बात भी करते थे, बीमारों की आयादत भी फरमाते थे, लोगों के मसाइल भी सुनते थे और उम्मत की कयादत भी करते थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेतरतीबी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हकदार का हक अदा करते थे। यही असल वक्त का नज़्म व नस्क है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ दुनिया के कामों में लग जाएं या सिर्फ इबादत करते रहें, बल्कि इस्लाम हमें तवाज़ुन सिखाता है। अल्लाह का हक भी अदा हो, वालदेन का हक भी अदा हो, घर वालों का हक भी अदा हो, जिस्म का हक भी अदा हो और माशरे का हक भी अदा हो। जब जिंदगी में तवाज़ुन आता है तो वक्त में बरकत होती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग मसरूफ जरूर हैं लेकिन मुतमईन नहीं है। उनके पास काम बहुत है लेकिन सुकून कम है। वजह यह है कि सिर्फ मसरूफ रहना कामयाबी नहीं, सही चीजों में मसरूफ रहना कामयाबी है। अगर पूरा दिन ऐसी एक्टिविटीज में गुजारा जाए जो ना दुनिया में फायदा दें और ना आखिरत में, तो मसरूफियत हकीकत में नुकसान बन सकती है।
इसके बरक्स

ये मामूली काम लगते हैं लेकिन यही छोटे फैसले सालों बाद एक खूबसूरत जिंदगी बनाते हैं और शायद वक्त का जो बरकत का राज है वो भी यही है हर लम्हे को मीनिंग देना हर दिन को मकसद देना और हर काम को अल्लाह की रजा से जोड़ देना क्योंकि जब मकसद वाज़े हो जाता है तो वक्त जाया होना खत्म हो जाता है और जब वक्त जाया होना कम हो जाता है तो जिंदगी में सुकून तवाज़ुन और बरकत बढ़ने लगती है हमारा मकसद इस हफ्ते ज्यादा काम करना नहीं है हमारा मकसद बेहतर काम करना है हमारा मकसद सिर्फ मसरूफ रहना नहीं है हमारा मकसद अपनी जिंदगी को बेहतर ऐसे अपने वक्त को कुछ ऐसे कामों में सर्व करना है कि जो हमें दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत में भी हमें उससे फायदा हासिल हो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ से शुरू करें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई अच्छी बात सुनते हैं मुतासिर भी होते हैं इरादा भी करते हैं लेकिन दो तीन दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है हम कहते हैं कि इंशाल्लाह कल से अगले हफ्ते से जरा मसरूफियत कम हो जाए जब हालात बेहतर होंगे लेकिन सच यह है कि जिंदगी कभी भी मुकम्मल तौर पर आपको फारिग नहीं होने देती मसरूफियत खत्म नहीं होती जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती इसलिए तब्दीली का बेहतरीन वक्त हमेशा आज और अभी होता है और अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ अपने दिन के चंद मिनट बदलने की जरूरत है क्योंकि जिंदगी दिनों से बनती है और दिन आदतों से बनते हैं जरा सोचिए अगर रोजाना सिर्फ 10 मिनट कुरान के लिए निकाले जाएं, तो एक साल में कितना वक्त बनता है अगर रोजाना 15 मिनट कम मोबाइल इस्तेमाल किया जाए तो साल भर में कितने घंटे बच सकते हैं अगर रोजाना 5 मिनट अपने अमाल का जायजा लिया जाए तो कितनी गलतियों की सलाह हो सकती है बड़ी तब्दीलियां छोटे कदमों से शुरू होती हैं इसीलिए इस हफ्ते हमारा टारगेट कोई मुश्किल मंसूबा नहीं बल्कि एक सादा अमली और काबिले अमल रूटीन है ऐसी रूटीन जिसे एक स्टूडेंट भी अपना सकता है एक जॉब करने वाला भी एक घरेलू खातून भी और एक रिटायर्ड शख्स भी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ फर्ज करें दो लोग एक ही जगह खड़े दोनों ने एक ही सिम जाना है फर्क सिर्फ ये है कि एक रोजाना एक कदम आगे बढ़ता है और दूसरा वहीं खड़े रहता है एक महीने बाद दोनों के दरमियान फर्क नुमाया हो जाएगा एक साल बाद तो फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा जिंदगी भी इसी तरह काम करती है रोजाना के छोटे कदम मुस्तकबिल बनाते हैं इसीलिए इस हफ्ते हम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश करेंगे पहला कदम यह है कि रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 अहम काम लिख लें सिर्फ 3 10 नहीं 15 नहीं सिर्फ 3 क्योंकि जब सब कुछ अहम होता है तो हकीकत में कुछ भी अहम नहीं होता अपने आप से पूछें कि अगर कल मैं सिर्फ 3 काम मुकम्मल कर सकूं तो वो कौन से होंगे यह आदत आपके दिन को डायरेक्शन देगी दूसरा कदम यह है कि अपनी सुबह का आगाज मोबाइल से नहीं अल्लाह से करें फजर के बाद चंद मिनट दुआ जिक्र या कुरान के लिए रखें अपने दिन में गैर मौजूदगी के लम्हात पैदा करें जी हाँ गैर मौजूदगी के लम्हात ऐसे वक्त में आप जानबूझकर मोबाइल से दूर रहें चौथा कदम यह है कि अपने शेड्यूल में खानदान के लिए वक्त लिखें सिर्फ दिल में ना सोचें लिखें क्योंकि जो चीज हम लिख लेते हैं उनकी अहमियत भी हमें ज्यादा महसूस होती है और आदत जिसे हम भूल जाते हैं वो है अपना मुहासा सोने से पहले 2 मिनट निकालें और खुद से 3 सवाल करें आज मैंने क्या अच्छा किया आज मैंने क्या गलत किया और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ बस इतना ही ये 2 मिनट आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद आगाह बनाएंगे आखिर में एक बात याद रखिए अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा नहीं करते कि हम एक दिन में सब कुछ बदल दें वो ये चाहते हैं कि हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएं

0: जी लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो. उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

कोई सवाल बाकी न था, जितने सवालात वो कर सकते थे सब खत्म हो गए, तो कहने लगे अब तो बात कही है, कौलुल आना जिता बिल हक। फिर उन्होंने जिस तरह हो सका वो गाय मुहैया की, उसे ज़बह किया, लेकिन दरअसल वो ये काम करना न चाहते थे। फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। मजीद इरशाद खुदावंदी है, याद करो उस वक्त को जब तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया, फिर उसके कातिल के बारे में झगड़ने लगे, और खुदा ने एक हुक्म के जरिए जिस चीज़ को तुम छुपाए हुए थे आश्कार कर दिया। वइद क़त्लतुम नफ़्सन फ़द्दारतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। फिर हमने कहा उस गाय का एक हिस्सा मकतूल पर मारो ताकि वो जिंदा होकर अपने कातिल का तारुफ कराए। फ़कुल नद्रिबूहु बिबाअतिहा। बेशक खुदा इसी तरह मुझको जिंदा करता है, कदालिका युहिल्लाहुल मौता, और वो तुम्हें अपनी इस किस्म की आयात और निशानियां दिखाता है ताकि तुम हकीकत को पा सको। वयरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। मज़ीद सामईन किराम इस वाक़े के फ़वाइद पर तफसीली गुफ्तगू होगी अगले हिस्से में, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बिइज़्निल्लाह।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
3: आप सुन रहे हैं FM 107.
0: दिल से देसी।

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती, तेरे तेरे वाने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नू

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

तुम्हारे गिर्दोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुबे इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो इनसे खोए गए। और ये था उनके झूठ और उन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घर रखे थे। और वो वाकया भी काबिले जिक्र है, जब हम जिनों के एक ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें आजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिच कर दे और न इसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसको बचा ले। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और उनको बनाते हुए वो न थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये काफिर आग के सामने लाए जाएंगे उस वक्त इनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? ये कहेंगे, हाँ हमारे रब की कसम, वाकई ये हक है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार की पादाश में जो तुम करते रहे थे। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया है, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस रोज ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है तो इन्हें यूं मालूम होगा जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे थे। बात पहुंचा दी गई, अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा?

भारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दने मारना है, यहां तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार है एहसान करो या फिदिये का मामला करो, ता आंके लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये है तुम्हारे करने का काम, अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे निमट लेता, मगर ये तरीका उसने इसलिए इख्तियार किया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएंगे अल्लाह उनके आमाल को हर गिज जाया न करेगा, वो उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो उनको वाकिफ करा चुका है।

इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरों बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तक्वा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस कयामत ही के मुंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामत तो आ चुकी है, जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं है और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी जबान पर है इताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बरपा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर उनके कुफल चढ़े हुए हैं? हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाज़े हो जाने के बाद उससे फिर गए उनके लिए शैतान ने इस रविश को सहल बना दिया है और झूठी तवक्कोआत का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है। इसीलिए इन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे? ये इसीलिए तो होगा कि इन्होंने उस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है और उसकी रजा का रास्ता इख्तियार करना पसंद ना आया, इसी बिना पर उसने इनके सब आमाल जाया कर दिए।

क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह उनके दिलों के खोट जाहिर नहीं करेगा। हम चाहें तो उन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लो, मगर उनके अंदाज़े कलाम से तो तुम उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सब के आमाल से खूब वाकिफ है। हम जरूर तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद और साबित कदम कौन है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल से झगड़ा किया जबकि उन पर राह रास्त वाज़े हो चुकी थी, दर हकीकत वो अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह ही उनका सब किया कराया गारत कर देगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद न करो। कुफ्र करने वालों और राह खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफ्र पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह हरगिज माफ न करेगा। बस तुम बोदे न बनो और सुलह की दरख्वास्त न करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे आमाल को वो हरगिज जाया न करेगा। ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान रखो और तकवा की रविश पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे न मांगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सब के सब तुमसे तलब कर ले तो तुम बुखल करोगे और वो तुम्हारे खोट उभार लाएगा। देखो तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं। हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे।